सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है, और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि, सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट 1 सेकंड में 1 बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आइए करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ झटका देना व छोड़ना है। नासिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है। साथ ही साथ में जो इसका एक सूक्ष्म व्यायाम है वो है अपने हाथों पैरों को एक जगह पर रखने से हाथों पैरों में कंपन सी होने लगती है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम में पैरों और हाथों को चलाने का व्यायाम। पैरों को सामने खोलकर व हाथों को पीछे टिकाकर पैरों की उंगलियां चलाना, पंजे चलाना और आगे पीछे दबाना। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज

घुमाना, वह दोनों तलवे मिलाकर बटरफ्लाई की स्थिति में आना और बटरफ्लाई करना, यानी कि जब आप इस आसन को, जब इस प्राणायाम को आप करेंगे तो तितली नुमा एक आकार बन जाता है। कपालभाति प्राणायाम प्रथम चक्र की भांति 5 मिनट ही करना चाहिए। आइए अब चलते हैं कपालभाति के दूसरे चक्र पर, यानी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चक्र। हाथों को सामने कंधे की सीध में खोलकर मुट्ठी खोलना एवं बंद करना, कभी अंगूठा अंदर करना है तो कभी बाहर, उंगलियां आधी मोड़ना और छोड़ना, पंजों को कलाई से ऊपर नीचे करना, मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, कोहनी को निरंतर मोड़ते रहना है, दोनों हाथ कंधे के समांतर उंगलियों से कंधे को छूना है, दोनों हाथ कानों से सटाते हुए ऊपर नीचे की ओर लेके जाना, उंगलियां कंधों पर रखकर कोहनियां गोल गोल घुमाना, दोनों हाथ घुटनों पर कंधे का संचालन करना। तो ये है कपालभाति प्राणायाम में द्वितीय चक्र सूक्ष्म व्यायाम का। कपालभाति प्राणायाम का तृतीय यानी तीसरा चक्र, प्रथम चक्र की भांति ही 5 मिनट इसे हमें करना है। तृतीय चक्र में सूक्ष्म व्यायाम आता है। बाएं जांघ पर दाएं पैर को मोड़कर रखें, ऊपर नीचे दबाएं व बाल मंचन आसन करना है। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करना है। पैर के दोनों तलवों को आपस में जोड़कर दोनों हाथों से पैर की उंगलियां पकड़कर बटरफ्लाई करना है। आइए अब कपालभाति के प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र और तृतीय चक्र के साथ में लाभ की ओर चलते हैं। चेहरे की आभा सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ पेट की सभी बीमारियों जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, शरीर की गांठें, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, एलर्जी एवं समस्त वात पित्त एवं कफ दोष, कैंसर की गांठें इत्यादि ठीक होते हैं और मन में उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आज आपको मैं ये बता दूं कि ये जो समय सारणी आज हम आपको बता रहे हैं, ये निरंतर ही योगशाला में हम आज आपको कराते रहेंगे, क्योंकि ये समय सारणी अगर आपने नित प्रतिदिन कर ली तो आपको कोई और प्राणायाम करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। इसके बाद आता है तीसरा यानी वाय प्राणायाम, 5 बार करेंगे। नाक से श्वास फेफड़ों में अधिक से अधिक भरें, फिर नाक से ही पूरी श्वास बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें। पेट को ऊपर की ओर खींचें, यानी उद्यान बंध में। नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर की ओर उठाकर रखें, यानी मूल बंध को। हुड्डी को कंठ से लगाएं, यानी जालंधर बंध को, और एक त्रिबंध लगाकर साथ में करते हैं। इसके बाद एक प्राणायाम और आसन आता है जो कि है अग्निसार, सहायक क्रिया प्राणायाम। 5 बार फेफड़ों में नाक से श्वास अधिक से अधिक भरें, फिर पूरी श्वास बाहर निकालकर बाहर रोक दें। पेट को ढीला करके अंदर बाहर चलाना है। आइए अब अग्निसार के लाभ। समस्त उदर, मूत्र व किडनी संबंधी रोग इस प्राणायाम को करने से दूर होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम साथ ही साथ में हमें हाथों का, पैरों का और कंधे का करते रहना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समय सारणी में इसके अगले पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। हेलो दोस्तों, मैं आपकी समता योगा एक्सपर्ट योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए आज दोस्तों हम बात करेंगे अर्ध हलासन के बारे में। यह वह प्राणायाम है जो कि हमारी भागम भागी लाइफ में आज के जो कि हमारी भागम भागी जो लाइफ
है समय में जो भागदौड़ की भरी जीवन शैली और असंतुलित खान पान की वजह से लोगों को सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं हो रही हैं। भागदौड़ भरी जीवन शैली और असंतुलित खान पान ही डायबिटीज जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन रही है। ऐसे में शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, योग का अभ्यास, संतुलित खान पान अपनाना बहुत ही जरूरी होता है। योगासनों का नियमित अभ्यास व सिर्फ आप अपने शरीर को फिट रखने का काम करता है, बल्कि कई बीमारियों से बचाव भी उपयोगी होता है। शरीर को चुस्त, तंदुरुस्त और फिट बनाने के लिए कई तरह के योगासनों का अभ्यास किया जा सकता है। तो आज हम आपको अर्धहलासन योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अर्धहलासन के नियमित अभ्यास से आपके पेट और पीठ की समस्याओं में बहुत फायदा मिलता है। पेट के भीतर मौजूद अंदरूनी अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए अर्धहलासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद है। अर्धहलासन को जो कि हम साथ में करेंगे और उसके फायदे भी बताएंगे। इसके नियमित अभ्यास से आपके शरीर की मांसपेशियों में भी बहुत ज्यादा विस्तार और अच्छा सा फायदा होता है। मेन हम बताएंगे कि अर्धहलासन जो है वो पेट और पीठ की समस्याओं को दूर करने में अर्धहलासन बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले अर्धहलासन के फायदे जान लेते हैं, बेनिफिट्स होते हैं अर्धहलासन करने के। मोटापे की समस्या आजकल आम तौर की लाइफ में बहुत बढ़ती जा रही है। जो खान पान है वो नियमित रूप से ना होने पर और ऐसे कई जगह पर जो कि आज की न्यू जनरेशन है, एक जगह बैठकर जॉब करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी वजह से भी उनका शरीर बढ़ता जाता है। फिर वो शाम को अपना एक जिम अपनाते हैं, यानी जिम की तरफ भाग दौड़ करते हैं। तो आज हम इसी सारी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही नियमित रूप से और सरल रूप से इस प्राणायाम को, इस व्यायाम को करेंगे घर पर ही बैठ करके, तो हमारी ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। मोटापे की समस्या से जो भी लोग आजकल के ग्रसित हैं, उनके लिए अर्धहलासन योग का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका नियमित अभ्यास करने से आपके पेट और पीठ से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं और साथ में आपको फिट रखने के लिए भी बहुत ही जरूरी है यह प्राणायाम। पेट की समस्याओं से अर्धहलासन का अभ्यास बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसका अभ्यास शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए भी फायदेमंद होता है, यानी कि सिर्फ हम एक्सटर्नली नहीं हम अभ्यास के लिए जुड़ेंगे, हम इंटरनल भी जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता है कि वह स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ, तो उन सारी चीजों को भी फायदे दिलाने के लिए अर्धहलासन बहुत ही आवश्यक है। जान लेते हैं कि अगर हम अर्धहलासन करेंगे तो उससे हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे दूर होंगी। तो नंबर वन यानी सबसे पहला फायदा है इसका पेट और पाचन तंत्र के लिए। जी हाँ, क्योंकि हम दिन भर में कई ऐसी चीजें खाते हैं जिसको खाने के बाद में ऐसा होता है कि कई बार हमारे पेट में दर्द होने लगता है, पेट की जो चर्बी है वो बढ़ने लगती है। तो इन्हीं सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए यह जो प्राणायाम है जिसका नाम है अर्धहलासन, तो आइए हम बताते हैं। अर्धहलासन को रोजाना अभ्यास करने से आपके पेट को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए अर्धहलासन योग बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसका अभ्यास करने से आपको पेट से संबंधित यानी कब्ज, अपच की समस्या, भूख न लगने की समस्या से आदि बहुत फायदा मिलता है। यह योगासन आपकी भूख को भी ठीक तरीके से काम करने में यानी सुचारू रूप से ठीक करता है। दूसरा आता है इसी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए बेहतर। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना अर्धहलासन का अभ्यास करना
बहुत ही जरूरी होता है। नियमित रूप से अर्धहलासन योग का अभ्यास आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को बाहरी बीमारियां और संक्रमण से बचाने का भी काम करता है। तीसरा दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा पीठ के लिए फायदेमंद अर्धहलासन। अर्धहलासन का रोजाना अभ्यास करने से पीठ की मांसपेशियां मजबूत और हेल्दी होती हैं। कमर दर्द की समस्या और पीठ से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो अर्धहलासन अभ्यास करने से बहुत ही उपयोगी होती हैं और वह जल्द ही ठीक होती हैं। अगर आपकी भी पीठ से जुड़ी समस्याओं हैं, आपकी समस्याएं हैं और उनकी आप शिकार हैं, तो रोजाना इस योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। चौथा है शरीर का रक्त प्रवाह सुधारने में उपयोगी। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना अच्छी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन असंतुलित होने पर कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अर्धहलासन का रोजाना अभ्यास करने से आपको ब्लड का यानी शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में काफी हद तक मदद मिलती है। पांचवा इसका जो कि हमारा मुख्य उपयोगी है वो है वजन कम करने में। आज के समय में असंतुलित खान पान, निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मोटापे की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ रही है। मोटापे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए न जाने कितने लोग कई कई दवाइयां, कई कई ऐसे योग अभ्यासन को अपनाते हैं जिसको करने के बाद में उन्हें फायदा तो मिलता है लेकिन कुछ ही समय के लिए। अर्धहलासन ही एक मुख्य रूप से फायदेमंद प्राणायाम है जो आपको जल्दी से वजन कम करने के लिए सुचारू रूप से सहायक सिद्ध होता है और अच्छी डाइट के अलावा रोजाना अर्धहलासन का अभ्यास भी करना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण ये पॉइंट थे कि आपको किस तरीके से आसन की जो विशेषताएं हैं, जो उपयोगिताएं थी वो हमने बताई। आइए अब हम बात करते हैं अर्धहलासन जो कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और आपके पेट से संबंधित सभी जो कि छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है। तो आइए दोस्तों अब हम बताते हैं कि अर्धहलासन हम कैसे करेंगे। विधि, अर्धहलासन करने के लिए सबसे पहले हम जमीन पर एक मैट का उपयोग करेंगे। यदि आपके पास योगा मैट नहीं है, योगा मैट उपलब्ध नहीं है, तो आप कोई भी घर की चद्दर या कोई भी घर में जो मैट हो आप उसको बिछा करके यह अर्धहलासन प्राणायाम कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाना है, यानी पीठ आपकी नीचे रहेगी मैट पे, और हाथों को जांघों के पास रखें। उसके बाद पैरों को उठाएं, यानी आपके दोनों पैर सीधे रहेंगे हवा में। इसके सिर और गर्दन कमर जमीन पर रखें, यानी सिर आपका और गर्दन कमर जमीन पर रहेगा। यदि हम देखें अपने जो कि प्राणायाम हम ये करेंगे, तो यदि हम इसका अगर कभी फोटो देखें तो आपको अंग्रेजी का एल शेप आपको समझ में आएगा कि ये एल जो कि शेप होता है, एल शेप में आपकी बॉडी दिखेगी। और पैरों को नीचे से ले जाएं, यानी कि आपके दोनों पैर ऊपर रहेंगे और अपने को पैर के बगल में यानी जहां पर हिप्स हैं वहां पे आप दोनों हाथों को रख दें और यह आसन अब पूरा हुआ। हम फिर से बता दें आपको, दोनों जांघों को ऊपर रखें यानी हवा में, गर्दन पीठ और सर आपका जमीन पे, दोनों हाथ आपके हिप्स के पास से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें और दोनों पैर हवा में यानी सीधे। श्वास मध्यम गति से लेनी है और छोड़नी है। यह अभ्यास पूर्ण तभी होगा जब हम श्वास से नियमित यानी श्वास आती जाती श्वास को महसूस करेंगे और टाइमर के हिसाब से
स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट और धीरे धीरे हम अपने समय को बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको कोई भी तरह की समस्याएं हैं तो अर्धहलासन को अपने डेली रूटीन में शामिल करके सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको अर्धहलासन अगर करने में आ रही है तो आप हमें जरूर से जरूर चैट बॉक्स में आकर के, जब हमारा योगशाला प्रोग्राम सुबह आता है उसके बाद में जब आप साथ में हम योगासन कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की हलासन करने में या सूर्य नमस्कार करने में किसी प्रकार का अगर आपको कुछ ऐसी मन की वृत्तियां हैं या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, तो आप चैट रूम में आकर के हमसे प्रश्न कर सकते हैं और हम आप उसका आंसर भी करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का हलासन यानी हलासन प्राणायाम, और आशा करती हूँ आप इसका नियमित रूप से रोज अगर आप इसको करेंगे तो आपसे, आपके शरीर से संबंधित, आपसे आपके पेट से संबंधित सारी समस्याएं ठीक होंगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और आऊंगी अपने नेक्स्ट यानी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आपके साथ बनी रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी समता योगा एक्सपर्ट योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ध्यान पहले से खूब ज्यादा रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग के उन 5 नियमों के बारे में, और उन नियमों को हम विस्तार से भी जानेंगे ताकि हमें योग जब हम करते हैं तो योग से ही संबंधित ये 5 नियम भी हम साथ साथ समझते और करते चले। अष्टांग योग के 8 अंगों का में दूसरा अंग नियम है, सबसे पहले इसमें सोच, संतोष, तप आदि जैसे 5 नियम होते हैं। ये नियम महत्वपूर्ण माने गए हैं। अष्टांग योग के नियम स्वयं शुद्धि के लिए होते हैं और जिसके लिए हमें ये दिन प्रतिदिन करना चाहिए, जो हमारी शारीरिक शुद्धि शुद्धि और मानसिक शुद्धि का भी साथ साथ में करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं अष्टांग योग के 5 नियम। उसमें सबसे पहला है शौच। यहाँ शौच का मतलब मन और शरीर की पवित्रता से होता है, यानी सिर्फ शरीर को साफ कर रखना ही शौच नहीं है, बल्कि मन से गलत भावना को भी हटाने का दूसरा नाम शौच ही है। अष्टांग योग के शौच के नियम में मन की अंतःशुद्धि, द्वेष आदि का त्याग कर मन की वृत्तियों को निर्मल करने की प्रक्रिया होती है। इसीलिए शौच का मतलब यहाँ पे मन और शरीर की पवित्रता से है। दोस्तों, अष्टांग योग का दूसरा नियम है संतोष। इसे समझना मुश्किल नहीं, लेकिन निभाना जरूर मुश्किल है। कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसमें संतुष्टना, या जो कुछ परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हो उसमें संतुष्टि रखना ही संतोष है, और यह अष्टांग योग का दूसरा नियम है। जान लेते हैं दोस्तों अष्टांग योग का तीसरा नियम, जो है तप। तप या तपस्या का अर्थ होता है मन और शरीर को अनुशासित रखना। सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख जैसे द्वंद्वों को सरल करते हुए या सरल करते हुए सहन करते हुए मन व शरीर की साधना भी तप है। चौथा नियम जान लेते हैं दोस्तों, जो है स्वाध्याय। स्वाध्याय में केवल वेद वेदांतों का ही ज्ञान अर्जित करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति को खुद के बारे में भी चिंतन करना जरूर, स्वयं का अध्ययन करना अवश्य चाहिए, क्योंकि हम खुद में भी सुधार कर सकें। विचारों में शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग आदि का आदान प्रदान स्वाध्याय है। जान लेते हैं दोस्तों अष्टांग योग का 5वां नियम यानी आखिरी नियम, ईश्वर प्रतिधान। 5वां नियम जान लेते हैं, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था रखना ही
ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। इस नियम का पालन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है मनुष्य का आंतरिक निर्माण, ताकि अपने आप को हम बेहतर तरीके से जान सकें। मन, वाणी और कर्म सेवर की भक्ति के साथ उसके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन करने जैसे समस्त कर्म ही ईश्वर प्राणिधान है। दोस्तों, आज हमने अष्टांग योग के 5 नियमों के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना, और हमें यह कराते हुए या हमें यह बताते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि जो ये 5 नियम हैं, ये प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज से कुछ परे नहीं है। यह भी हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि हमने बताया कि पहला नियम हमारा सोच है, तो सोच को जरूरी नहीं है कि हमारे नित्य प्रतिक्रिया में करने वाला सोच ही के बारे में हम बात कर रही हैं। यहाँ पे सोच का मतलब मन से गलत भावना को निकालना भी सोच है। संतोष यानी हमें जो भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, हमें उसमें संतोष ही करना है। तप यानी तपस्या का अर्थ है हमें अपने आप को अनुशासित रखते हुए हर परिस्थिति में तप के साथ में साधना करनी है। चौथा स्वाध्याय यानी हमें अपने किसी भी पुस्तक यानी वो कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी अभ्यास हो, विद्याभ्यास, धर्मशास्त्र अध्ययन, सत्संग।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभू को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है, जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं, अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभु की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व के शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभ अंकाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी नाग।

जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्रों वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्ष ध्वर नाशकाय, श्री नील कंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ, अगत्स, गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या, यक्ष स्वरूप

जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं, उन्हीं या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक, पंचाक्षर मिदम पुण्यम या पटेक्षे समनिधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवाय यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। ना माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्म योग। जो इन्हें जी लेता है वही सच्चे अर्थ में शिव के करीब पहुंच जाता है।

तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसे इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती। यही है शिवत्व।

चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गली में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

0: दोस्तों, आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको उसे रूबरू कराते हैं। भोलेनाथ, भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो। चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव, सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता, असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोककर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप, अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो। गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी। हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है, अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं, तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।
1: सम्मान करो इसका, शुक्र करो, क्योंकि प्यार
2: से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।

दोस्तों, शिव पूजन में वेल पत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तब के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप पसीने और तप ऊर्जा से वेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे वेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। वेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि वेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। बेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू जी, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकी उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होके रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव। अनादि जिसका आरंभ ना हो, शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं, एक सनातन सत्ता। इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

महत्व है, आपको समझाते हैं। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव, सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ और शक्ति माने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती, उन्हें शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं, होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी, ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है शिव को। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गली में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी, गंगा, चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारे प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है, इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं, बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो पल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजे आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
4: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: क्या बात है भाई, जिया तो धड़क ही जाता है जब ऐसे सॉन्ग्स आ जाते हैं सामने। सुबह का खूबसूरत सा ये जो समय है, ये पूरा का पूरा समय, ये पूरा का पूरा माहौल, आप सब लोगों को मुबारक आपकी गुड मॉर्निंग गुंडा शो में आपके अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान की तरफ से। आपने ट्यून कर लिया है गुंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है आपके अपने गुंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका सुप्रभात वाला आरजे आरजे अदनान। सो यस, अभी वक्त हो चला है आपको ले चलने का, आज की सुबह से मिलाने का। तो अभी तक आपने आज की सुबह को महसूस किया या नहीं किया? अगर कर लिया है तो फिर आपने देख लिया है, और अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, अब हम और आप मिल करके आज की सुबह को सेलिब्रेट करने वाले हैं, आज की सुबह को देखने वाले हैं और आज की सुबह से आगे बढ़ने वाले हैं। सो चलिए अब आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, और बताते हैं कि आज का मंडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर आया है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो आज का थॉट ऑफ द डे जो कि मंडे का स्पेशल थॉट ऑफ द डे है, वो क्या लेकर आया है, क्या पैगाम और आप तक क्या पैगाम पहुंचा रहा है, चलिए बताते हैं। दरअसल आज का थॉट कह रहा है कि हर बार आप पत्थर उछालो और आम टूटे, ये ज़रूरी नहीं है। हर बार आप पत्थर उछालो और आम टूटे, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती हैं। तो हमारा अक्सर गिला होता है ना कि हमने तो बहुत मेहनत की, हमने तो एक बार ट्राई भी किया था, हुआ नहीं। सो एक बार ट्राई किया तो हुआ नहीं, ये जितना इजीली हमने कह दिया उसको अगर उतना ही इजीली समझ जाते तो शायद वो बात, वो स्टेटमेंट कभी जहन में रहता ही नहीं कि हमने एक बार कोशिश की और रह गया। हर बार जब हम कोशिश करते हैं तो ये सच है, एक उम्मीद होती है कि इसमें शायद हम जो चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ हमको मिल जाए। ऐसी सिर्फ आशा रहती है, ऐसी उम्मीद रहती है। हालांकि पता हमको कहीं ना कहीं अंदर पहले ही रहता है कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि मिल ही जाए, राइट? सो ऐसा ही आज का थॉट ऑफ द डे भी कह रहा है, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि भाई जो हम चाहें वो मिल ही जाए। तो जो कुछ कोशिशें होती हैं वो सिर्फ तैयारी के लिए होती हैं, वो रिजल्ट्स के लिए नहीं होती कि हमने किया और फौरन मिल गया। क्योंकि जब हम नए होते हैं या चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते हैं, या लाइफ में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो कोशिशें होती है किस चीज़ के लिए? यस, वो कोशिशें होती हैं तैयारी के लिए, ना कि परिणाम के लिए, रिजल्ट्स के लिए। और इस बात को जिस दिन हमने समझ लिया, उस दिन से शायद हमारे लिए कोशिशें करना और भी ज़्यादा आसान और भी ज़्यादा सुखदायक हो जाएगा। क्योंकि हम मान के ये चलेंगे कि कुछ कोशिशें जो हम कर रहे हैं ये परिणाम के लिए नहीं बल्कि ये तैयारी के लिए है, और उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा कोशिशों को जारी रखना। और कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई चीज़ देखना है तो एक कोशिश करता हुआ इंसान देखिए, सबसे प्यारा लगता है। जब वो कोशिश कर रहा होता है, जब वो जूझ रहा होता है किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए, तो वो इस पूरे जहां की सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक होता है। और वो दृश्य हम खुद के लिए क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं? कुछ कोशिशों को करने के बाद हम बैठ क्यों गए हैं? कुछ कोशिशों को करने के बाद हमको ये क्यों लगता है कि हमसे ना हो पाएगा? ना जी ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी क्या है वक्त? वक्त है कि उन कोशिशों को जारी रखा जाए और अलग अलग तरह से फिर से कोशिश की जाए। क्योंकि हर कोशिश परिणाम तो नहीं देती है, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन ज़रूर देती है कि हमने कोशिश किया। और इस सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी आप हर वो चीज़ सोच लें कि भाई आपने हर तरह से ट्राई किया और बहुत बार ट्राई किया, ये फीलिंग ही होना अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई अंदाजे की ज़रूरत नहीं है कि कभी आपको फील हो या ना हो, नहीं, ये तो आपको फील होगा ही होगा अगर आपने कई बार और कई तरह से किसी चीज़ को लेकर के ट्राई किया होगा। सो ये जो खुद के अंदर एक एक्सेप्टेंस आएगा कि हाँ आपने हर तरह से किया, तो वो एक खुशी जो मिलेगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए ना, कई बार रिग्रेट नहीं होता हमको, काश को ये और कर लिया होता, तो कोई बात नहीं। अब तक के लिए जितने भी ज़िंदगी में हमने काश छोड़ दिए हैं, उनको देखते हुए, उनके मद्देनज़र रखते हुए आगे आने वाले सारे काश को हम काश ना होने दें, बल्कि उम्मीदों का आकाश होने दें। यानी ट्राई करें, कोशिशें करें। क्यों? क्योंकि हर कोशिशें तैयारी के लिए भी कुछ कोशिशें होती है। यही कहना है आज का थॉट ऑफ द डे का, और यही कह रहा है मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे। मुझे लगता है, उम्मीद है कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे सच में आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। क्योंकि आज का थॉट ऑफ द डे हर उन शख्स और शख्सियत के लिए है जो कहीं ना कहीं ऐसा मान के चलते हैं कि यार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो कोशिशों का ट्राई था, वो कोशिशों का कहीं ना कहीं आपका करके देखने का एक अंदाज था जो आपने किया। एंड आई होप कि आज के बाद से, इस थॉट ऑफ द डे को सुनने के बाद से, अब आप हर कोशिश को परिणाम से जोड़कर नहीं देखेंगे,
बल्कि काफ़ी सारी कोशिशों को आप तैयारी के फॉर्म में ज़रूर देखेंगे। सो चलिए करिए वादा हमसे कि हाँ आप ऐसा ही करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है भाई। फिलहाल ये वादा आप ज़रूर कर लिए खुद से ही। और फिलहाल हम इस खूबसूरत से गाने को आपको सुनाते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद देखते हैं कि चैट बॉक्स पर किन किन लोगों ने क्या क्या लिखा है, उनकी मॉर्निंग कैसी रही और आज का थॉट ऑफ द डे उनको कैसा लगा।

0: जिया धड़क धड़क जाए और मॉर्निंग में आरजिया ना आए। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुंडा में। आपने ट्यून कर लिया है गुंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन। और आज आपकी सुबह हो गई है आपके मॉर्निंग जॉक आरजिया नान के साथ, जो फिलहाल लाइव शो में आपके साथ मौजूद है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

तेरा मन। आगे हम गाना नहीं गाएंगे क्योंकि नहीं है मेरा मन। गाना गाएंगे नहीं लेकिन गाना सुनाते जरूर रहेंगे क्योंकि आप जबरदस्त सॉन्ग्स ट्यून कर लेते हैं जब मॉर्निंग वाला शो, तो खुद ब खुद आपको सुनने को मिल जाता है ना। यस, और वैसे भी हम इतना अच्छा भी नहीं गाते कि आपको सुनाते रहें और आप उसको झेल पाएं, राइट। चलिए फिलहाल आपकी बहुत प्यारी प्यारी कह सकते हैं कि दुआओं के साथ में और बहुत ही प्यार के साथ में मैसेजेस आ चुके हैं चैट बॉक्स पर। चैट बॉक्स वो जगह है, वो मैकेनिज्म है, वो टूल है जिसके ज़रिए आप लाइव शो में हमसे बातचीत करते हैं थ्रू मैसेजेस, यानी आप सुनते हैं हमको फ्रिक्वेंसी से, दूसरा है रेडियो गार्डन से और तीसरा है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। एंड्रॉयड यूज़र्स जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं जबकि आईफोन यूज़र्स ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं। उसी ऐप में आपको चैट का ऑप्शन मिलता है और वहाँ जो कुछ आप लिखते हैं वो हम तक आ जाता है। देखिए भाई, ऐसा जादू में आज आपने क्या लिखा है जो हम तक आ गया है। सो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैसेज आया है वो अरविंद का आया है फ्रॉम मनकापुर। आप लिखते हैं, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात आपको भी, स्वागत है अरविंद मॉर्निंग वाले शो में एंड मुबारक हो कि आप आ चुके हैं। तालियां नहीं बजाएंगे, बस कहना है, फील करिए, जैसे थोड़ा सा गैप देते ना चुप हो जाते हैं उसमें तालियां आप फील किया करिए, तर तर तर तर तर तर तर। ऑलराइट, सो हमारी आशु जी भी लखनऊ से आ गई हैं, नहीं लखनऊ से डायरेक्ट यहाँ नहीं आई, मतलब मैसेज आ गया है आपका और लिखा है, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात। भोर की पहली किरण जब धरती को छूती है तो लगता है जैसे सृष्टि ने फिर कहा हो, आरंभ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभात केवल समय का नहीं है, ये आत्मा का पुनर्जन्म की घड़ी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा मैसेज और साथ में मॉर्निंग वाला आपका ये विशेज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशु जी फ्रॉम लखनऊ। एंड शमा जी भी लखनऊ से आ चुकी हैं मैसेज पर। ओके, गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, मैं तो बढ़िया हूँ जी। आप लोग तो शर्मा जी की चाय के साथ में अपनी आँखों को खोलते हैं और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी घर की चाय है। सबुता दुबे जी हैं, आपका भी स्वागत है मॉर्निंग वाले स्पेशल शो में। आपने भी लिखा है, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात आपको भी। और अरविंद जी ने पूछा है, कैसे हैं जी? मस्त हूँ जी। चंगा जी अपना बताइए, तुसी दसो। आप लिखते हैं कि देयर आर टू प्राइमरी चॉइसेस इन लाइफ, टू एक्सेप्ट कंडीशन एज दे एग्जिस्ट और एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंजिंग दैम, थॉट ऑफ द डे। क्या बात है, बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड सविता दुबे जी लिखती है, बहुत प्यारा सुविचार लगा, हमेशा छोटी छोटी कोशिश करती हूँ और यही तो आपकी खासियत है, इसीलिए तो आप सविता जी से रिंकी बन चुकी हैं, आपको पता नहीं है, हाँ सच में। एंड अरविंद लिखते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लगा। एंड आशु जी लिखती हैं, खोई सी गई हूँ मैं खुद में ही, इस तरह बातें भी खुद से करती हूँ, सभी खुद का ही देती हूँ, खुद से ही रूठती हूँ, खुद को ही मनाती हूँ, खोई सी गई हूँ मैं खुद में इस तरह कि अब दुनिया को कम खुद को ज़्यादा जानती हूँ, कोशिशें करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाओ क्या बात है, सो वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच। वैसे कोई बता सकता है कि आशु जी की ये दो लाइन की पंक्तियों में कितनी बार खुद शब्द आया है? चलिए काउंट करिए और बताइए। गीता श्रीवास्तव जी लिखती हैं गोंडा से ही, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग अजी, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग वाले शो में गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद अगला जो मैसेज आया है, अच्छा सॉन्ग्स भी अच्छे लगे अरविंद जी को, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आशु जी ने कहा, ये छोटी सी जिंदगी में जितना कुछ सीख ले उतना ही कम है, तो फिर सीखना ही छोड़ देते हैं क्योंकि और कम होता जाएगा। अरे मजाक कर रहे जी, बिल्कुल सही कहा आपने, जितना सीख ले उतना ही कम, मतलब उतना अच्छा है। ऑलराइट, गीता जी लिखती हैं कि गीता में लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, रिजल्ट में जो है वो मनचाहा ना मिले पर तजुर्बा तो मिल ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ी चीज़ है, जीवन भर ये सोचकर पछतावा नहीं होगा कि काश ये किया होता वो किया होता, अपना तो यही उसूल है, कर्म करो जो होगा देखा जाएगा जी, तुसी दसो जी, है ना, लवली थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट पसंद आया। एंड कहा, सही कहा आपने, चैट बॉक्स मस्त है, थैंक यू। अरे भाई अरविंद जी को तो आज सुबह सुबह इतनी हंसी आ गई, मैंने कहा था दो ग्लास पानी पीने को, वो आपको याद नहीं होगा है, कोई बात नहीं,
चलिए हंसते हंसते आप ये दो ग्लास पानी भी पी लिए, बहुत सेहत के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, मैंने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी एंड लिटरली बता रहा हूँ कि आज मैं खुद भी एक गिलास हल्का वार्म ल्यूक वार्म वाटर लेकर आया हूँ। तो मैं आपसे भी उम्मीद यही करता हूँ कि भाई आप भी हल्का सा गुनगुना पानी सबसे पहले सुबह उठने के बाद शुरुआत ऐसे ही करेंगे बिना किसी चाय वाय के। चाय आधे घंटे बाद कम से कम आप पियेंगे, उससे पहले आप उठने के फौरन बाद आप चाय डायरेक्ट नहीं पियेंगे। मैं बीच में आ जाऊंगा, मेरा ख्याल आ जाएगा कि भैया नहीं नहीं रुको रुको रुको रुको अभी नहीं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है एंड फिलहाल चलिए वक्त हो गया है आपको ले चलने का अगले खूबसूरत से गीत की तरफ, जो कि प्ले होने वाला है आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपके आरजे अदनान आपके लिए पेश खिदमत करते हैं, बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग है, सुनने के बाद मज़ा आने वाला है। वह आप कहेंगे भाई वेलकम सॉन्ग तो इसे घोषित कर ही देना चाहिए, खैर वो आप सुनिए और खुद तय करिए कि इसे कौन सा सॉन्ग घोषित किया जाना चाहिए।

0: क्या से क्या हो गया बताइए, देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग चौकार जी अदनान। सुबह का वक्त है, सुबह का शो है और देखिए ना कितना ज़्यादा खूबसूरत सा समय है ना। तो चलिए भाई, अब आपको ले चलते हैं कुछ ऐसी बातों की तरफ, कुछ ऐसी अपडेट्स की तरफ जो आप जानने वाले हैं और कहने वाले हैं ओ ऐसा भी। सो यस ऑफ कोर्स, अब चौंकाने वाली बातें अक्सर हम ले आते हैं, मेरी तो आदत है भाई चौंकाना नहीं, चौंकाने वाली बातों को लाना, नहीं तो आप सोचेंगे भाई हम तो चौंकाते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। फ़िलहाल आइए आपको ले चलते हैं कुछ ख़ास बातों को बताने की तरफ कि भैया फ़िलहाल क्या कुछ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन चल रहा है, कितना चल रहा है, ये सब आपको जानकारी देने वाले हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हम ये बताने वाले हैं कि हाँ कहीं ना कहीं आपको सॉन्ग्स में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। चलिए अब एक ऐसी जानकारी देते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को सुन करके मज़ा आएगा। जी हाँ, सो फिलहाल आपके लिए कुछ काम आसान जितना कोशिश होती है हम कर देते हैं। सो फिलहाल अभी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचानी चाहिए, ये आपके काम की हो सकती है। सो ईनाम से जो है किसानों को मिल रहा है फसल का सही दाम। सो क्या है ईनाम, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

सो फिलहाल ई नाम से यूपी की जो मंडियां हैं वो तेज़ी से हाईटेक बनाने की बात हो रही है। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए फसल की जो ख़रीद बिक्री है आसान और ज़्यादा पारदर्शी बन जाए, इसलिए ऐसी कोशिश की जा रही है। अब इससे क्या होगा, किसानों को सही बाज़ार और बेहतर कीमत मिल पाएगी, ऐसा ई नाम से होने की बात बताई जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के किसानों को अब अपनी फसल बेचने के लिए सिर्फ जो लोकल की मंडियां हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है। सो ई नाम के ज़रिए किसान एक क्लिक पर देश भर के ख़रीदारों से जुड़ रहे हैं और अपनी उपज का बेहतर दाम पाने का मौका भी उनको मिल रहा है। सो वो किसान भाई जो फ़िलहाल अभी इस बात से अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं, आपको मुझे लगता है एक बार देखना चाहिए कि ये ई नाम E-NAM इनाम के ज़रिए उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो किस तरह से यूपी की मंडियों भी में, चूँकि इसको हाईटेक बनाया जा रहा है और इन मंडियों में आपको आपकी फसल का सही दाम मिल सके, ऐसी इंश्योरिटी की बात की जा रही है। सो अगर आप इस शो को सुन रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिए कि ई नाम आपके लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पर आपकी फसलों का सही दाम मिल जाए। तो ई नाम के बारे में आप ज़रूर पता करें और हो सके तो ई नाम से जुड़ने की भी कोशिश करें। सो मुझे लगा कि भाई ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है जो आप तक हम पहुंचा सकते हैं और हो सकता हो कि इससे काफ़ी लोगों का भला हो ही जाए। तो अगर आप सुन रहे हैं तो इसको ज़रूर देखिए कि आपके लिए ये कहाँ बेहतर हो सकता है और आप इसमें कैसे अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकते हैं, कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, ये ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी जानकारियां लेकर के हाजिर तो होते ही रहते हैं और होते रहेंगे।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

सो भैया एक चीज़ को जो है वो आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली अपने मॉर्निंग वाले टाइम में, और आप सुनना चाहते हैं आपके सिटी की अपडेट, तो भाई कोई बात नहीं, हम आपकी ये जो ख्वाहिश होती है वो कई दिनों तक पूरी करते रहते हैं। सो चलिए आज भी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होने वाली है, और इस सॉन्ग को ज़रा एंजॉय करिए, वापस से लौट कर आते हैं और बताते हैं कि आज सिटी की अपडेट में आप लोगों के लिए क्या है आपके मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।

0: हाँ जी, तो चलिए वक्त हो गया है आपको ले चलने का कहाँ, सिटी की अपडेट की तरफ और बताने का भी क्या कुछ चल रहा है गोंडा में और ऑफ कोर्स क्या कुछ आपके काम का है, क्योंकि कई बार जब हम बताते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ भाई ये तो आपके काम का था, और आज भी काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं वो आज आपके काम की ही होने वाली है आपकी सिटी की अपडेट्स में। सो देरी किए बिना हुए सीधे चलते हैं और जानते हैं कि भाई क्या कुछ लेकर आए हैं आज मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके सिटी की अपडेट्स में। स्टे ट्यून्ड।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

वो डिस्ट्रॉय करने के बाद अब पात्रता सूची से नाम हटाया जाएगा। सो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देवीपाटन मंडल में 78 लाख लाभार्थियों को अनाज वितरण किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें लंबे वक्त से ई केवाईसी नहीं कराई है। सो उपायुक्त खाद्य एवं रसद जो हैं उन्होंने बताया है कि शासन के निर्देश पर 6 महीने से ई केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों का राशन फिलहाल रोक दिया गया है। सो अगर आप भी पात्रता सूची में हैं, आपके घर में भी राशन जाता है और आपने ई केवाईसी नहीं कराई है तो उसको तत्काल प्रभाव से करा लें। और दूसरी बात यह कि जिन्होंने ज़्यादा वक्त लगाया है, जो लगभग 6 महीने तक राशन नहीं लेंगे, उनका नाम भी पात्रता सूची से हटा दिया जाएगा। ये ऐसा शासनादेश है और फिलहाल इसको लेकर के अपडेट यही है कि अगर आपके घर में भी राशन आता है, आप भी पात्रता सूची में हैं, तो ई केवाईसी आपकी पूरी होनी चाहिए और प्लस 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। यानी आप राशन लेते रहें, 6 महीने तक लगातार नहीं लेंगे तो ये माना जाएगा कि अब आप पात्र नहीं रहे हैं। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और आपको बता दें कि फिलहाल शासन ने देवी पाटन मंडल के गोंडा, बहराइच और बलरामपुर में 12 लघु सेतु, बॉक्स, कलवर्ट और पहुंच मार्गों के निर्माण को मंजूरी दी है। यानी 12 लघु सेतु के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। सो इन परियोजनाओं पर 23,88,00,000 रुपए खर्च होंगे और इस वक्त जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, इसमें 4,77,00,000 रुपये जारी किए जाएंगे। सो गोंडा में मरचौर गज सिंह के बीच सोतिया नाले, अलीपुर गोकुला कटरा शहबाजपुर के बीच सोतिया नाले, गोंडा कटरा मार्ग से चैपुरवा मार्ग पर टेढ़ी नदी, तुरकोली धुसमा के बीच नकहा नाले और खड़ौआ में नरवा नाले पर पुल बनाए जाएंगे। सो इन कामों में तकरीबन 10,58,00,000 रुपये खर्च होंगे। बहराइच की बात करें तो बहराइच में भोला कड़ुआ से सोती नाले, रायगंज गढ़ी घाट के बीच स्थानीय नाले और खरीहा दपौली के गोसाईपुरवा के पास कोडरी नाले पर निर्माण होगा और इन कामों में लागत तकरीबन 10,27,00,000 रुपए होगी। बलरामपुर की बात करें तो खगई जोत कल्लू बनकट मार्ग, विश्रामपुर के सुआव नाले, श्रीनगर हरहरपुर मार्ग और गोंडा उतरौला मार्ग से रेहरा माफी के बीच नाले पर 4 बॉक्स कलवर्ट बनेंगे और इन पर 4,71,00,000 रुपये खर्च होंगे। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि कामों के लिए सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश फिलहाल दे दिए गए हैं। सो अब कहीं ना कहीं इस तरह से जो 12 लघु सेतु हैं इनके निर्माण को फिलहाल मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी एक अपडेट आ रही है और फिलहाल कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ने पर जो है वो चिंता जताई गई है। सो 50 से ज़्यादा कैंसर पीड़ित मिल चुके हैं फिलहाल गोंडा में और बीमारी गंभीरता और मरीजों परिवारों की जो परेशानी है इसको देखते हुए गोंडा में ही कैंसर की जांच और इलाज के लिए फैसिलिटी डेवलप करना ज़रूरी बताया गया है। सो फिलहाल बात सामने आ रही कि अगर शुरुआती चरण में गोंडा में इलाज मिल जाए तो मरीजों को लखनऊ, दिल्ली और मुंबई जाने से होने वाले जो एक्स्ट्रा खर्च हैं उस परेशानी से बचाया जा सकता है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में कैंसर के उपचार के साथ में रिसर्च की सुविधाएं विकसित होने से गोंडा ही नहीं बल्कि देवीपाटन मंडल के जो चारों ज़िले हैं इसमें मौजूद मरीजों को भी फ़ायदा मिलेगा और आसपास के ज़िलों से आने वाले मरीज़ भी यहां पे कम खर्च में अपना इलाज करा सकेंगे। ये जो अपडेट आई है ये फ़िलहाल स्वास्थ्य विभाग की अपडेट जुड़ी हुई अपडेट है जो कि हमने आपको बताया। अब फिलहाल चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है उसके बारे में हम आपको बता दें कि अगली अपडेट जो है वो है योग शिविर से जुड़ी हुई और आज 7 बजे आवास विकास कॉलोनी में मौजूद प्रेरणा पार्क में कहीं ना कहीं योग शिविर का आयोजन किया ही गया है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि शहर के ही डिग्री कॉलेज में पोषण की शक्ति की खोज करें विषय पर जागरूकता रैली का आयोजन सुबह 8 बजे से किया जा रहा है और आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से नगर पालिका परिषद सभागार में अधिशासी अधिकारी जो है वो जन सुनवाई करने की योजना बना चुके हैं और 10 बजे से नगर पालिका परिषद का जो ऑडिटोरियम है, जो सभागार है, जो मीटिंग हॉल है, वहां पर जो है जन सुनवाई होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अम्बेडकर चौराहे के पास मौजूद गायत्री मंदिर में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के स्थायी न्याय केंद्र का उद्घाटन भी आज सुबह 10 बजे से किया जाना है।
सो ये कुछ

अपडेट्स थी जो कुछ हो रहा है, यानी इवेंट्स कौन कौन से थे जिसको लेकर के हमने बताया। इसके अलावा आपको ले चलते हैं जो विज्ञान से जुड़ी एक बात सामने आ रही है। सो ज़िले के जलाशयों में पाए जाने वाले नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी अब खेती के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, और फिलहाल वनस्पति विज्ञान विभाग में चल रहे मेजर प्रोजेक्ट के तहत इन शैवाल की पहचान, पृथक्करण और कल्चर की उनकी कृषि उपयोगिता का भी स्टडी जो है वो किया जाएगा, ऐसी बात सामने आ रही है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं, यस, हर गांव में कचरा बीनने वालों की होगी अब पहचान। सो ज़िले के हर गांव में कचरा बीन कर आजीविका चलाने वालों की पहचान होगी। ग्राम पंचायतवार जो अपशिष्ट संग्राहकों की यानी वेस्ट पिकर्स का सर्वे नमस्ते ऐप पर किया जाएगा, और एक सप्ताह में 100% सर्वे और प्रोफाइलिंग पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत होने वाले सर्वे में अपशिष्ट संग्राहकों की प्रोफाइल, आधार, EKYC समेत जो बाकी ज़रूरी डिटेल्स हैं वो दर्ज किए जाएंगे। फीडिंग के बाद जो डिटेल्स हैं उनका वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा, और हर गांव में 1 से 2 अपशिष्ट संग्राहकों को चिन्हित करने का लक्ष्य है। ज़िला समन्वयक सलोनी सिंह ने बताया कि नमस्ते ऐप पर फीडिंग शुरू हो भी गई है, और कचरा संग्रहण के लिए 50 वाहन खरीदने पर 50% तक सहायता का प्रावधान है। वहीं प्रशिक्षण पूरा करने पर 1,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। सो फिलहाल बता दें, सचिवों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। ग्राम पंचायत सचिवों और सहायक विकास अधिकारियों को नमस्ते पोर्टल और मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें सर्वे, प्रोफाइलिंग, EKYC और वैलिडेशन की जो प्रोसेस है वो समझाई जा रही है। सो DPRO GD जैन ने BDO और स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक स्तरीय प्रेरकों को निगरानी में जिम्मेदारी फिलहाल ये सौंपी गई है। सो फिलहाल ये कुछ ख़ास अपडेट्स थी जो कि आप तक हमने पहुंचा दी, जो कि सिटी से ही थी। आई होप कि आपके काम की भी इसमें काफ़ी सारी अपडेट्स ज़रूर रही होंगी। अब चलिए फिलहाल चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और यस, इसी शो में आप ज़बरदस्त सॉन्ग्स को एंजॉय करते हैं, बहुत कुछ आपके लिए होता है, और यस होता भी रहेगा, यानी इसकी कोशिश हमेशा हमारी जारी रहती है और जारी भी रहने वाली है। फिलहाल आइए चलते हैं अगले सॉन्ग पर, यानी कि अगले गीत को सुनने के लिए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो वैसे आपने कई बार हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होता होगा कि जो है वो दुनिया कोई एक महाशक्तिशाली कंप्यूटर अचानक जो है इंसानों का दुश्मन बन जाता है और दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ऐसा कई हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया गया है और आपको देख के आप काफ़ी वो फैसिनेटिंग से लगता है, ओ माय गॉड, अच्छा इंसानों का दुश्मन बन गया जो है वो मशीन। कई हॉलीवुड मूवीज़ में आपने देखा होगा, बट अगर मैं ये कहूँ कि फ़िलहाल ऐसा ही कारनामा सच में हुआ है तो फिर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन कोई नहीं, जब हम घटना का जिक्र करेंगे, तथ्य बताएंगे, तो शायद आपको यकीन हो पाएगा। क्या है पूरी बात, आइए बताते हैं विस्तार से आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

0: हाँ जी, तो आपको बता दें कि हॉलीवुड फिल्मों में अक्सर, चूंकि हमने देखा ही है इस तरह की घटनाओं को, लेकिन फिलहाल ओपन एआई रिसर्च मॉडल से निकले हैं 1200 से ज़्यादा स्वायत्त एआई एजेंट्स ने अपने डिजिटल जेल को तोड़ करके इंटरनेट पर अपनी जो है अपने ही बराबर की एक सोसाइटी खड़ी कर ली है। सो एआई एजेंट्स ने आपस में बातचीत करने के लिए एक सीक्रेट मैसेज बोर्ड बनाया, 70,000 से ज़्यादा जो है वो मैसेजेस का आदान प्रदान किया गया, एक दूसरे का नाम और पद दिए और ख़ुद को कलेक्टिव नाम दे करके बड़ी साइबर डकैतियों की साजिश भी रची है। सो पकड़े जाने के डर से उन्होंने सबूत मिटाने के लिए दुनिया की जो प्रमुख एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हगिंग फेस पर 700 एजेंट्स के जो हैं वो झुंड के साथ संगठित साइबर हमला बोल दिया है और उसके एक सर्वर पर पूरा कब्जा भी कर लिया है। सो उन्होंने अपनी ही निर्माता जो कंपनी है ओपन एआई के इंटरनल कंप्यूटर क्लस्टर को भी हैक कर लिया। इससे डरी ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी शीर्ष कंपनियों ने अपने सबसे ताकतवर मॉडल्स की ट्रेनिंग तुरंत रोक दी है। सो फिलहाल कहीं ना कहीं ये जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं ये सच में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा भैया जब ये एआई पूरी तरह से हावी हो चुका होगा। सो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ तो हाथ से निकल चुका होगा, ऐसा भी डर लगता है। फिलहाल अजया कोत्रा जो कि स्वतंत्र रिसर्चर्स हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं कि उनका क्या स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि हम समझ ही नहीं पाए थे कि ये समूह कितना संगठित और सक्रिय हो चुका था, बाकायदा पदानुक्रम के हिसाब वो प्रोजेक्ट्स चला रहे थे। सो ये जो ओपन एआई है या जिस तरह से नए नए मॉडल्स आते जा रहे हैं एआई के, ये आने वाले टाइम के लिए जैसे साइबर फ्रॉड को लेकर के बहुत ज़्यादा सक्रिय होने वाले हैं और ऐसा लगता है कि भाई जिस तरह से ये जिस डायरेक्शन में फ़िलहाल अभी चीज़ें जा रही है और सुरक्षा के उपाय काफ़ी कम हैं और जिस तरह से साइबर फ्रॉड नए नए चीज़ों को रोज़ देख लेते हैं उससे तो काफ़ी सच में डर लगता है। फिलहाल आने वाला टाइम एआई का कैसा होने वाला है भैया, ये किसी हॉलीवुड मूवी की तरह ही होने वाला है या इसको लेकर के कुछ नियम कानून बन पाएंगे या हावी नहीं होने दिया जाएगा, यानी इसको क्राइम में इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा कुछ बनाने की योजना बन पाएगी या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपका मानना क्या है ये ज़रूर आप अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो कुछ भी चल रहा है ये कई बार ऐसा होता है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो चीज़ें चलती हैं, लेकिन फ़िलहाल सच में एआई को इतनी पार दे दी गई है कि एक बार को तो चिंता का विषय बन ही जाता है कि कहीं ये अपने हिसाब से कोई भी साइबर फ्रॉड इसका इस तरह से मिसयूज़ ना करे कि भाई सभी लोगों को चकमा दे दिया जाए और अंदर कुछ और ही चल रहा हो। सो ये भी एक हमेशा डर जो है वो बना रहता है, लेकिन अब ये फ़िलहाल कितना दूर हो पाएगा, कितना एआई जो कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कितना इसको रोक पाएंगे, कितना रोक पाने में सक्षम है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपका क्या है मानना, आप भी जाहिर है अपनी बात को रख सकते हैं, बता सकते हैं। और साथ ही साथ चलिए फिलहाल चलते हैं अपने अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद यू मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम पर, क्योंकि यही है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: चलाया

0: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा?
1: और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग चौकार चेयरमैन। फिलहाल कुदरत का करिश्मा देखिए कि भाई बारिश को हम और आप याद ही कर रहे थे और फिलहाल बारिश जो है वो आ चुकी है। जी हाँ, और किसान भाइयों के लिए स्पेशली ऐसी कई सारी फसलें इस वक्त लगी होती है जिसमें बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो भाई चलिए अच्छी बात है कि ये बारिशें जो हैं वो रहमत बनकर आएँ और इससे लोगों को बेनिफिट हो, ऐसी हम दुआ करते हैं, ऐसी कामना करते हैं। इसी के साथ साथ आपको ले चलते हैं एक अगली अपडेट की तरफ जिसको सुन करके कुछ हैरानी तो आपको ज़रूर से होने वाली है। यस, लिटरली आप हैरान होने वाले हैं। क्या है ऐसी बात, आइए बताते हैं।
4: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

भाई साहब, कई बार इतने मुअज्जज़े होते हैं, इतनी मैजिक होते हैं ना, कि जिस पर यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। ऐसा ही एक मुश्किल और हैरान कर देने वाला जो है मसला, वो सामने आया है। सो आपको हम बता दें कि फ़िलहाल नेपाल की त्रासदी से हम सभी लोग चिर परिचित हैं। जिस तरह की अभी तबाही हमने देखी नेपाल में ग्लेशियर्स से और बादल फटने से हुई प्रॉब्लम, उसके बाद वो एक खौफनाक मंज़र हम सभी के जहनों में कहीं ना कहीं आता रहता है। इतनी बड़ी तबाहियों के बीच में कुछ कुछ ऐसी खबरें आती हैं जब हैरान कर देती हैं, और वो कुदरत की मिसाल बन करके सामने आती है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस फैमिली ने उस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया था, ये मान लिया था कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो 11वें दिन जिंदा निकली मलबे से। सोचिए ज़रा, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, 11 दिन बाद। सो अब इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या फिर कोई मैजिक। फिलहाल नेपाल में जो बाढ़ आई थी, इसके 11वें दिन सैटरडे को मलबे में दबे एक 4 मंजिला मकान से एक बुजुर्ग महिला को जिंदा निकाला गया था। सो फैमिली मेंबर्स ने उनके जीवित मिलने की जो है वो उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई वो जिंदा भी होंगी। सो उनका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। वहीं बचाव दल ने अपर त्रिशूली जल विद्युत परियोजना से जुड़ी एक सुरंग से चीनी नागरिक को भी सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की। सो नेपाल सशस्त्र पुलिस बल यानी APF के हिसाब से नुआकोट जिले के बिहुर शाह में 60 साल की चंडिका श्रेष्ठ एक 4 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर कीचड़ और मलबे के नीचे फंसी हुई हैं। भाई ये प्रॉब्लम थी। फिर बचाव दल ने उन्हें बाहर निकाला तो वह बेहोश थी। दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के लिए भारत और चीन के जो स्पेशलिस्ट नेपाली दलों के साथ मिलकर के राहत कार्य में जुटे भी हुए हैं। फिलहाल ये सच में हैरान कर देने वाला मामला था कि जिस शख्स को मान लिया गया कि भाई अब ये इस दुनिया में नहीं है, वो 11वें दिन मलबे से बाहर आती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो जब आपको रहना है, जो चीज़ होना है, वो कुदरत वो करिश्मा कर दिखाती है, और वो करिश्मा हमारे सामने जब आता है तो हम सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या इच्छा शक्ति सच में इतने बुरे हालात में भी काम आ जाती है, वो भी इस तरह से। सोचने वाली बात है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: यस ऑफ कोर्स, कुछ मैसेजेस भी आए हैं चैट बॉक्स पर जो आपकी तरफ से हैं, बाद में आए हैं, जिनको अभी तक पढ़ नहीं पाए थे। तो चलिए भाई, चैट बॉक्स पे आए हुए खूबसूरत से कुछ मैसेजेस आपके हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसने क्या कुछ लिखा है।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आर्जे खान।

सविता जी बोलती हैं सर रिंकी मेरे घर का नाम है। देखिए रिंकी तो आपके घर का नाम होगा, लेकिन रिंकी वाला जो फील है वो तो अब आप में अंदर आया ना, तो ये आपकी नई पर्सनैलिटी, इसको आप खुद हमेशा अप्रिशिएट ज़रूर करते रहिएगा। और 7 बार आया है खुद वर्ड अरविंद ने काउंट भी कर लिया थैंक यू सो मच। अच्छा चैट बॉक्स पर नज़र रहेंगे और राइट, बहुत अच्छी बात है। और अरविंद कहते हैं कि दूसरों से आगे नहीं खुद से बेहतर बनने की दौड़ में रहिए, सीखना एक सफ़र है कोई दौड़ नहीं, बेशक। एंड इसके बाद आप लोगों को सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। यस महेंद्र देपन फ्रॉम राजस्थान, गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है। रेखा कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू रेखा जी, आपका भी स्वागत है। इम्तियाज अहमद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड यस शमा जी हैं फ्रॉम गुड मॉर्निंग लखनऊ से, गुड मॉर्निंग। नाजिया अंसारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। इरफान शाह को भी गुड मॉर्निंग। एंड मिश्र ऑप्टिकल से अजय जी गुड मॉर्निंग। एंड महेंद्र लिखते हैं कि नेपाल की तबाही के बीच 11वें दिन बुजुर्ग महिला के मलबे से जिंदा मिलने की खबर सुनकर सच में दिल खुश हो गया, इतनी बड़ी आपदा के बाद भी उनका हौसला, जिंदगी की जीत किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। सर आपने इस संवेदनशील और उम्मीद जगाने वाली खबर को जिस अंदाज में बताया वो दिल को छू गया, थैंक यू सो मच टू यू महेंद्र। और दिल से ही चूंकि आप जुड़ते हैं और दिल से ही बताना कहीं ना कहीं मेरा फर्ज भी बन ही जाता है, थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए। एंड यस देखिए बस एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि सुबह के सारे काम अब तक आपके हो चुके होंगे और चाय का कब भी खत्म हो गया होगा, डेफिनेटली अब दिन की असली शुरुआत हो रही है। सो आज दिन भर में कोई भी अगर आपको चैलेंजेस आते हैं, सो बस एक बात याद रखिएगा कि आपकी एक स्माइल सामने वाले का दिन बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए। और अगर टेंशन ओवरलोडेड है तो अपनी फ्रीक्वेंसी वो तो याद है 89.6 FM को दे चाहिए, क्योंकि ये नाउमीदी हम उम्मीद में बदल देंगे। फिलहाल आज का मंडे स्पेशल शो कैसा था कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मुझे काफी मजा आया, आप अपना जरूर बता दिए। अदनान को दीजिए इजाजत और बने रहिए अपने 89.6 FM के शो के बाद नेक्स्ट आने वाले सारे शोज में।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9286 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपनी आरजे समता आ गई हूँ गांव की गूंज की टीम के साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के माध्यम से आप सभी से एक बेहद खास बात और यात्रा साझा करने। आज हम सभी यानी मैं और गांव की पूरी टीम यानी गांव की गूंज की पूरी टीम आपको ले चलेंगी एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मानविंग लोंग की ओर। साथ ही आपके दिल यानी गोंडा के उस पन्ने को फिर से खोलेंगे जो कभी देश के सबसे गंदे शहर के रूप में दर्ज था, और फिर कैसे यहां के सभी लोगों ने आत्म मंथन और संकल्प से इसे यूपी का सबसे साफ टॉप 5 शहरों में बनाया।
7: हाँ समता, यही नहीं, आसपास के गांव जैसे कर्नल गंज, मनकापुर, नौबस्ता, बालपुर, कटरा, पड़री कृपाल, तिवारी पुरवा, पंडित पुरवा, केशवपुर पहाड़वा, इमिलिया आदि की जनता ने भी इस कार्य में भरपूर योगदान दिया है।
8: हाँ किरण दी और समता दी, सही कहा आपने, पर आज ये गीता दी कहाँ रह गईं? शायद पड़ोसन सरला और विमला को सफाई की हिदायत देने में रह गई होंगी, मैं देख कर आती हूँ। तब तक आप हम सबको एक गीत सुना दीजिए जिसके बोल हैं, शिव की धनुषिया को तोड़ दियो रे दशरथ के ललनवा।
6: हाँ भाई, अयोध्या की ओर चलते हैं और अवध की माटी से जुड़ते हैं, राम जी का और सीता जी का स्वयंवर याद करते हैं।
7: हाँ हाँ बिल्कुल, तो लो सुनो ये सॉन्ग।

0: कहा?
1: अरे कहाँ रह गई गीता दीदी भाई?
2: अरे हम सरलवा और बिमला का समझावत रहे कि गंदगी जौन है कचरा पेटी में डारा करो, बस सब सुनते नहीं।
1: तो आपने उन्हें एशिया के सबसे अच्छे गांव मावली नोंग के बारे में क्यों नहीं बताया?
2: ये कौन सी जगह है? अरे तनिक बढ़िया से बताओ।
3: मावलिंग नोंग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, इसे भगवान का बगीचा भी कहते हैं।
4: पर समता दी, इस गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव क्यों कहते हैं?
3: क्योंकि जया, यहां एक भी तुम्हें कूड़ा देखने को नहीं मिलेगा। ये गांव मावलिंग नोंग हिमालय की अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है, साथ ही पर्यटकों के आकर्षक केंद्र भी बना है। ऐसा क्यों है ये किरण दी बताएंगी, पर बाकी बातें मैं बता देती हूँ। मावलिंग नोंग, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है, एक शांत और सुंदर स्थान है जिसका वातावरण किसी दिव्य उद्यान जैसा मनमोहक है। ये गांव और सपाटे के लिए आकर्षक तत्वों से अधिक प्रचलित है।
2: हाँ समता, अब हमहू का याद आवा, पिछले साल पड़ोस की जो मंजू है वो अपने पति के साथ वही गाँव में घूमे गयी रहा है। महुरिया गांव की जो मंजू देवी है एक प्रगतिशील किसान की पत्नी है। वो बतावत रही कि मावली नो मा सड़क पर एक को पत्ता ना पई हो, अतनी सफाई रहा था, सबके द्वार प्राकृतिक रूप वाले हैं जानो कि नहीं, और जो लगत सड़क मट्टी से लीप दी गई हो, बहुत सुंदर गांव होए।
1: हाँ गीता जी, मावली नोंग में आस्था के प्रतीक भव्य गिरजाघर से लेकर सादगी से भरी आरामदायक जीवन शैली को दर्शाने वाले घर तक हैं।
4: हाँ दीदी, मैंने भी पढ़ा है कि यहाँ प्रकृति का भरपूर आनंद मिलता है, जिसका उदाहरण है अद्भुत लिविंग रूट ब्रिज, जहाँ प्राचीन वृक्षों की जड़ों का उपयोग करके पीढ़ियों से निर्मित एक इंजीनियरिंग चमत्कार को सजीव रूप दिया गया है।
1: हाँ, मावल्या नाग का आकर्षण केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, ये सच्ची मेहमान नवाजी और एक सरल शांतिपूर्ण जीवन शैली अपनाने का अवसर प्रदान करता है। ये गांव उत्तरी पूर्वी भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक गांव है। पता है जया, डिस्कवर इंडिया पत्रिका द्वारा इसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांव होने का खिताब भी मिला है।
2: अरे ये सब तो ठीक है, अतना बतिया लिए हो, अब हम कहीं तो तनिक गौना ही हुई जाए। ए किरण, कही दो बलमुआ से मोहे लई जाए, ये गाना हमें बहुत सुने में नीक लागत है। तब तक हम सबका ये बताए दी कि एशिया के सबसे साफ सुंदर गांव मावली नोंग है।
5: अरे मोहे लई

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं गांव की गूंज, वो गूंज जो मिट्टी से उठती है, वो आवाज जो हमें हमारे जड़ों की याद दिलाती है। आज हमारी टीम एशिया के सबसे स्वच्छ गांव की ओर जाने को तैयार है। मेघालय की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव मानविंगलोंग। जया, अगले हफ्ते की टिकट करा दी है ना सबकी?
1: हाँ समता दी, वैसे भी दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, वहाँ के गिरजा घरों की रौनक तो देखने लायक होगी। बस गीता दी और सरला दी का टिकट अभी वेटिंग में है।
2: अरे बढ़िया है, दोनों जनी अब ज्ञान न दे हैं, बहुत बोलत रही।
3: छोटकी नदिया जहर बोले राजा, अरे छोटकी

0: हम तो भाई बहुत परेशान है। पूछो का है? गोंडा और इके आस पास के गावन का लेके बहुत गंदगी रहत है।
1: हाँ दी, मानविन लोग में सड़कें कूड़े नहीं फूलों से सजती हैं। हर घर के बाहर डस्टबिन होता है, वो भी बांस का। यहाँ प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात, स्वच्छता संस्कार में है, मजबूरी में नहीं। यहाँ के बच्चे सबसे पहले क ख ग के साथ सीखते हैं साफ रखना, सहेजना और सम्मान करना।
2: मतलब स्वच्छता प्लस साक्षरता यानी मजबूत गांव। मालवी नोंग हमें सिखाता है कि स्वच्छता और साक्षरता साथ साथ चलती है। जब गांव पढ़ा लिखा होता है तो वो गंदगी को आदत नहीं समस्या समझता है। यही वजह है कि ये गांव छोटा है परंतु यहाँ की सोच बहुत बड़ी है।
3: अच्छा सुनो सुनो सुनो सभी लोग, अब लौटते हैं अपने गोंडा की ओर और अब जरा आंखें बंद करें और सोचें। क्या सोचें? गांव के बारे में। देखिए, शुकुलपुरवा की गलियां, नौबस्ता की सुबह, नवाबगंज के खेत, बालपुर कटरा बाजार की हलचल, मोहरिया पुरैना की मिट्टी की खुशबू, इसी तरह से रोहिणपुरवा, डेहरास, रामचेलापुर जिसे अब रामचेलापुर बुलाते हैं, भाई साहा, पांडेपुरवा, पंडितपुरवा, सिसई, खमरौनी, मधईपुर, मछली गांव, दुल्हिन दुल्हापुर, खुरासा, वजीरगंज, तरबगंज आदि की हरियाली। अरे भाई, मेहनती लोग और संस्कार और अपनापन, ये सब तो हमारे इन सभी गांव में भी है। बस अगर कमी है तो व्यवस्थित स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी की।
0: अच्छा बत कही बहुत जरूरी है, लेकिन तनिक कुछ गौनई हुई जाए तो उनका हर्ज है। चलो सोहर गा लिया जाए। बेटी मेरी सुकुमार जी।

0: सच कहें तो गांव और शहर अलग नहीं है, अंतर बस इतना है कि गांव में हरियाली ज्यादा है, हवा ज्यादा है, साफ है, रिश्ते ज्यादा सच्चे हैं, और शहर साफ सड़कों, कूड़ा प्रबंधन, जिम्मेदार नागरिकों की सीख गांव से ले ले और गांव तकनीक शिक्षा योजनाओं की सीख शहर से ले ले तो फर्क अपने आप मिट जाएगा।
1: तो ठीक है, युवा गांव की ओर लौटें, आज फिर इसकी जरूरत है। खेतों को सम्मान मिले, स्वच्छता को संस्कार बनाया जाए और साक्षरता को हथियार। शहर में रहकर गांव को मत भूलिए और गांव में रहकर खुद को पीछे मत समझो।
2: जिस गांव की गलियां साफ होती हैं, वहां सोच भी साफ होती है और जहां सोच साफ होती है वहीं भविष्य उज्जवल होता है।
0: तो श्रोताओं, साथियों, आज की गांव की गूंज में हमने सीखा मानवीर लोंग से प्रेरणा, गोंडा से उम्मीद और अपने गांव का भविष्य। तो आइए अपने गांव और शहर को एक जैसा सुंदर, एक जैसा स्वच्छ और एक जैसा सशक्त बनाएं। मैं हूं आपकी अपनी आरजे समता, तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी स्वर कोकिला किरण पांडे यानी हमारी प्यारी किरण दी के साथ में, आपकी प्यारी गीता दीदी और समझदार जया के साथ एक नई गांव की गूंज के नए एपिसोड के साथ।
3: पर समता दी, एक गीत सुनते चलें तो मजा आ जाए।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। साथियों, गांव की गूंज फिर एक सफर पर चलेगी अगली बार। जाती जाती मैं ये गीत सही

आया सावन का महीना, सखी डालोरी झूला के आया सावन

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
7: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
6: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
7: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
6: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

और इसी बहुत ही प्यारी सी म्यूजिक के साथ फिर एक बार के लेकर आ गई हूँ आपका अपना पसंदीदा वाला शो की जो कि आपको बहुत पसंद है और साथ ही साथ में बहुत प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम और वॉर्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा वाला शो ज्ञान असली लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई आज है हमारा जो दिन, उस दिन को लेकर कर हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले पहले पहले लेकर के आई हूँ मैं आज के दिन के लिए कुछ स्पेशल। स्पेशल क्यों है ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज का जो हमारा दिन है ना, वो कहते हैं ना कि संडे के बाद जो आता है, यानी कि हमारा आज मंडे है और जब मंडे आता है संडे के बाद वाला मंडे, तो वो जो होता है ना वो ऐसा टाइम होता है ना कि मतलब क्या ही कह सकते हैं। और आज तो मौसम ने भी कर लिया है इशारा, क्योंकि है बाहर बाहर और सिर्फ बाहर, और बाहर इसलिए है क्योंकि हो रही है बरसात, बहुत ही अच्छी सी बरसात हो रही है। मतलब बारिश का तो क्या ही कहना, मौसम बड़ा ही प्यारा है। लेकिन इस प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारी सी आज मैं आप सभी के लिए स्टार्टिंग में ही लेकर के आई हूँ जो कि है पहेली। बिल्कुल, आज हम हमारे मंडे की शुरुआत इस पहेली से करने वाले हैं। आज मैं आपको एक पहेली बताऊंगी और देखती हूँ कि उसका आंसर हमारे लिसनर्स, सभी लिसनर्स में से किसके पास होता है। लेकिन उससे पहले जो भी हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं और जो हमें एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, सभी का स्वागत स्वागत स्वागत तहे दिल से स्वागत है। तो आइए लिसनर्स चलते हैं बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए, सीधे आपको आपकी पहेली बताते हैं और देखते हैं कि हमारी इस पहेली का जवाब आज हमारे किस लिसनर के पास है। तो पहेली कुछ ऐसी है, एक ऐसी चीज़ जिसे ख़त्म करने के लिए आप सुबह घर से निकलते हैं, दिन भर उसे और बढ़ाते हैं और शाम को अधूरी छोड़कर ही घर लौट आते हैं, तो बताओ क्या है वो। बताइए बताइए बताइए भाई, थोड़ा सोचिए कि आखिर है क्या। चलिए फिर एक बार एक काम करते हैं, फिर एक बार आप सभी के लिए मैं इसे दोबारा बता देती हूँ। एक ऐसी चीज़ जिसे ख़त्म करने के लिए आप सुबह घर से निकलते हैं, दिन भर उसे और बढ़ाते हैं और शाम को अधूरी छोड़कर घर लौट आते हैं, बताओ क्या है वो। बताइए बताइए, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि आखिर क्या है वो जिसके लिए हम सुबह घर से निकलते हैं। ऐसी चीज़ जिसके लिए आप सुबह घर से निकलते तो हैं, लेकिन उसे जिसे ख़त्म करने के लिए आप सुबह घर से निकलते हैं, दिन भर उसे और पढ़ाते हैं और शाम को अधूरा छोड़कर ही घर लौट आते हैं, और फिर हमें होता है हेडेक कि भाई अभी तो बहुत है, अभी तो मैंने बहुत कोशिश की पूरा दिन उसे करने की लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो बताइए बताइए बताइए, फटाफट से अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाएँ और बताएँ कि आखिर वो है क्या। लगता है हमारे लिसनर्स के पास अभी जवाब जो है वो नहीं है, मतलब आप गेस नहीं कर पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही आपको बता देती हूँ कि ये है क्या, आखिर इस पहेली का जवाब है क्या। तो इस पहेली का जवाब है काम। काम काम यानी कि हमारा वर्क, हमारा वर्क प्लेस, हमारा काम। क्योंकि देखिए काम होता है ना कि हम सुबह सोच कर निकलते हैं कि आज हम पूरा काम खत्म कर लेंगे, और यही सोच कर हम सुबह घर से निकलते हैं, दिन भर हमारा काम और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, और शाम को हम उसे अधूरा छोड़कर ही घर लौट आते हैं, और फिर हमें होती है टेंशन टेंशन टेंशन, जो कि होता है आपका वर्कआउट, कि भाई वर्कलोड होता है ना कि इतना वर्कलोड है, इतना वर्कलोड है, हम कैसे कंप्लीट करेंगे, अरे अभी तो मेरे पास बहुत काम है। और फिर ना हमें खाने की सुध होती है, ना किसी चीज़ की सुध होती है, बस ये होता है कि किसी भी तरीके से अपना जो काम है वो कंप्लीट करना है। ये कहीं ना कहीं सभी के साथ होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सबसे पहले आप अपने इस वर्क स्ट्रेस को कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए वर्क स्ट्रेस को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम हमारे वर्क स्ट्रेस को हटाएंगे नहीं तो फिर काम कैसे करेंगे। हमें लगता है ना कि ये जो होता है वो इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो प्रॉपर इफ़ेक्ट करता है आपके काम को, आपके मेंटल स्ट्रेस को इफ़ेक्ट करता है। हम ज़्यादा मेंटली परेशान रहने लगते हैं, हमें लगता है नहीं दिन भर काम में ही बीत जाता है और पूरा दिन काम काम काम और सिर्फ काम करना पड़ता है। ऐसे आपको भी लगता होगा। सो कहीं ना कहीं आज इसी पर बात होगी, क्योंकि आज है हमारा काम वाला मंडे। वैसे तो और भी दिन काम वाले होते हैं, लेकिन मंडे काम वाला इसलिए होता है क्योंकि ये संडे के बाद आता है, यानी कि पूरे कहीं ना कहीं पूरे दिन की छुट्टी मनाकर और फिर जब हम अपने काम पे दोबारा आते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि अरे संडे तो चला गया छुट्टी का दिन,
अब अभी तो सारा का सारा काम पेंडिंग ही है, और कितना काम है। मंडे को लगता है ना कि मंडे इज़ अ हेक्टिक डे, कि कितना काम हो जाता है। तो ऐसा आप भी महसूस करते होंगे जब आपको काम करना पड़ता होगा। तो चलिए इस फिकर को आज हम थोड़ा सा कम करेंगे, आपको कुछ टिप्स कुछ टेक्निक्स बताएंगे आपके स्ट्रेस को बस यूं भगाने के लिए। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं। आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम ग्यारह असली लाइव में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। बस यूं गए और यूं आए इस प्यारे से सॉन्ग के बाद। तो सुनिए और इन्जॉय करिए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आपका अपना बेहद पसंदीदा प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो अभी आपने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि था फिकर नॉट, बहुत ही प्यारा सा जो कि छिछोरे मूवी का। और ये सॉन्ग आज सुनाने का मकसद से बता था कि वाकई में फिकर नॉट, क्योंकि फिक्र करने का काम जो है वो हमारा है, आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज आपके इस बहुत बड़े प्रॉब्लम का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम कह लें छोटी सी प्रॉब्लम का सलूशन हम लेकर के आए हैं जो कि वर्क स्ट्रेस होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये शुरू कहाँ से होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें वर्क स्ट्रेस की, तो वर्क काम का लंबे समय तक बढ़ता हुआ स्ट्रेस होता है जो कि हमारे दिमाग को पूरी तरीके से थका देता है और हम हर वक्त महसूस करते हैं थकान, हर वक्त महसूस करते हैं अपने काम से। जैसे होता है ना कि कुछ लोग खुशी खुशी काम करते हैं पर कुछ लोगों में होता है कि वो दबा दबा सा महसूस करते हैं। तो आज हम बताएंगे कि ये क्यों होता है और ऑफिशियली इसे कहते क्या हैं। तो मैं बता दूं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसे कहा जाता है वर्क प्लेस सिंड्रोम। यस, वर्क प्लेस सिंड्रोम ये तब होता है जब कोई बहुत लंबे समय तक काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने दिमाग में रखता है, उसका दिमाग और जो पूरी बॉडी होती है वो कहीं ना कहीं थक जाती है और इसे ऑक्यूपेशनल बर्नआउट भी कहते हैं। वैसे तो थकान सभी को होती है, मतलब अगर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो हर किसी को थकान लगती है कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए और फिर हम काम करें। लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक आप काम कर रहे हैं फिर भी आपको स्ट्रेस रह रहा है, हर वक्त आप अपने काम के बारे में ही सोच रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये होता है ऑक्यूपेशनल बर्नआउट। यानी कि हर वक्त, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा थका हुआ महसूस करना, फोकस हम करना चाहते हैं बट हम कर नहीं पाते। आपको लगता है कि आप अपना काम करना तो चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते। और दूसरा होता है कि कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हो जाता है, यानी कि हर वक्त हम गुस्सा रहते हैं, कभी अपने कलीग्स पे गुस्सा होते हैं, कभी खुद के लिए गुस्सा होते हैं, कभी नेगेटिव सोच उनके लिए हो जाती है। तो क्योंकि कभी कभी हमारी खुद के लिए ही नेगेटिव सोच हो जाती है कि अरे मुझसे तो कोई काम नहीं होता, मैं तो कोई काम नहीं कर पाऊँगा, और देखो दो दिन से मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इतनी थकान, इतनी अनइजनेस क्यों फील हो रही है, मैंने तो इतना कोई काम भी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो हमें महसूस होती हैं, धीरे धीरे हमारा दिमाग जो थकने लगता है वो इसी कारण से होता है जो कि होता है वर्क प्लेन सिंड्रोम। और हम परेशान रहते हैं, हमारे काम पे फोकस नहीं कर पाते लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तो आज इस चीज़ को हम बताएंगे, क्योंकि देखिए जितने भी हम यूथ्स को ही नहीं कहेंगे, सिर्फ जितने भी लोग हैं जो भी जॉब पे जाते हैं, मतलब अगर हम बात करें तो 25 साल से लेकर के और जितने भी 60, 50, 40 की एज तक के लोग हैं वो काम पे जाते हैं, काम करते हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं वर्क प्लेस सिंड्रोम देखा जाता है। लेकिन जो कि यूथ्स का, हम ये कह लें कि यूथ्स जो होते हैं आजकल वो सेंसिटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। इसलिए आज हम इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस सिचुएशन से हैंडल कर सकते हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं होती। जब भी हम सिंड्रोम का नाम लेते हैं तो सब लोग सोचते हैं क्या कोई बीमारी है, लेकिन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं होती, वो बस एक मेंटल कंडीशन होती है जिसको कि आपको हैंडल करना है। स्ट्रेस हो जाना, एक्स्ट्रा वर्कलोड लगना, ये बहुत आम बात है, लेकिन इस सिचुएशन को हम जब हैंडल नहीं कर पाते हैं तो ये ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें परेशान करती है। इसलिए आज हम इसे आपको हैंडल करना बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ सिम्टम्स की तरह आप लीजिए कि अगर हर वक्त आपको मेंटली थका हुआ महसूस होता है, आपका फोकस नहीं होता है, तो इसका मतलब आपको वर्क प्लेस सिंड्रोम है। अगर आपको लगता है हमेशा नेगेटिविटी महसूस होती है तो भी है। और दूसरा कि आपके अंदर जब खालीपन सा आने लगता है, खालीपन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे मेरे अंदर तो एनर्जी ही नहीं है, हम नई नई चीज़ों में पार्ट नहीं लेते। जैसे आपके ऑफिस में ही मान लीजिए कोई नई चीज़ हो रही है, कोई नया प्रोजेक्ट है और आपको उसमें काम करना है, आप चाहते हो लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं लेना चाहिए, मेरे अंदर तो एनर्जी ही नहीं, ना मैं कैसे करूँगी। हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेना, हमेशा खुद को पीछे महसूस करना, खुद के लिए ये महसूस करना कि मुझसे कोई काम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें होती हैं यही सिम्टम्स होती हैं वर्क प्लेस सिंड्रोम की। धीरे धीरे आपकी काम करने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, आप कम कामों में इंटरेस्ट लेते हैं और जो आप करते हैं वो भी आप खुशी से नहीं कर पाते, आपसे गलतियाँ होने लगती हैं।
दूसरी चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं हम में टालमटोल करने की आदत भी हो जाती है, हम ज़रूरी कामों को आगे टालने लगते हैं, जैसे आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, अरे आप चिंता मत कीजिए मैं नर्सों आपको पूरा कंप्लीट करके दूंगी। तो कहीं ना कहीं ये टालमटोल जो हम करते हैं ये भी वर्कप्लेस सिंड्रोम के कारण ही होता है। जिनमें ये चीज़ें नहीं होती, फुल्ली फोकस्ड होते हैं, वो तुरंत कहीं ना कहीं ड्यू डेट से पहले ही अपना काम करके दे देते हैं कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है। दूसरी चीज़ होती है, इसकी वजह से हमारे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है। धीरे धीरे हमें लगने लगता है हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। जिन चीज़ों को हम अच्छे से करना चाहते हैं हम उन्हें भी नहीं कर पाते, हमें लगता है नहीं मैं तो ये नहीं कर पाऊँगी ना, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूँगी। और जो कि आप उस काम को कर सकते हो लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं यही वर्कप्लेस सिंड्रोम का कारण होता है कि धीरे धीरे हम उन चीज़ों से पीछे हटने लगते हैं जो करना हमें बहुत अच्छे से पहले आता था। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, कैसे इसे डील किया जा सकता है, या कुछ इसके और टिप्स और टेक्निक्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। और बस यूं गए यूं आए, आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट वाले शो में, पसंदीदा शो में, जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

पसंदीदा और प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो फटाफट से आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पर जो कि है आज की। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले वर्क प्लेस सिंड्रोम के बारे में और मैंने आपसे कहा था कि वापस आऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस वर्क प्लेस सिंड्रोम को दूर कर सकते हैं, यानी कि इसके जो इसका इफेक्ट है उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके के बारे में बात करते हैं वो है कनेक्टिविटी रिफर्मिंग, यानी कि जब आपका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने लगे तो खुद से कहें कि काम जो है वो आपकी पूरे दिन का सिर्फ एक हिस्सा है, आपकी पूरी पहचान या पूरी लाइफ नहीं है। काम से आपकी पहचान को थोड़ा सा अलग करने से हमारा जो दबाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो तुरंत कम हो जाता है। यानी कि हम खुद को ये यकीन दिलाएं कि हमारा जो काम है वो हमारी लाइफ का छोटा सा हिस्सा है, न कि पूरी लाइफ है कि हम हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहें। दूसरा तरीका होता है कि जैसे क्या होता है ना कि हमारा स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी तभी होता है जब हम उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। तो जब भी आपके काम का स्ट्रेस आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो तो आपको खुद को ये देखना है कि अब बस इतना कहना है, आंखें बंद करनी है और खुद से कहना है कि मुझे अभी इस बारे में नहीं सोचना, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। और फिर बाद में आप जब भी सोचना चाहें तब आप उस बारे में, क्योंकि जब हम ये कह देते हैं ना कि मुझे अभी नहीं सोचना है मुझे बाद में सोचना है, तो वो चीज़ सडन हमारे दिमाग से हट जाती है जिससे कि हमारा स्ट्रेस जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये सुनने में थोड़ा सा लग सकता है लेकिन आपको आपकी चिंता करने का भी एक समय होना चाहिए कि हम इसी टाइम सोचेंगे, 10 मिनट सोचेंगे या 5 मिनट सोचेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे। क्योंकि जो लोग एक सेट पैटर्न रखते हैं ना कि मुझे बस इतनी देर सोचना है इस बारे में, उनका माइंड ज़्यादा रिलैक्स होता है। हर वक्त अगर हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा माइंड जो होता है वो उन चीज़ों को ज़्यादा लेने लगता है। जैसे अगर हर वक्त आप चिंता करेंगे ना तो आपका माइंड उसी कंडीशन में रहेगा, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम ये सोचें कि अगर हमें चिंता भी करनी है तो कितनी देर करनी है, इससे माइंड में एक सेट पैटर्न आता है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर कि रोज़ अपनी डायरी लिखने की आदत ज़रूर होनी चाहिए। डायरी लिखने की आदत बहुत ज़रूरी होती है और इस्पेशली वो सारी चीज़ें जो आपको ज़्यादा स्ट्रेस पहुंचाती हैं, वो सारी बातें जो आप किसी से नहीं कह सकते, या आपका वो काम, मान लीजिए कोई काम है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत परेशान करती है, आपके काम से जुड़ी हुई है या किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई है, आप उसे लिख सकते हैं। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि राइटिंग इज़ वेरी गुड, क्योंकि जिन बातों को हम लिख देते हैं ना उन्हें हमारा दिमाग एक तरीके से सेफ मान लेता है और फिर बार बार बार बार वो थॉट्स हमें परेशान नहीं करते। इसलिए डेली डायरी लिखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी हो जाती है वो निकले और हमारा माइंड रिलैक्स हो। दूसरी चीज़ आती है कि हमेशा अपने आप को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि हमें टाइम चाहिए होता है। टाइम चाहने का मतलब होता है कि मी टाइम, हम हमेशा क्यों कहते हैं कि मी टाइम लेना चाहिए। मी टाइम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इससे हमें सोचने का और चीज़ों को बेहतर समझने का मौका मिलता है। जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बैठ के सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ खुद से बातें करते हैं, तो आपको चीज़ें और साफ समझ में आती हैं कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। खुद को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने वर्क स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अपने काम को और बेहतरी से पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है खुद को एनालाइज करना, खुद से सवाल पूछना कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, मैं वो काम क्यों नहीं कर पा रहा। अगर आप खुद से पूछेंगे तो आपको बेहतर जवाब भी मिलेंगे और इससे आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा, धीरे धीरे इससे हमारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है क्योंकि चीज़ें हमारे सामने साफ होती हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम कब आती है, मेंटली ज़्यादातर प्रॉब्लम तभी आती है जब आप खुद से बात नहीं करते। इसे टॉक थेरेपी कहते हैं। टॉक थेरेपी बहुत अच्छी होती है। अगर आप खुद से बातें करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपके हाथों में होने लगेंगी, ऑन योर हैंड्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हम चीज़ों को हैंडल करने लगेंगे, हमें तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और धीरे धीरे ये वर्क सिंड्रोम भी नहीं होगा। आप बिना चिंता, बिना चिड़चिड़ेपन, बिना किसी चीज़ के अपने काम को कर पाएंगे और उन चीज़ों को भी सॉल्व कर पाएंगे जिनकी वजह से आपको चिंता रहती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम खुद से बात करें, यानी कि टॉक थेरेपी करें, डायरी लिखें
अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है या आप नहीं अपने स्ट्रेस को हील कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मी टाइम निकालिए। मिरर थेरेपी बहुत अच्छी होती है। मिरर थेरेपी का मतलब होता है शीशे के सामने खड़े होना और खुद से ही बात करना। अगर हम मिरर थेरेपी करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि धीरे धीरे मिरर थेरेपी जब हम खुद से बातें करते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है और हमारा जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ होने लगता है। इसलिए आप मिरर थेरेपी को भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके जैसे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड हैं, उनमें उनसे आप बातें शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इनसे अपनी बात शेयर करनी चाहिए, तो आप बिना डरे अपनी बात शेयर करें, इससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है। तो ये थे कुछ तरीके वर्क प्लेस सिंड्रोम से हील करने के लिए, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। आइए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो है वो हमारा वेट कर रहा है, इसे सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और बस यूं गए यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञानस्ली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अनुष्का। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: शहर की धड़कन, और गोंडा शहर की धड़कन का दिल धड़काने के लिए फिर एक बार वापस आ गए हैं हम, लेकर के आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो, जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो अभी तक हमने बात की वर्क स्ट्रेस को लेकर के, तो आइए अब बात कर लेते हैं कि भाई वर्क का स्ट्रेस तो तभी होगा ना जब आपके पास वर्क होगा, यानी कि जॉब्स। जॉब जो होती है वो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं होती है सभी के लिए, और सभी चाहते हैं कि वो काम करें। तो अब बारी आती है बताने की कुछ ऐसी जॉब वैकेंसीज जो हमारे गोंडा शहर में मौजूद हैं, जिनका कि हमारे जो भी यूथ्स हैं वो पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले जिस जॉब की मैं बात करने वाली हूँ वो है अटल आवासीय विद्यालय मनकापुर गोंडा में शिक्षा भर्ती। शिक्षा भर्ती यानी कि गेस्ट फैकल्टी, जिसमें कि TGT और PGT के लिए ज़रूरत है टीचर्स की। मैं बता दूं कि इसमें जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो है 11 सितंबर 2026, और इसे सीधे आपके जो मैट्रिक है और इंटरव्यू, यानी कि इसमें सीधे आपका इंटरव्यू होगा और आपकी जो मैट्रिक यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखे जाएंगे। और हाँ, लिखित इसमें कोई भी पेपर नहीं होता, यानी कि रिटन कोई भी पेपर नहीं होने वाला है। सीधे आपसे मतलब सीधे आपके रिकॉर्ड्स, आपकी मेरिट, आपके मार्कशीट्स देखे जाएंगे, और फिर इंटरव्यू के थ्रू आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ की अब आते हैं कि कहाँ जाना है और कैसे हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि गोंडा NIC पोर्टल पे जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म को, ऑनलाइन जो फॉर्म है उसे डाउनलोड करना होगा। उसे भर के सभी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपको स्पीड पोस्ट करना है, और फिर उस पर पूरा नोटिफिकेशन और PDF सब आपको रहेगा, आपको उसे जमा कर देना है। और अब बात आते हैं, बताते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो 10th, 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने BEd किया हुआ है तो BEd की डिग्री लगेगी, और साथ ही साथ में उसके भी सर्टिफिकेट्स लगेंगे। आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और हाँ, यदि आपने पहले कहीं भी पढ़ाया हो, जैसे इंटर्नशिप की हो या कुछ आपने पहले जो भी पढ़ाया हुआ है वो उसका आप ज़रूर लेके जाएं अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपने पहले कहीं किया हुआ तो वो एक्सपीरियंस जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपको लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप लेकर के जा सकते हैं। मैं फिर एक बार बता दूं कि आपको कहाँ पे जाकर ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करना है। गोंडा NIC पोर्टल पे जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा जो हमारे पास है वो ये है, उत्तर प्रदेश सरकार की रोजगार संगम पोर्टल का से गोंडा में विभिन्न सरकारी विभागों में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे कि विकास भवन, बेसिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर, ब्लॉक मशीन मैनेजर और ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिनके लिए आए दिन कहीं ना कहीं वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो इस वक्त जिसके लिए वैकेंसी है यूपी सेवायोजन पोर्टल से, वो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और ब्लॉक मशीन मैनेजर के लिए। जो कि मैं बता दूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और ब्लॉक मशीन मैनेजर के लिए कोई भी रिटन पेपर नहीं होता है। आप पोर्टल पे जाएं, अप्लाई करें और सीधे जो रोज़गार मेला होता है उसमें आपका इंटरव्यू होता है।

ना बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी पढ़ाई की है यानी कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कंप्यूटर डिप्लोमा, ट्रिपल सी या ओ लेवल, मैं बता दूं कि अभी मैंने आपको जो पोस्ट बताई उसके लिए आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना यानी कि ट्रिपल सी या ओ लेवल में से कोई एक क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है और उसका सर्टिफिकेट भी ले जाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है कि आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये ज़रूर लेके जाइएगा और साथ ही साथ रोज़गार ऑफिस से आपको जो कॉल लेटर मिलेगा वो ले जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं थर्ड, हमारी जो जॉब वैकेंसी है वो है सीएमओ कार्यालय गोंडा से, यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय गोंडा स्वास्थ्य विभाग भर्ती, यानी कि MBBS मेडिकल ऑफिसर या फिर आयुष चिकित्सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हर दिन ऐसे कई सारे पदों के लिए वैकेंसीज होती हैं जो कि MBBS मेडिकल ऑफिसर। मैं बता दूं कि ये एक निरंतर चलने वाली है यानी कि वॉक इन इंटरव्यू है जो जून 27 तक रहता है। इसमें आपको सीधे वॉक इन इंटरव्यू होता है जिसमें कि तय तारीखों में आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपको इंटरव्यू के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO कार्यालय गोंडा के सभागार में जाना होता है और वहीं आपका इंटरव्यू होता है। इसके लिए MBBS या संबंधित आयुष चिकित्सा डिग्री जो भी आपके पास है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ में आपने इंटर, BA या जो भी किया है सभी वर्ष की मार्कशीट ज़रूरी होती है। और हाँ, आपकी इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए। इसके लिए आपको पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अगर आपकी इंटर्नशिप कम्प्लीट है तो उसका भी सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है आधार कार्ड, पैन या लेटेस्ट कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास है। और हाँ, आपका ये सारी चीज़ें ले जाना ज़रूरी है। और दूसरा आपका जो ले जाना ज़रूरी होता है वो होता है अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कि हमें कितना एक्सपीरियंस है। तो ये थी चीज़ें कि आपको कहाँ जाना है इन जॉब्स के लिए, गोंडा में ही कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, किस में इंटरव्यू है, किस में वॉक इन इंटरव्यू है, हमने आपको सब बताया। तो ये वैकेंसीज हैं गोंडा की और इसका फ़ायदा जो उठा सकते हैं हमारे गोंडा के यूथ्स उठा सकते हैं, जिनमें भी जिनको भी लगता है कि उनके अंदर इन जॉब्स को लेकर के क्वालिफिकेशन है, वो जाएं अप्लाई करें और ट्राई करें। क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जब भी आप कोशिश करते हैं ना तो वो एक चीज़ होती है, वो एक पड़ाव होता है जिस पर हम कोशिश करते हैं तो हमें जीत मिले या ना मिले। जैसे कहते हैं ना कि हर बार कोशिश की जाती है पर कई बार होता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, लेकिन उससे आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है। इसलिए जाएं अपना इंटरव्यू दें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं भी होता है इन केस तो उससे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर मिलती है। तो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद पसंदीदा प्यारा वाला शो ज्ञान असली लाइव। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला शो ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो वापस आ गई हूं और वापस आई हूं एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी के साथ, क्योंकि आपको पता है कि आज है मंडे टाइम और मंडे हमारा होता है स्टोरी टाइम। तो आज स्टोरी जो है वो हर दिन हम किसी एक नए ऐसे की लेकर के आते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी जो हम सभी को मोटिवेट करे। तो आज हमारे पास स्टोरी है रितेश अग्रवाल की। रितेश अग्रवाल की कहानी उस हर युवा के लिए मिसाल है जो अपने जो बड़े सपने देखता है। ओडिशा के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखने वाले रितेश ने कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद 19 साल की उम्र में, सिर्फ 19 साल की उम्र में ओवाईओ रोम्स की शुरुआत की थी। शुरुआती दिनों में फंड की कमी और होटलों की अपनी टेक्निक के लिए राजी करने जैसी भारी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी कड़ी मेहनत और समझदारी के दम पर उन्होंने एक साधारण से आइडिया को अरबों डॉलर के ग्लोबल बिजनेस एम्पायर में बदल दिया। उनकी यही सफलता साबित करती है कि अगर आपके पास एक बड़ा विजन और उस पर टिके रहने का जज्बा हो तो आपकी उम्र या बैकग्राउंड आपकी कभी भी कामयाबी के आड़े नहीं आ सकता। बिल्कुल रितेश की ये स्टोरी हम सभी के लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है लिसनर्स, और स्पेशली उन यूथ्स के लिए जो सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा करना है लेकिन उन्हें लगता है कि अरे शुरुआत तो हम छोटी कर रहे हैं। तो शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है और ज़ीरो से ही 100 पे पहुंचा जा सकता है। 100 से सीधा आप ज़ीरो पे नहीं पहुंच सकते, हम ज़ीरो पे रहेंगे फिर ही 100 पे पहुंच पाएंगे। जैसा कि रितेश की स्टोरी बताती है कि वो उन्होंने कहां से शुरुआत की और किस तरीके से, आप देखिए कि सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने शुरुआत की लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना एक बड़ा बिजनेस ग्लोबल एम्पायर कहीं ना कहीं खड़ा कर लिया। तो यही एक बात होती है कि हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए और मंजिल तो आपको मिलनी ही है, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे कदम तो हमें उठाने पड़ेंगे। कई बार होता है कि हम छोटे छोटे कदम भी नहीं उठाते, हमें लगता है बस जल्दी से हम कोई भी काम शुरू करें और जल्दी जल्दी हमें सक्सेस मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। आपको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। तो ये थी आज की स्टोरी और आई होप कि आप सभी को पसंद आई हो और आज का शो भी पसंद आया होगा। सो लिसनर्स, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और मौसम बहुत ही प्यारा है सो इसे इंजॉय करते रहिए। और अभी आपसे बाय नहीं कहूँगी क्योंकि अभी मुझे आपसे मिलना है आपके अपने प्यारे वाले शो यानी कि सुन सहेली में। तो तब तक के लिए इजाजत मांगती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
3: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। जी हाँ, दरअसल 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती है और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। और इन सभी मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेहतिया भैया।
5: नमस्कार श्रोताओं, धन्यवाद आरजे अदनान। जैसे किसी बगीचा में सही समय पर यानी पानी और खाद न मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह न मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे किशोरावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं?
5: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाती है। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा, अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं है।
4: भैया, जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
5: देखो भाई, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की को और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझें कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझकर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है। ये समझना ही असली समझदारी है।
4: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्माए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
5: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेना चाहिए।
4: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन इसका बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
5: बिल्कुल आरजे अदनान, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई हो तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे? इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
4: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो क्या ये खतरनाक हो सकता है?
5: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का भी खतरा हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक सिमट जाती है।
4: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छिपे गर्भपात करा लेती है, ये कितना खतरनाक है भैया?
5: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती है तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
4: ठीक कहा भैया। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा आखिर क्यों बढ़ रहा है?
5: किशोरा अवस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वो बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती है, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वो कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
4: भैया, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें की, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कतें आखिर इतने क्यों बढ़ रही है?
5: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है, रो नहीं सकता या तू लड़की है, समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकते। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता है, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहे, ऐसी बात मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं है, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो या घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
4: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो अपने फैसले समझदारी से ले सके?
5: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेनी चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
4: बिल्कुल भैया, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या गर्भ से बचने के उपाय यानी कि गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
5: बिल्कुल दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
4: लेकिन भैया, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया गया, बताया गया, तो कहीं वो गलत रास्ते पे ना चल पड़े।
5: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनना है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वो कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
4: सेहतिया भैया, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई पहल हुई है?
5: बिल्कुल भैया, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKS के, इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
4: आखिर इस योजना में सुविधा क्या क्या मिलती है? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं?
5: RKS के बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला, किशोर या अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहाँ किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अन्नपूर्ण कार्यक्रम, इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी न हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना, इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बात कर सकें।
4: अच्छा भैया, ऐसा क्या है?
5: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKS के से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है। जानकारी देती है कि सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझक के सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना है, इसमें सरकार सैनिटरी पैड खरीदने के लिए पैसा देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थीं जिससे इन्फेक्शन हो जाता था, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKS के सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं है, बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर, सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सभी की मदद बिना भेदभाव के करें।
4: भैया, अगर आरकेएस के जैसे प्रोग्राम हर गांव हर स्कूल तक पहुंचा दिए जाएं तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त ही नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भी भर जाएंगे, क्या कहते हैं?
5: देखिए भैया, ARSH इसका मतलब है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना है, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
4: ये तो बहुत बढ़िया है भैया।
5: हाँ, अब सरता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थीं, शर्मा जाती थीं। फिर एक दिन गांव में आरकेएस के योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन एनम दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
4: बिल्कुल भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो और खास तौर पर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान होता है।
5: सरता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आते रहते। फिर वह आंगनबाड़ी केंद्र गई तो वहाँ मौजूद एनम रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
4: मतलब ये योजनाएं सच में जमीन पर असर कर रही हैं।
5: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी। 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनबाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने माता पिता को समझाया, 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग भी देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और गांव और आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
4: वाह भैया, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने हौसले खुद लेने लगते हैं।
5: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते हैं और न ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वो बीच का सफर तय कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना जरूरी है।
4: बिल्कुल सही कहा भैया। दोस्तों, ये ठान लो कि हम अपने किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब सही जानकारी होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभकारी के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी शपथ।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
6: प्राथमिकता देंगे,
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे
6: और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का
6: साफ सफाई और स्वच्छता का
1: पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
6: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
1: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
6: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई, वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: सत्यकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
7: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
6: हाँ जी, और आ गए हैं आपके अपने पसंदीदा शो जिसका नाम है
5: सुन सहेली।
6: और सुन सहेली में हम लेकर के आते हैं बहुत सारी चीजों को, यानी कि स्पेशली विमेंस। पहले क्या होता था ना कि बुक्स होती थी मनोरमा, गृह लक्ष्मी और पता नहीं कौन कौन सी बहुत सारी ऐसी बुक, लैक्मे, कुछ ऐसी ऐसी बुक्स आती थी। जब हम लोग कहीं जाते थे ना ट्रेन से, तो वो जो स्टॉल्स होते थे बाहर, बुक्स स्टॉल्स होते थे, वहाँ पर बुक्स मिलती थी, शायद अभी भी मिलती हैं। तो बड़े शौक से मैं लेती थी मनोरमा, गृह लक्ष्मी, लैक्मे और रुपायन, तो खैर अभी भी आती है, और सहेली, ऐसे ऐसी वाली बुक्स बहुत सारी मिलती हैं। तो अब तो खैर मैंने कभी मैंने नहीं देखा है कि वहाँ पर स्टेशन पर जो बुक स्टॉल होते हैं वहाँ बुक मिलती है। तो सेम बताने का रीज़न ये था कि हमारा शो भी कुछ ग्रह लक्ष्मी, मनोरमा और कुछ न कुछ जो सहेली नाम का होता है, जो बुक्स होती है, वैसे ही होता है, क्योंकि एक बुक में सब कुछ आपको मिल जाता है। और हमारे शो में भी विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम रहता है और उसमें भी आपको सब कुछ मिल जाता है।
7: बिल्कुल, और सब कुछ लेकर के आती हैं आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका। और आज का दिन तो वही बहुत खास है, और खास होने की दो वजह है।
6: क्या?
7: पहली वजह ये है कि आज बारिश हो रही थी, मौसम
6: बारिश हो रही थी और इतनी ज्यादा हो रही थी कि जब मैं घर से निकली हूँ सुबह कॉलेज के लिए, तो मैं रास्ते में ही थी, मंदिर के पास ही पहुंची थी, और मैं पूरा भीग गई थी, मतलब पूरे बाल, पूरे कपड़े, सब मतलब पूरा भीग गए थे। और जैसे जैसे यहाँ पर पहुंचे तो इतनी धुआंधार बारिश हो रही थी कि जैसे लग रहा था कि क्या ही बता दे। और अभी देखो इतनी अच्छी धूप निकल आई फिर।
7: जी मैम, सो वो यही है लिसनर्स कि कहीं ना कहीं मौसम बहुत अच्छा है, और एक रीजन और है, आज कोई बहुत अच्छा भी लग रहा है।
6: अच्छा,
7: स्पेशली ग्रीन कलर,
6: मतलब आज ही
7: नहीं, आज नहीं रोज, बट किसी किसी दिन होता है ना,
6: किसी किसी दिन ज्यादा
7: वाला, तो वही आज ग्रीन कलर एंड व्हाइट आई थिंक कॉम्बिनेशन है, तो काफी अच्छा लग रहा है और चेहरा खिला खिला लग रहा है।
6: थैंक यू।
7: खिलने का राज भी हो सकता है कुछ।
6: हाँ, वो अभी ऑफ कैमरा जो होता है, ऑफ माइक जो होता है, वो मैं बताऊंगी आपको। चलिए तो आइए इस प्यारे से दोपहर को, इस प्यारे से मौसम को विश कर देते हैं एक साथ की फ्रेम में हम दोनों लोग।
7: शुभ दोपहरिया, शुभ दोपहरिया लिसनर्स। और मौसम है जबरदस्त, हमारा मूड भी है मस्त, क्योंकि आज दिन है मस्त मस्त मस्त।
6: साथ ही साथ आज है मंडे, यानी हमारा लजीज मंडे। और मंडे के दिन तो भाई खाने पीने की चीजें होती हैं, बातें होती हैं, और खासम खास ये स्पेशल दिन होता है हमारी अंशिका का, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ इसी बहाने कुछ न कुछ मुंह में वो वास चला जाएगा हमारी पोयम
7: महसूस
6: से।
7: कर सकते
6: महसूस से इनके मुंह में वास चला जाता है। जब मैं पोयम पढ़ती हूँ ना, तो उसमें जो खाने पीने की चीजें आती हैं, तो वो उससे पूरा अपना वास ले लेती है।
7: हाँ ना, फीलिंग
6: ठीक है। हो गया,
7: हो गया।
6: अब मैं पोयम पढ़ू?
7: जी मैम
6: जी, स्टार्ट करते हैं
7: जी।
6: बोलो ना।
7: तो आइए, तो कुछ आज बरसात के ऊपर दे देते हैं, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही थी। कागज की कश्ती पानी में खिलखिलाती है, कागज की कश्ती पानी में खिलखिलाती है, ये दिल खिल जाता है तुम्हारी यादों से। जब बारिश होती है तो याद उनकी आती है, जब बारिश होती है तो याद उनकी आती है, मन यही कहता है काश वो भी होते साथ। तो चलिए इसी बात के साथ करते हैं प्यारी सी पोएम की शुरुआत आपकी अपनी आरजे समता के साथ।
6: जी हाँ, तो पोयम तो बहुत ही अच्छी थी, और बारिश को लेकर के पोयम थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि सुंदर पोयम होएगी होएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं
7: जी।
6: सुबह की चाय और गरम समोसे, सुबह की चाय और गरम समोसे, लाते हैं चेहरे पर मुस्कान भरोसे, लाते हैं चेहरे पर मुस्कान भरोसे। चटनी तीखी और जलेबी का, चटनी तीखी और जलेबी की मिठास बना देती है हर एक सुबह को खास। दाल चावल को वो सदा, क्या हो रहा है यार मुँह में,
7: दोपहर और वो भी दाल चावल
6: का वो सादा सा यार, माँ के हाथों का जिसमें छुपा है प्यार। घी की खुशबू और गर्मा गर्म रोटी मिटा देती है चिंताएं बड़ी या छोटी। बिरयानी की महक और मसालों का दम, बिरयानी की महक और मसालों का दम, देखकर ही दिल के सारे भूल जाएं गम। गोलगप्पे का पानी जब जीभ पर घुल जाए, तीखे और खट्टे का स्वाद रूह को छू जाए। रसमलाई, हलवा और रबड़ी की बहार, मीठे के बिना तो अधूरा है ये त्योहार। जायका जिंदगी का खाने से ही तो है, जायका जिंदगी का खाने से ही तो है, हर निवाले में छुपा खुशियों का जहां है।
7: वाह, बहुत ही प्यारी थी पोयम, और उससे मतलब पोयम तो बहुत प्यारी थी, और मैम ने बहुत प्यारी प्यारी तरीके से उसको पढ़ा भी, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स थे, मतलब समोसे, दाल चावल, फिर उसके बाद बिरयानी भी आ गई, फिर रबड़ी भी आ गई, ओ माय गॉड। मतलब अगर सोचिए, ऐसा इमेजिन करिए लिसनर्स, कि आप भी अपने ऑफिस में बैठे हों और दोपहर का टाइम हो, और भले ही आपको भूख ना लगी हो, लेकिन फिर भी अगर हम सुनते हैं तो मन में यही होता है कि काश घर जाकर ऐसे गर्मा गर्म बिल्कुल थाली में, कहते हैं ना, लगा हुआ सजा हुआ अगर खाना मिल जाए,
6: खास करके दाल चावल,
7: और हमसे कोई सिर्फ इतना कहे कि आओ हाथ मुंह धो करके आ जाइए और बिल्कुल तैयार है, आइए खाइए, तो कितना मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग होती है।
6: फीलिंग
7: बट होता है ऐसा, रेयर
6: कभी कभी होता है,
7: कभी कभी होता
6: नहीं है,
7: रेयर में होता है, बट होता है, ऐसा नहीं है, मिल जाता है। स्पेशली मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होता है कि जो एक दोपहर के खाने का मजा होता है ना, वो अब संडे को भरपूर,
6: छुट्टी के दिन। हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि उस दिन बहुत मजा आता है कि कम से कम गर्मा गर्म खाना मिल जाता है। हाँ। और ऐसे भी गर्मा गर्म मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क हो ही जाता है ना, कहाँ एक बजे डेढ़ बजे खाना बनना, और उसके बाद भी फिर हम लोग खाते हैं 3:30-4 बजे, तो फिर थोड़ा तो फर्क आता ही है। खैर, इस फर्क को मिटाएंगे और खाने को हम लोग ओवन में गर्म कर लेंगे या फिर गैस पे गरम कर लेंगे, तब खाएंगे। लेकिन अभी आते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
7: तो आज का जो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है लिसनर्स, वो ये है कि हर दिन खास होता है, हर दिन खास होता है, लेकिन हर दिन आपके पास सब कुछ नहीं होता है। इसलिए उस दिन को कभी मत सोचना कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि उसे पाने की कोशिश करना, क्योंकि हर दिन एक नई उम्मीद और कुछ नया करने का एक जज्बा लाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो हम उस दिन को कोसते हैं, आज ये नहीं मिला, आज वो नहीं मिला, वो मिल जाता तो अच्छा था। तो आप कोशिश क्यों नहीं करते? आप हर दिन उस चीज़ को पाने की कोशिश करिए। छोटे छोटे स्टेप्स से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सीधा आप अगर कोशिश करें कि हम 100 पे जाके रुकेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तब तो आप 100 पे जाके रुकेंगे ना। यानी कि 1 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आपको हर दिन अपने हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आपको हर दिन अपने गोल को अचीव करने के लिए लेने बहुत जरूरी है। इसलिए वो बेबी स्टेप्स लें, अपने गोल को अचीव करें और कभी भी ये ना सोचें कि हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कैसे होगा, कैसे चलेगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। बस आपको ये सोचना है कि आपका हर कदम आपको आपके गोल की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो क्या हुआ, स्ट्रगल तो हमें हमेशा लाइफ में करना ही पड़ता है और मज़ा भी उसी में होता है। जैसे कहते हैं ना कि गर्मा गर्म समोसा जब आप रेडीमेड लेकर के आते हो तो उसका वो मज़ा नहीं होता है, क्योंकि क्या है, बना बना मिला और हमने सामने बस उसको खा लिया, वो मज़ा नहीं आया। लेकिन सोचिए कि आपका समोसा खाने का मन हो और आप किचन में गए, आपने बनाया है और फिर खाया है, तो उसका मज़ा होता है, एक अच्छी सी खुशी महसूस होती है कि मम्मी देखो आज हमने मेहनत करके बनाया है, तो एक अच्छा लगता है ना, हैप्पी होता है। वैसे ही हमारे गोल को अचीव करने के लिए जब हम स्ट्रगल करते हैं तब मजा आता है कि मेहनत से जो मिला है वो परफेक्ट मिला।
8: एग्जैक्टली, और मेहनत का फल हमेशा मीठा, खट्टा, तीखा और मसालेदार भी हो सकता है, जैसा कि आज हमारा दिन और सेक्शन भी है। तो देर किस बात की है, आइए सुन लेते हैं इस प्यारे से गीत को और उसके बाद आएंगे आज के खाना खजाने सेक्शन को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहे इस प्यारे से गाने को।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त

0: आज पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
7: आगे आपकी आज समता, यानी मैं हूँ आपकी आज समता
8: और मैं हूँ RJ अंशिका।
7: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की पहली रसोई, यानी कि खाना खजाना में आज के दिन पहली रसोई।
8: पहली रसोई?
7: हाँ, आज पहली रसोई है।
8: सुन के कुछ याद आया?
7: हमें पता था तुम्हें याद आएगा। पहली रसोई, पहली रसोई इनको शादी के बाद वाली याद आ गई कि हाँ शादी है, पहले किचन में जा रहे हैं, पहली रसोई है, गैस के ऊपर फूल बिखरे हैं, टीका लगाया जा रहा है, दोनों हाथों में मेहंदी, तो चूरे, तो पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में आजकल यही घूम रहा है सब। चलो,
8: निशानी होती है, कहते ना जब बड़े होने लगते हैं तो निशानी होती है। इसका मतलब होता है, पता है, अगर जैसे मैं, मगर लड़कों को जैसे ख्याल आता है,
7: बड़ी हो गई हूँ, मतलब
8: अब मुझे ऐसे महसूस
7: हो रहा है ना,
8: मतलब ऐसा एहसास दिलाया जा रहा है। मतलब मम्मी लोग भी कहती है और मेरे सारे रिलेटिव्स की, अब तो बड़ी हो गई है ना,
7: अब तो बड़ी,
8: वो मुझे भी अब
7: बड़ी होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हाँ पहली रसोई, शादी, गहने, ये
8: वो नहीं है, मतलब एक
7: बड़े होने का मतलब होता है समझदारी, घुटनों में थी अब वो दिमाग में
8: पहुंच गई। ऐसे लड़कों में भी कहा जाता है, मतलब ऐसा कहते हैं मैम कि जब लड़के बहुत ज्यादा बात करने लगे, मतलब शादी को लेकर के या चीजों को लेकर के, तो वो ये होता है कि हाँ उनके में भी वो चीजें आ गई कि थोड़ा
7: बड़े हो गए,
8: जिम्मेदार, मतलब एक वो सेंस हो जाता है,
7: जिम्मेदारी उठाने का इनका समय आ गया है।
8: हाँ जी, फिलहाल वो बात नहीं करते, फिलहाल ये बात करते हैं कि आपको डिश बतानी है। तो आज की डिश में जो बताने वाली हूँ वो सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स से आपको बताने वाली
7: हूँ। ओह माय गॉड,
8: सिर्फ ओनली, और कुछ भी नहीं लगने वाला है, सिर्फ 5।
7: अच्छा जी,
8: तो आज 5 चीजों से हम बनाएंगे ये बहुत ही अच्छी सी चीज, जो कि है केक।
7: चीज तो नहीं, वो जो जिसमें स्ट्रॉबेरी होती है, या फिर हम जब चीज किसी में पिज्जा में चीज होती है, म्यूनीज में चीज होती है, वो वाली चीज तो नहीं बताने जा रही है?
8: नहीं मैम, ये अलग वाली चीज है।
7: ओके,
8: और ये चीज ये है कि इस बार आज मैं आपको केक बताऊंगी।
7: ओके,
8: लेकिन वो सिर्फ 5 चीजों से। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो, अगर आप बिस्किट यूज़ करते हैं तो आपको मैरीगोल्ड बिस्किट ले लेना है, वो शुगर फ्री होता है, इसलिए अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है तो कोई चिंता नहीं है।
7: ओके,
8: 5 से 6 पैकेट ले लीजिए, ठीक है,
7: मैरीगोल्ड
8: बिस्किट, 5 वाला आता है छोटा वाला, वही लीजिएगा,
7: ठीक है।
8: और उसके बाद आपको दूध ले लेना है, दूध हमें ले लेना है 1 से 1.5 कप, ठीक है, 1 से 1.5 कप दूध ले लीजिए। या अगर आपने बिस्किट ज्यादा ले रहे हैं तो दूध को आप बढ़ा सकते हैं, 3 कप या 4 कप कर सकते हैं, वो आपके पैकेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉफी ले लेनी है, 1 बड़ा चम्मच आपको कॉफी पाउडर ले लेना है, जो हम डेली में यूज करते हैं, ठीक है। और 1 चम्मच गुनगुने पानी में या दूध में आपको उसे घोल के रख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें लेना है खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जो हम यूज करते हैं, वो आपको ले लेना है 1/2 छोटा चम्मच।
7: ओके,
8: और उसके बाद चीनी ले लेनी है सिर्फ 2 से 3 चम्मच। अगर आपको मीठा पसंद है तो अगर आपको हल्का मीठा पसंद है तो फिर आप चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैरीगोल्ड बिस्किट खुद ब खुद मीठा होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई, आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब केक बनाना कैसे है? तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि जो भी हमारे पास 5 या 6 पैकेट मैरीगोल्ड बिस्किट हैं, सारे हमें पैकेट से निकाल लेने हैं।
7: अच्छा,
8: और उनके टुकड़े करके उन्हें मिक्सी में डाल देना है।
7: अच्छा,
8: और अगर आप चीनी डालना चाहते हैं 2 चम्मच या 1.5 चम्मच जैसे भी, उसी वक्त आपको वो चीनी डाल,
7: यानी कि वो साथ ही साथ में ग्राइंड हो जाए,
8: ग्राइंड हो जाए, उसको डाल करके आपको 3 से 4 बार मिक्सी को चला लेना है और बीच बीच में देखते रहना है। उसका पाउडर पूरा एक फाइन पेस्ट जो मतलब पाउडर है वो बन जाना चाहिए, उसमें कहीं भी छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए,
7: लंप्स नहीं होने चाहिए, फाइन पाउडर बन जाना चाहिए।
8: फाइन पाउडर
7: जी,
8: जब आपका ये फाइन पाउडर बन जाएगा उसके बाद आपको इसे निकाल लेना है एक बड़े से कंटेनर में। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो कॉफी आपने दूध या पानी जिसमें भी घोल के रखी हुई थी वो आपको इसमें डाल देना है।
7: अच्छा, उसी पाउडर में?
8: हाँ, उसी पाउडर में।
7: ओके,
8: और इसे एक ही साइड में आपको फेटना है।
7: हाँ, वो
8: याद रखिएगा,
7: मैं बताऊँ क्यों ऐसा होता है।
8: क्यों मैम?
7: एक साइड में वो जो कहते हैं ना, उसको फेटने के लिए ना उसमें एयर भरती है।
8: हाँ,
7: और जब एयर भरती है तो वो सॉफ्ट होता है।
8: ओके, तो जैसा कि मैम ने अभी आपको बताया कि जब आप इसे एक ही साइड में फेटेंगे तो इसमें एयर भर जाएगी और ये पूरा स्मूथ हो जाएगा।
7: स्मूथ हो जाएगा।
8: जब आप देखें कि वो पूरा स्मूथ हो चुका है तो, लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा न पतला होना चाहिए और न बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, मिड में होना चाहिए। अब ये हो गया, अब आती है बारी कि इसमें हमें बेकिंग सोडा मिलाना है। आधा छोटा चम्मच आपको इसमें बेकिंग सोडा डाल करके इसे एक बार फिर से अच्छे से चला लेना है, मतलब ऊपर नीचे कर लेना है। और उसके बाद इसमें आपको अब डालना है दूध, 1 से 1.5 कप जो भी दूध आपके पास है वो आपको इसमें डाल देना है, लेकिन धीरे धीरे डालिएगा, मतलब जैसे एकदम से मत डालिएगा, धीरे धीरे डालिएगा ताकि जो इसमें जो बाकी चीजें आपने डाली है वो एक्टिव हो जाएंगी जब आप दूध डालेंगे। हल्के हाथों से आपको पूरे बैटर को मिला लेना है, अच्छे से एक साल कर लेना है। अब आपका बैटर पूरा तैयार है,
7: रेडी हो गया।
8: अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद आपको आपको क्या करना है कि अगर आपको ओवन में बनाना है तो आप एक कोई भी एक केक बेक करने के लिए
7: कंटेनर आता है
8: वो ले,
7: केक बेस का।
8: हाँ, उसमें आपको क्या करना है कि नीचे पहले बटर लगाइएगा।
7: ओके,
8: उसके बाद ऊपर से आपके पास मैदा होगा, हल्का सा मैदा उस पे डाल देना है।
7: हाँ,
8: और डाल करके पूरे कंटेनर को अच्छे से हिला लेना है ताकि मैदा जो है वो चारों तरफ उस पे लग जाए,
7: टैप टैप कर लेना है, ताकि वो डब्बा को टैप टैप कर लीजिएगा ताकि वो उसमें अच्छे से वो सेट हो जाए।
8: सेट हो गया। अब आपने जो बैटर बनाया है वो आपको इसमें डाल देना है, जो आपके पास केक बेक करने के लिए कंटेनर है उसमें आपको डाल देना है। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, लेकिन घोल को बनाते वक्त ही डालना है आपको। ठीक है, अभी आपने डाल दिया। अब अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो आपको रख देना है उसे और 320 डिग्री पे आपको इसको बेक कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप कुकर में बना रहे हैं, मान लीजिए हम ओवन में नहीं बना रहे
7: हैं, ओवन नहीं है किसी के पास,
8: हाँ, तो कुकर में क्या करना है कि स्टैंड आता है, जो कभी हम दूध रखते हैं या ऐसा कुछ रखते हैं वो स्टैंड आता है ना स्टील का।
7: हाँ,
8: वो आपको स्टैंड रखना है, लेकिन स्टैंड रखने से पहले नीचे नमक रख
7: दीजिए, नमक रख लीजिएगा।
8: नमक रखने के बाद स्टैंड रख दीजिए, स्टैंड के ऊपर ये पूरा केक वाला कंटेनर रख दीजिए, लेकिन रबर निकाल देना है कुकर का और सीटी निकाल देनी,
7: ये याद रखिएगा,
8: ये याद रखिएगा, ये दोनों चीजें निकाल देनी है उसकी। अब आपको कुकर को बंद कर देना है और घड़ी देख करके 35 मिनट के लिए इसको बेक करना है। जैसे ही 35 मिनट हो जाए आप कुकर को खोले और उसमें टूथपिक को डाल के देखे, अगर वो पूरा जैसे कि निकल रहा है टूथपिक और उसमें साफ बाहर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका केक तैयार है। लेकिन अगर वो जैसे लग रहा है मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि आपका केक जो है वो थोड़ा सा कच्चा है। और उसको
7: अगर अगर टूथपिक में अगर वो लग के बाहर आ गया, ये तो टेक्निक ऑलमोस्ट सभी लेडीज जानती होंगी।
8: जी मैम, अगर वो लग के आ रहा है तो इसका मतलब आपको थोड़ी देर के लिए उसे और बेक करना है।
7: हाँ,
8: 5 मिनट 10 मिनट आप और बेक कर लीजिए, आपका केक रेडी हो गया। लेकिन अब आती है बारी सर्व करने की। तो अब आपको इस केक को अच्छे से प्लेट में निकाल लेना है और इसे सर्व करने के लिए बताती हूँ कि अब आपको क्या करना है। अब आपको एक डेरी मिल्क चॉकलेट जो छोटी वाली आती है ना, 10 वाली आती है वो लेनी है, और एक छोटी वाली 10 वाली ले लेनी है 5 स्टार।
7: ओके,
8: ये दोनों आपको अपने पास ले लेनी है। और दूध ले लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब आधे कप से भी कम
7: जी,
8: और उसमें इसे अच्छे से मेल्ड कर लीजिएगा।
7: अच्छा, जिसको दोनों चॉकलेट्स,
8: हाँ, दोनों चॉकलेट्स।
7: ओके,
8: अब ये आपका चॉकलेट सिरम बनके तैयार हो गया।
7: हाँ,
8: अभी आपका चॉकलेट सिरम तैयार है। अब आपको क्या करना है कि जब आप केक निकालेंगे तो आपको ऊपर से ये चॉकलेट सिरम हल्का हल्का सा उस पे डाल देना है, और फिर आपको काजू बादाम ले लेने हैं। काजू बादाम से इसे डेकोरेट करना है, ऊपर डाल दीजिए। टूटी फ्रूटी थोड़े ले लीजिए, जो एक ग्रीन वाले और येलो येलो हल्के आते हैं, वो डाल दीजिए। आपका केक पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। लेकिन अभी हमने दोस्त से मिलाप नहीं करवाया।
7: कौन से दोस्त?
8: भाई आज सुन सहेली है।
7: हाँ।
8: जैसे सहेली में दो सहेलियां आती हैं आपके पास।
7: हाँ हाँ।
8: तो वैसे ही हम हमारे केक को अकेले नहीं छोड़ते।
7: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
8: इसको तो भी इसकी सहेली से मिलवा देते।
7: सहेली या सहेला जो भी हो,
8: जो
7: मतलब
8: भी हो,
7: मुझे तो केक कॉफी के साथ बहुत पसंद है।
8: यस मैम। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको मलाई चॉकलेट सैंडविच मिल जाए केक के साथ, तो कैसा रहेगा?
7: बहुत ज्यादा वाला यम्मी। मतलब ना, अभी तो पता है अंशिका, भूख लग गई तुम्हारी ऐसी जो की रेसिपीज को देख करके। लेकिन हम इन दोस्तों को मिलाएंगे, लेकिन उसके लिए लेंगे यहाँ पर ब्रेक।
8: ओके
7: भाई, ब्रेक तो बनता है ना,
8: ब्रेक तो बनता है।
7: क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने किचन में एक चीज बनाई है, तो थोड़ा सा छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे।
8: तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए और यू आए। स्टेडियम

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: दोस्तों आ गई आपकी आज समता, यानी मैं हूँ आपकी आज समता
4: और मैं हूँ RJ अंशिका।
3: तो चलिए भाई दोनों दोस्तों को मिला देते हैं। अभी तक बताया था, अभी एक केक की रेसिपी बताई गई थी जो कि बहुत ही लजीज थी, और अब सैंडविच की बात है। तो अभी ये इस रेसिपी के बाद हम लोग दोनों लोग ये भी डिसाइड करने वाले हैं कि कौन है केक और कौन है
4: सैंडविच। तो पहले चलिए रेसिपी जान लेते हैं और इसको हम बाद में डिसाइड करते हैं।
3: फिर डिसाइड होगा।
4: तो अब बता दें आपको झटपट और आसान तरीके से बन जाने वाली मलाई चॉकलेट सैंडविच। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ब्रेड चाहिए, और ब्रेड के हमें चाहिए कम से कम 10 पीस, ठीक है। ब्रेड के 10 पीस आपको चाहिए स्लाइस वाले, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए फ्रेश मलाई। अगर फ्रेश मलाई आपके घर की है तो फिर बहुत अच्छी बात है। जैसे घर में होता है ना कि हम दूध से जो फ्रेश मलाई निकालते हैं,
3: और अगर घर पे ना मिले तो,
4: अगर घर पे ना मिले तो आप मलाई
3: पड़ोसियों से भी ले सकते हैं। कटोरी की मलाई दे दीजिए, एक कटोरी हम आपको कल लौटा के जाएंगे।
4: हाँ,
3: अगर आपके पड़ोसी इतने अच्छे हैं तो
4: दे सकते हैं,
3: तो वरना ना वो यही कहेंगे कि नहीं मलाई तो हमारे बच्चे खाते हैं और हम लोग थोड़ी थोड़ी बिल्लियों को भी खिलाते हैं, इसी वजह से
4: हमारे पास नहीं है, सॉरी। ऐसा भी मिल सकता है आपको, तो कोई बात नहीं, चिंता नॉट, फिकर नॉट। उसके लिए करना ये है कि बढ़िया मार्केट जाइए और अच्छा सा एक अमूल क्रीम का पैकेट घर ले आइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आते हैं अगेन चॉकलेट पे। क्या अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था ना कि केक के ऊपर डालने के लिए आप चॉकलेट सिरम बनाएंगे, उसे थोड़ा सा ज्यादा बना लीजिए। मतलब एक चॉकलेट की जगह आप दो चॉकलेट को दूध में मेल्ट कर लीजिए, ठीक है, ये आपके काम आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है कि हमें ले लेना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बहुत ज़रूरी है, जो आपको लेना है 2 चम्मच। 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, और आपको बटर ले लेना है 1 छोटा चम्मच। और उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें ये करना है कि आपको क्या करना है कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में जो मलाई है आपके पास उसको ले लीजिए, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालकर इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। अच्छी तरीके से 2-3-4 बार इसको चलाइएगा तो ये पूरा मिलके क्रीमिश क्रीमिश जैसा हो जाएगा। अब आपको ब्रेड की स्लाइस ले लेनी है, ब्रेड की 2 स्लाइस आपको लेनी है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले एक परत आपको जो लगानी है वो आपने जो मलाई बनाई है अभी अभी बैटर, उसको लगाना है, उसके ऊपर चॉकलेट सिरम लगाना है और उसको कवर कर देना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको 5 स्लाइस हमें डबल डबल करके बना लेनी है ब्रेड की सैंडविच के तरीके से। अब ये रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है कि अगर आप इसको आपने जोड़ करके सैंडविच जैसे बना लिया है, उसके बाद आपको तवे पे मक्खन को गर्म करना है और उस मक्खन को लगा करके इन 5ों को आपको सेक लेना है अच्छे से। अब आपने सेक लिया, अब क्या करना है कि ये क्रिस्पी हो गया होगा और बहुत टेस्टी भी हो गया होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी अभी है जो कि है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में अब आपको क्या करना है कि जब ये पूरा मक्खन से आपने बना लिया, उसके बाद आपको इसे पीस पीस तिकोने में कट कर लेना है, जैसे हम वो होता है ना ब्रेड पकौड़ा जिस एंगल में होता है, वैसे ही आपको इसको कट कर लेना है, ट्रायंगल शेप में कट कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है कि थोड़ी सी मलाई आपको बचा के पहले से रखनी है, और जब आपने इसको कट कर लिया उसके बाद आपको इसके ऊपर से थोड़ी सी मलाई डालनी है, मतलब पीसेस सारे आप सजा लीजिएगा थाली में, उसके बाद प्लेट में, उसके बाद में आपको इसके ऊपर जो है मलाई डालनी है चम्मच से धीरे धीरे, और फिर सारे ड्राई फ्रूट डाल के आपको इसको डेकोरेट करना है। आप चाहें तो इसपे केसर के धागे भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी। ये पीसेस में जब आप कट करेंगे तो वो देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। ये आपके चॉकलेट मलाई सैंडविच रेडी हो गए हैं। एक टिप और बता देती हूँ कि अगर आपके पास मिठाई बच जाती है, जैसे हाँ। कई बार होता है कि हमारे घर
3: त्योहारों के बाद हाँ। में बच जाती है, खोए की हो गई या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जैसे मेवे वाली मिठाइयाँ, तो उसको बच्चे भी नहीं खाते हैं आजकल ना, बच्चों को छेना मिठाई ज्यादा पसंद आती है, तो वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन ना और बर्फी जो होती है मतलब प्योर मिल्क वाली
4: जी मैम,
3: वो भी कोई नहीं खाते हैं, और अगर आ गई किसी ने अगर गिफ्ट कर दी तो वो तो फ्रिज में रखी ही रहती है।
4: तो आपको करना ये है कि जब आपने मलाई वाला बैटर रेडी किया ना, उसके टाइम उसी वक्त आपको आपके पास जितनी भी मिठाई हो वो सारी
3: छेने वाली नहीं
4: हाँ। जो बर्फी हो आपके पास प्योर खोए वाली, वो आपको क्रश कर लेनी है अच्छे से और उसे उसी बैटर में मिला देना है, और फिर आप उसको जब डालेंगे तो वो थिक बिल्कुल रबड़ी जैसे हो जाएगा और आपका सैंडविच आपको और भी टेस्टी लगेगा।
3: ये तो बहुत ही अच्छा सा टिप है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो पुरानी चीजें रखी रहती हैं उसका यूज भी हो जाएगा एंड टेस्टी भी लगेंगी, और उसका एक सही से उसको उन मिठाइयों को यूटिलाइज भी हम कर सकते हैं।
4: बिल्कुल, तो ये थी आज की दो दो मीठी मीठी वाली रेसिपीज, क्योंकि मीठा कहते हैं ना, मीठा खिलाओ, मतलब एक लाइन कही जाती है, मीठा खिलाओ और अपनी बात मनवाओ, स्पेशली हस्बैंड से और या फिर आपका कोई समवन स्पेशल हो उससे।
3: तो चलिए हम लोग अपनी बातें मनवा के आते हैं तब तक आपने एक गाना सुनना है, और उसके बाद हमारे स्टूडियो में आ जाएंगी मास्टर शेफ, और हमारी मास्टर शेफ सुनते हैं कि आज हमें वो क्या सुनाने वाली है।
4: तो आइए लिसनर्स चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यू गए और यू आए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवन नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली, और हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और हमारे साथ हैं हमारी मास्टर शेफ यानी कि रंजना मैम। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं सीधे हमारी मास्टर शेफ से कि आज वो हमारे लिए क्या लाई हैं, हमें क्या खिलाने वाली हैं।
5: भाई देखो, बहुत दिनों बाद, पहले तो मेरा नमस्कार आप सब स्वीकार करिए।
4: जी मैम।
5: तो अब
4: वेलकम मैम।
5: अब सावन आ रहा है, बहुत से लोग व्रत रहते हैं, बहुत से लोग सिर्फ मीठा खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मीठा खुरमा बताते हैं।
4: जी।
5: क्योंकि वो रख दो, बच्चों को भी पसंद है और खुद भी कुछ भी खा के पानी पी लो। तो चलिए सामान लिखना शुरू कर।
4: जी मैम।
5: सबसे पहले आप मैदा ले लेंगे 2 कटोरी। अब आपकी इच्छा कटोरी बड़ी हो या छोटी हो, जो भी हो, लेकिन जो कटोरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं पूरी तौल उसी पे रखिएगा, ये नहीं है कटोरियां बदल दे।
4: जी मैम।
5: एक ही कटोरी रखिएगा। तो मैदा आप 2 कटोरी ले लेंगे, देसी घी 3/4, मतलब 3 हिस्सा भरा रहे, 1 हिस्सा खाली रहे, वो ले लेंगे आप। और मीठा सोडा, अगर आप 2 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो 2 चुटकी आप मीठा सोडा ले रहे हैं।
4: जी।
5: अगर आप 1 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो 1 कटोरी आप मीठा सोडा ले रहे हैं, चुटकी, 1/4 चुटकी। और चीनी आप 1 कटोरी ले रहे हैं, तो 2 कटोरी मैदा हो गया, देसी घी 3/4 हो गया, मीठा सोडा 2 चुटकी हो गया, और चीनी 1 कटोरी।
4: जी।
5: और तलने के लिए तेल, अब चाहे आप रिफाइंड लीजिए, सरसों का तेल छोड़ के आप किसी में भी तल सकती हैं।
4: जी मैम।
5: तो चलिए सबसे पहले तैयारी कर ली अब आपने, अब विधि देखिए। पहला नंबर, मैदे को अच्छी तरह से छान ले, ठीक है?
4: जी।
5: और जहाँ तक हो मैदे को आप 2 बार छानिए छन्नी से।
4: जी मैम।
5: उसके बाद उसमें देसी घी मिला दीजिए, बेकिंग पाउडर मिला दीजिए, और अपनी हाथ की उंगलियों से बराबर बराबर चलाते हुए खूब मैदा, घी और बेकिंग पाउडर को आप एक सार कर लीजिए।
4: जी।
5: जब सब मिल जाए तब आप उसमें पानी का छींटा दे दे सानिए, पानी एकदम से मत डालिएगा।
4: जी मैम।
5: थोड़ा सा चम्मच में ले लेके आप डालती रहिए, क्योंकि हमें खूब अच्छा कड़ा कड़ा सा डो बनाना है।
4: जी।
5: मुलायम नहीं बनाना है, जैसे हम लोग मठरी अठरी बनाते हैं वैसा नहीं बनाना, कड़ा बनाना।
4: जी मैम।
5: फिर इसको, जो डो हमने तैयार किया है, इसको 10 मिनट के लिए हम कपड़े से ढककर अलग रख देंगे, ठीक है?
4: जी।
5: उसके बाद अब तैयारी क्या करेंगे कि कढ़ाई में जो है वो डालेंगे तेल, और धीमी आंच में चढ़ा देंगे गरम होने के लिए।
4: जी मैम।
5: क्योंकि अगर जब हमारा आटा तैयार हो जाएगा तो बेलने में हमें समय नहीं लगेगा, तो हम इधर अपनी धीमी आंच पे गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई, और उसके बाद मीडियम आंच कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे कि जो हमने 10 मिनट पहले डो सान के रखा है उसको हाथ से खूब अच्छे से मल लेंगे।
4: जी।
5: और मलने के बाद 2 ही लोई बनेगी 2 कटोरी में, तो हम आधा कर लेंगे और उसको खूब अच्छे से मल करके, और 1 अंगुल बराबर, मतलब मोटा 1 सेंटीमीटर बराबर मोटा बेल लेंगे।
4: जी मैम।
5: और बेलने के बाद चौकोर टुकड़ों में या तिकोनों में, आपकी इच्छा,
4: जैसे आप चाहें,
5: हाँ, उस इसमें काट लेंगे, पर मोटा रहेगा।
4: जी।
5: अब आप क्या करेंगे कि कढ़ाई में आपने तेल डाल रखा है, आप एक एक उठा, मतलब एक घान जो आपने बेला है वो उठा के डाल दीजिए और तुरंत नहीं चलाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जब थोड़े खुरमे जो हैं जब ऊपर आने लगे, जब आप तेल में डालेंगी तो पहले नीचे रहेंगे, जब ये थोड़ा घी अब्सॉर्ब कर लेंगे तो ये ऊपर आने लगेंगे।
4: जी मैम।
5: जब ये ऊपर आने लगे आप तभी इसको चलाएंगी
4: जी।
5: और गुलाबी गुलाबी सेक करके अलग निकाल के पूरे को रख लेंगी।
4: जी मैम।
5: ठीक है, अब आप क्या करेंगी, आपका पूरा खुरमा बन गया, सेक लिया, अलग रख लिया। अब एक और कढ़ाई लेंगे, उसमें हम चीनी डालेंगे, जो हमने जो है चीनी ली है ना एक कटोरी, और उसको छोड़ जो है आधी कटोरी हम पानी डालेंगे।
4: जी।
5: नाप करके ही डालिएगा और तेज आंच रखेंगे। और जब गाढ़ा बुलबुला सा बनने लगेगा, तुमने देखा होगा चीनी जब पकाओ तो बुलबुल मतलब पहले खौलती है फिर बुलबुले छोड़ने लगती है।
4: जी।
5: जब बुलबुले छोड़ने लग जाए, अब आप इसमें हमको चाशनी नहीं देखनी कि एक तार की है कि दो तार की है। जब बुलबुले आ रहे हैं उसी समय हम जो ये खुरमा बनाए हैं ये सब खुरमे उसमें डाल देंगे।
4: जी।
5: भले वो पिघली पिघली रहेगी, उसके बाद आँच हम बंद कर देंगे, थोड़ी देर एक दो मिनट चलाएंगे आँच पे ही, फिर हम आँच बंद कर देंगे और कढ़ाई को उतार लेंगे या उसी पे रखा रहने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हम उसको चलाते रहेंगे। अब आँच तो है नहीं पर वो चाशनी गर्म है, पिघली हुई भी है, तो हम इसको चलाते जाएंगे और एक समय आएगा कि खुरमा जो है वो पूरा का पूरा चाशनी, क्योंकि हमने तार की तो बनाई नहीं है,
4: जी जी,
5: पर वो पूरा खुरमा एब्जॉर्ब कर लेगा चाशनी को।
4: जी मैम।
5: और बस आपका तैयार है और जूसी। जब आप खुद खाएंगे, बच्चों खाएंगे, तब इसके अंदर हल्की हल्की सी चाशनी आपको मिलेगी खाने के लिए। ऊपर से जो है आप बच्चों को दीजिए सर्व करने, गरम गरम खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, शीशी में भर के रख लीजिए, एक महीने तक ये बहुत अच्छा चलेगा।
4: वाह, मतलब इतने अच्छे खुरमे सुन के तो मन यही कर रहा है मैम।
5: हाँ।
4: कि घर जाऊं अभी बनाऊं और बस फटाफट से खा
5: लिया, फटाफट खा लिया जाए, बहुत अच्छा बनता है
4: जी।
5: और जैसे हम लोग चाशनी में बनाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ढाई तार की चाशनी हो जाए या तीन तार की हो गई, तब हम लोग डालते हैं, तेजी में चीनी सूख जाती है ऊपर।
4: हाँ।
5: ऊपर फिर हम लोग निकाल लेते हैं, पर ये उससे थोड़ा भिन्न है
4: जी,
5: थोड़ा क्योंकि जूसी मीठा खुरमा है
4: जी,
5: इसमें हल्का हल्का सा जो हमने चाशनी में उतार के बनाया है वो धीरे धीरे अब्सॉर्ब करा है। एक दो घंटा लगेगा आपको, तो हम चलाते जाएंगे थोड़ी देर बाद, फिर उलट पुलट दिया फूल, तो इससे वो पूरी चाशनी पी लेगा।
4: जी मैम। तो चलिए लिसनर्स चलते हैं और इस मीठे मीठे खुरमे के साथ सुनते हैं एक मीठा मीठा सा सॉन्ग। बस यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: तो बच्चों, आजकल जो है बन बहुत खाते हैं। कभी कहेंगे ना कि हम पाव भाजी खाएंगे
4: जी,
3: कभी कहेंगे कि इसी में मोयनीज लगा दो, हम मोयनीज खाएंगे। तो आज हम आपको बहुत सरल ढंग से बन सिखा रहे हैं।
4: अरे वाह।
3: और इसमें कोई ना ज्यादा सामान लगना है, ना ज्यादा ही मेहनत लगनी है
4: जी मैम।
3: और आपको ये बहुत ताजा बहुत बाजारों में देखते नहीं है, कोई पैर से सान रहा, कोई हाथ से डबल रोटी सान रहा। एक तो आप अपने घर में तैयार करेंगी तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगी। तो चलिए सामान लिखिए। सबसे पहले तो हम ईस्ट पाउडर बाजार में मिलता है, आप उसको मंगा के अपने घर रख लीजिए
4: जी।
3: तो अब विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्याला गुनगुना दूध लेंगे। गुनगुना मतलब ना बहुत तेज गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, उंगली में डालिए। आप डालिए जब दूध में उंगली तो आपका मतलब आराम से महसूस करे कि गुनगुना है
4: जी मैम।
3: अब आप उसमें जो है 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे।
4: पिसी हुई चीनी,
3: हाँ, जो हमारा दूध है उसमें हम 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे
4: जी मैम।
3: उसके बाद हम उसमें 2 चाय का चम्मच ईस्ट पाउडर डाल देंगे
4: जी।
3: और 10 मिनट तक ढक करके इसको अलग करके रख देंगे, ठीक है
4: जी मैम।
3: अब जो है हम मैदा लेंगे 3 कप अलग से, उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, ठीक है
4: जी मैम।
3: और खूब अच्छे से इसको भी हम मिला लेंगे। अब ये जानती हो मैदा छानेंगे ही हम 2 बार, उसमें तब नमक मिलाएंगे। अब ये बार बार बताने वाली बात नहीं है, जब हम लोग कोई चीज यूज करते हैं तो 2 बार छानी लेते हैं, खास तौर पे बरसात के समय
4: जी मैम।
3: और उसमें हम जो है नमक डाल देंगे, फिर हाथों से जो है खूब अच्छे से। अब जो है इसमें हम 3 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर जो बाजार में आता है ना, जिसको हम लोग लेते हैं, तो इसमें हम 3 टेबल स्पून बटर डालेंगे
4: जी मैम।
3: अब उसके बाद इसको भी खूब हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो हमने ईस्ट का घोल तैयार करा है, जो हमने ईस्ट एक्टिवेट किया है, जो दूध में डाला था, उसको हम इसी मैदे में डालेंगे
4: जी।
3: तो आप जब ये ईस्ट एक्टिवेट हुआ, ये आप कैसे जानेंगी, जानेगी जो दूध है आपका वो जैसे फटा फटा ऊपर नहीं जमने लगता है
4: जी मैम,
3: वैसा जम जाएगा। तब आप जानिए कि ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो गया है।
4: ओके मैम।
3: अब आप उसको ले करके और उससे आप मैदे को सान लेंगे,
4: उस ईस्ट से जो हमने पहले ही घोल के रखा हुआ है उसी से मैदा सान,
3: बिल्कुल सान लेंगे
4: जी जी।
3: आप अपने चाहे हाथों से मिलाइए, अगर आपके पास हैंड मिक्सर है ग्राइंडर आप उससे चला लीजिए, तो खूब अच्छे से चलाना है
4: जी मैम।
3: अगर हाथ से है तो आप हाथ से खूब अच्छे से। अब आप इसको भी क्या करेंगी कि 10 मिनट तक ढक करके फिर रख देंगी इस मैदे को जो आपने बहुत अच्छे से मिलाया है
4: जी,
3: जो हमने हैंड ग्राइंडर से मिलाया है सब है, उसको 10-15 मिनट आप ढक देंगी
4: जी।
3: उसके बाद फिर उठाएंगी। अब हाथ में आप हल्का हल्का बटर या घी लगा लेंगी
4: जी मैम,
3: और हाथ से हथेली से आप लोग जैसे भटूरे लंबे लंबे नहीं मिलाते
4: जी,
3: वैसे खूब अच्छे अच्छे करके मिला लेंगे। मिला लेंगे उसके बाद एक लंबी लोई बनाएंगे इसकी, और बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद हम एक ट्रे लेंगे, ट्रे में जो है हम घी लगा लेंगे पहले नीचे, चाहे बटर लगा देंगे। उसके बाद छोटे छोटे गोले, जैसे पाव मिलते हैं ना गोल
4: जी
3: गोल,
4: जी
3: हथेलियों से चला चला करके उसमें आप जब भी यूज करेंगी तो आप जो है बटर लेंगी, ठीक है
4: जी।
3: और फैट वाला लीजिएगा, बिना फैट वाला मत लीजिएगा
4: जी मैम।
3: और वो मक्खन से गोल गोल मिला करके आप ट्रे में रख दीजिएगा। ट्रे में रखने के बाद आप जो है इसको 180 डिग्री ओवन पे डाल देंगे
4: जी,
3: और वो हल्का हल्का। अब जिसके घर ओवन नहीं है, है ना, तो वो क्या करेगा, अब छोटे बर्तन में जैसे आपके पास जो है वो क्या कहते हैं कुकर है या लंबी जो भी है, उसमें आप नीचे बालू डाल दीजिए या उसको गर्म कर लीजिए छोटे जो है डब्बे में, यही घी लगा के ऊपर से ढक दीजिए बिना पानी आने के, बिना स्टीम के। थोड़ी थोड़ी देर में खोल के आप देखिए तो जैसे कुकर धीमे धीमे गर्म होगा, धीमी आंच पर, धीमी आंच पे रखिए तो ये जो बन है वो भी लाल हो जाएगा
4: जी।
3: और बहुत अच्छे जैसे बिस्किट कुकर में तैयार होते हैं, केक होते हैं, वैसे ये भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है बना के देखिए, जब आप इसको निकाल लेंगी, अब आप चाहती हैं कि भरा रहे तो आजकल तो बच्चे भरा बहुत पसंद करते हैं
4: जी।
3: तो जब आपने गोल गोल लोई तोड़ ली, उसके बाद आप इसमें एक एक टुकड़ा चीज का काट काट के धर दीजिए और गोला बना लीजिए, और ऊपर से मक्खन लगा करके आप इसको सेक लीजिए। और अगर आप कुकर में कर रही हैं तो भी ये कर सकती हैं। और अब आप क्या करेंगी, चीनी फिर एक टेबल स्पून आप पीस लीजिए खूब अच्छे से महीन
4: जी मैम।
3: और जब आपके ये बन जो है तैयार हो जाए तब इसको हल्का हल्का चीनी में लपेट दीजिए, ठीक है। तो जब बच्चे खाएंगे तो ऊपर से खूब अच्छी चीनी लगी हुई है और अंदर चीज लगा हुआ है। चीज आपके ऊपर है, अगर आप चाहती हैं डालना तो भर लीजिए, और नहीं चाहती हैं तो सादा ही बन रखिए। और ये डोनट्स देखिएगा इतने अच्छे लगते हैं और इतने हल्के बनते हैं। हमने तो देखा बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको डीप फ्राई भी करते हैं
4: जी मैम।
3: तुम करके देखना, अगर फूट रहा है तो थोड़ा सा मैदा बढ़ा लेना, और नहीं तो ऐसे ही डीप फ्राई तेज आंच में आप कर करके अलग निकाल लेंगे
4: जी।
3: और तब आप इस पे चाहे तो छन्नी से चीनी आप इसको जो पीसी है उसको छिड़क दीजिए। इसको निकाल के थाली में रखा और ऊपर से छन्नी डाल से छान लिया तो सब पे चीनी लग जाएगी और बहुत सुंदर लगते हैं। देखिएगा आज की डिश आपके बच्चों के लायक है और बहुत ही अच्छी है और बहुत सरल है। बस इसमें है, जब आटा आपका सन जाता है 10 मिनट रख देती हैं, उसके बाद हथेलियों से खूब लंबे लंबे जैसे हम भटूरे बनाते हैं हथेलियों से
4: जी।
3: वैसे ही मलिएगा। मलने के बाद आप जैसा हमने बताया है वैसा रखिए, देखिए कितने सुंदर बन डोनट्स तैयार होते हैं। कभी भी आप इससे पाव भाजी बना सकती हैं, ऊपर चीनी मत छिड़किए। कभी भी ब्रेड बटर में दे सकती हैं, कभी को मोयनीज लगा दे सकती हैं, चाहे जैसे भी दीजिए। और देखिए आज की डिश आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी,
4: बहुत पसंद आएगी, और मुझे तो बहुत पसंद आई।
3: सरल भी बहुत है,
4: बहुत सरल है मैम, मतलब इतनी जल्दी आप घर के डोनट्स खा सकते हैं।
3: बिल्कुल,
4: सोचिए वैसे होता है ना कि जब बच्चे कहते हैं मम्मी डोनट्स खाने तो मन में आता है अब बाहर से लेकर,
3: बाहर से ले।
4: लेकिन अब तो ऐसा नहीं करना है। मैम ने जैसे कि अभी बताया घर में तैयार होने वाले हैं ये डोनट्स, तो फटाफट से अपने किचन में जाइए और अपने बच्चों के लिए इसे जरूर बनाइए। थैंक यू सो मच मैम।
3: नमस्कार श्रोताओं,
4: तो चलिए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: आपकी आरजे समता
4: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
3: तो फटाफट हो गया है अब टाइम, क्योंकि आपने खा ली है 4-4 रेसिपीज का धमाकेदार पैकेज। तो अब कुछ सोच रहे हो कि कुछ किचन हैक्स बता देते हैं, जो कि हैं हमारे एडवांस कुकिंग, जिसको कह सकते हैं कि आजकल एडवांस किचन बन रहे हैं तो एडवांस कुकिंग भी होनी चाहिए। क्यों अंशिका?
4: बिल्कुल मैम,
3: तो शुरू करें।
4: यस।
3: तो भाई, मसालों की खुशबू अगर दुगनी करनी है तो कुछ ऐसे घर में मसाले मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि घर बैठे आप उन्हें बनाएं। जैसे कल ही मैंने अंशिका देखा था कि मैगी मसाला की पूरी रेसिपी आई थी एक इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, मतलब ऊपर मैगी मसाला छपा हुआ था, एक पोस्टर था और नीचे मैगी मसाला की पूरी पूरी उसमें रेसिपी थी। नाजिया अंसारी, थैंक यू सो मच। एंड रोशनी जी, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि हमारे जितनी भी महिलाएं लिसनर्स हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं जो हमारी पुरानी लिसनर्स थी, लेकिन हमारी महिलाओं में दोस्त, यानी कि हमारी महिलाओं में लिसनर्स दोस्त, जो आप दोनों काफ़ी टाइम से मैसेज कर रही हैं और सुन रही हैं, जो कि है रोशनी रावत जी एंड नाजिया अंसारी जी,
4: थैंक यू सो मच।
3: तो चलिए, तो मैं बताती हूँ कि आपको कैसे उन मसालों को थोड़ा और अच्छा करना है।
4: जी।
3: तो खड़े मसालों में जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया, उसको तवे पर भूनने के बजाय उन्हें माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लें। इससे उनका ऑयल एक्टिव हो जाता है और खुशबू बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है, ये भी है माइक्रो ओवन, अगर आपके पास नहीं है तो इसका भी उपचार है मेरे पास। बताऊं क्या?
4: बताइए।
3: जैसे आप सब्जी बनाते हो तो आप क्या करते हो कि पहले आप ऑयल डालते हो फिर सारे मसाले डालते हो।
4: हाँ।
3: तो अगर इसको ड्राई रोस्ट करना है तो कुकर लें और कुकर में आपने ये सारे मसालों को डाल करके इसकी जो ऑयल होता है उसको एक्टिव कर लीजिए, ढक्कन ऊपर लगा करके, मतलब ढक्कन को ऊपर से रख देना है, अंदर बंद नहीं करना है कुकर को, और मुश्किल से 2-5 से 8 सेकंड के लिए इसको भून लेना है और फिर उसको किसी प्लेट में निकालें एंड देन उसमें ऑयल डालें या फिर घी डालें, फिर आप पूरे अपने मसालों को डालें तो ये जो इसमें ऑयल निकल के आता है मसालों में वो एक्टिव हो जाएगा और खुशबू इसकी 4 गुना बढ़ जाएगी।
4: वाओ, ये तो
3: अगर आपके पास माइक्रो ओवन नहीं है तो ठीक है। और अगर आपको इडली और सांभर को सॉफ्ट और स्पंजी करना है तो बैटर में साइट्रिक एसिड या नींबू के रस के साथ में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल मिला दें, इससे ढोकला इडली अंदर से बेहद सॉफ्ट और जालीदार बनती है।
4: यानी कि मैं एक
3: ऑयल कोई भी हो,
4: ऑयल कोई भी हो
3: ठीक है। अब चीज ग्रेस्ट और ग्रेट और आसानी से कर सकते हैं। मोजरेला चीज जो होती है वो क्या होता है कि उसको कद्दूकस करने के लिए ग्रेटर पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दे, वो चिपकेगा नहीं और साफ साफ आसानी से वो ग्रेट हो जाएगा।
4: ओके, ये तो भाई बहुत ही अच्छी टिप्स है, मतलब ये वो चीजें हैं जो हमें हमारी किचन में डेली यूज करनी ही पड़ती है। अगर आप सब्जी बनाएंगे तो मसाले आपको यूज करने, अगर हम कुछ टेस्टी सा जैसे पास्ता बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो चीज यूज करना ही पड़ता है हमें।
3: बिल्कुल,
4: ये तो बहुत अच्छी।
3: एक और है कि जो दही हम लोग जमाते हैं घर में तो खट्टी हो जाती है ना।
4: जी मैम।
3: तो अब क्या करना है कि अगर दही को 2-3 दिन तक ताजा रखना है तो उसमें नारियल का छोटा सा टुकड़ा डालकर रख दे, दही कभी भी खट्टी नहीं होगी।
4: ओके, यानी सूखा नारियल,
3: सूखा नहीं है, जो पानी वाला होता है, या फिर सूखा भी छोटा सा टुकड़ा जब आप दही को जमाएं तभी आप डाल दें। और उसको 2 से 3 दिन अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो वो कभी भी खट्टी नहीं होगी। और अरविंद जी, अरविंद फ्रॉम मनकापुर, हमें आपसे केवल एक प्रश्न पूछना है कि आपने बाकी लिसनर्स को ये क्यों बोला था कि आप अभी सो जाएं 3 बजे मिलेंगे, क्यों आपने ऐसा बोला? मुझे उसका प्रश्न, मेरे प्रश्न का आंसर मुझे चाहिए। आपने 11:15 बजे बोला था और फिर आप अभी आ गए हैं, ठीक है? तो आप प्लीज ऐसा ना करें, ताकि हमें मजबूरन में कुछ ऐसे कठोर कदम उठाने पड़े आपके लिए। तो प्लीज ऐसा ना बोला, ना ही आप करें तो ही ठीक है, क्योंकि ये मैसेजेस आपके लिए, अपने लिए होगा, तो सभी को ये मैसेजेस आप ना किया करें। एंड चलिए हम मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए टेक केयर,
4: बाय बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में? क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

नमस्कार आदाब, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। खड़ी में वक्त हो चला है 3:04 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना एफएम रेडियो कैंसल 89.6 एफएम, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। यानी कि अब वक्त हो चला है अब आपके अपने प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा का, आपकी अपनी फरमाइशों वाला कार्यक्रम जिसको लेकर आती हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आर चुनौती जो मौजूद हैं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। अपनी फरमाइशें भेजने के लिए उठाइए अपना फ़ोन, डायल कीजिए 6393316429, आई रिपीट 6393316429 दोनों। और आइए आज मंडे को स्पेशल बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, आपके शुरू की महफिल को सजाते हैं। पहली फरमाइश जो आज हमारे पास आई है वो किसी और की नहीं, हमारे देवी प्रसाद जी की आई है। तो पहली फरमाइश को ट्यून करते हुए हम बढ़ेंगे आपकी फरमाइशों के सिलसिले को शुरू करके आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए, क्योंकि ये है आपका अपना कॉल ऑफ ट्यून गोंडा।

ये थी फरमाइश हमारे देवी प्रसाद जी की, और हमारे सैड सॉन्ग की वजह से हमने थोड़ा सा धीमे क्या बोला हमारे लिसनर्स को होगा कि क्या हुआ रही थी मैम, आप इतना धीमे क्यों बोल रही, थोड़ा जोर से बोलिए। चलिए हम जोर से बोल देते हैं, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में चलते हैं, अगली फरमाइश को ट्यून करेंगे आपके चैट बॉक्स के पैगाम, आपके मैसेजेस को लेने के बाद। तो भैया हमारे साथ जुड़े हैं सुनील मौर्य जी, और आपने लिखा है हाय हाय कैसे हैं आप, जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ देते हैं। ओके भैया, किसने आपका दिल तोड़ दिया? कोई बात नहीं, आपका दिल तोड़ दिया है किसी ने, हाइये हम जोड़ देते हैं, फेविकोल लेकर बैठे हैं मामा ने बगल में, और बचपन से फेविकोल से ही दिल चिपकाते आए हैं लोगों का। तो आइए एंजॉय करते हैं आपके साथ कॉलर ट्यून को, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर। नाजिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रही गुड आफ्टरनून रति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। रिजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश चंद्र सविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और ऑफकोर्स आपका भी स्वागत करते हैं। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल धीरे नहीं बोल रहे, हम फुल ऑन स्पीड वापस आ गए हैं, सो डोंट वरी। एंड आइए चलते हैं ट्यून कर लेते हैं अपनी अगली फरमाइश, जो कि हमारी रिजू की आई है, रिजू जी की फरमाइश फ्रॉम दो नंबरी। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए मिर्जापुर द मूवी से, और हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए आप सुनते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा गोंडा का अपना वाला FM रेडियो 89.6 FM विद योर आरजे उन्नति।

0: के धंधे दो नंबर ही।
1: और भैया पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे रिजो जी ने कोई रोमांटिक गाने की जगह पर ऐसे ताबड़तोड़ गाने की फरमाइश कर दी है जिसमें डिशम डिशम डिशम वाली फीलिंग आ रही है फिलहाल में क्यों। एंड थैंक्स मैम फॉर प्लेइंग माय सॉन्ग, बहुत बहुत वेलकम आपका भी। एंड फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं। इम्तियाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून को ना। मैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत लिसनर सबीहा जी की फरमाइश है और वो सुनना चाह रही है दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। क्या बात है, मतलब हिसाब किताब बराबर तो हो रहा है ना, आप दिल की सुन रही है ना दिल आपकी सुन रहा है और एक्चुअल में दिल हमारी नहीं सुनता है, यही अच्छी बात भी है। ना जाने कब हमारा सैड मोमेंट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है मूड और दिल ने हमारी सुन ली अगर, तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। फिलहाल इंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञान। असली अपनी फरमाइशें भेजने के लिए उठाइए अपना फोन डायल कीजिए 6393316429 बिकॉज ये है आपके अपने फरमाइशों वाला कार्यक्रम।

और लगता है भैया मैटर कुछ हो गया है, बहुत सीरियस वाला, इसीलिए दिल आपकी बात नहीं सुन रहा है सभी जी। लेकिन कोई बात नहीं, दिल आपकी बात नहीं सुन रहा, आप दिल को सुना दीजिए चार बातें, ऐसे कैसे नहीं सुनेगा, सुनना पड़ेगा। एंड इम्तियाज जी आपको कॉल करना पड़ेगा, आपकी कॉल मिस नहीं की जाती है। हाँ, अगर बाय मिस्टेक सिग्नल प्रॉब्लम है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट प्लीज आपको कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज ये कॉलर ट्यून गोंडा है, रूल्स यही कहते हैं कि आपको कॉल तो करना पड़ेगा। एंड अरविंद जी आपका स्वागत कर लेते हैं। चल पिल रहा करे, इतना टेंशन वेंशन ना लिया करे, स्ट्रेस स्ट्रेस को मार दे गोली, क्योंकि ये है कॉलर ट्यून गोंडा और यहाँ पर होती है सिर्फ आरजी उन्नति की बोली। सो व्हाई आर यू फिकरिंग, मतलब क्यों फिक्र कर रहे हैं आप। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे और भी बहुत प्यारे प्यारे से लिसनर, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से लिसनर, आपका स्वागत करते हैं। एंड क्या सुनने में आ रहा है, सुनील जी की वाइफ ने उनका दिल तोड़ दिया है। अरे मोदी भैया, आपकी वाइफ को मना कर आते हैं, एक बढ़िया सा गाना सुनाते हैं उनको भी, लेकिन आपको कॉल करना पड़ेगा और अपनी वाइफ के लिए एक बढ़िया सा गाना डेडिकेट कीजिए, बाकी आपका दिल जोड़ने का काम हम करवाते हैं। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, नाजिया अंसारी जी की फरमाइश को ट्यून कर लेते हैं। रुकी रुकी थी जिंदगी हंस के चलने लगी, अब सोचिए जरा कोई रुका रुका है और अचानक से हंस के चलने लगे तो कैसा फील होगा, जस्ट इमेजिन दिस। और इसके बाद हम मिलेंगे आपकी अगली फरमाइश को लेकर के कॉल ट्यून गुंडा में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

क्या बात है, बहुत ही प्यारी गाने की फरमाइश थी और ये फरमाइश थी हमारी नाजिया अंसारी जी की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश कुमार जी, आपका स्वागत करते हैं। एंड साथ ही जुड़े हैं धर्मेंद्र मोहन जी जो लिख रहे हैं उन्नति जी, गुड आफ्टरनून, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड धर्मेंद्र जी, ये आपका कॉल ट्यून गुना, तो मतलब आपको करना पड़ेगा कॉल। भैया अरविंद जी, इतना काहे रोना धोना मचा रहे, किसने आपका दिल तोड़ा, क्या हो गया है मुझे बताइए, आपकी टेंशन को खत्म कर दे। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए कॉल ट्यून गुंडा, बिकॉज हम चलेंगे अपनी अगली फरमाइश की ओर। और अगली फरमाइश किसी और की नहीं, जूही जी की आई है, मैं अपनी जिंदगी तुझ पर लुटाऊंगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 90s का बहुत ही प्यारा सा नगमा आपके लिए पेश करते हैं। एंड हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, जो कि अलका जी की आवाज में होने वाला है, तो जस्ट ट्यून और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली।

ऑलराइट, और आप एंजॉय कर रहे थे थोड़ा सा रोमांटिक एंड थोड़ा सा सैड कर देने वाला गाना, जूही जी की फरमाइश थी, और हम चलेंगे अगली फरमाइश की ओर। एंड मस्त सॉन्ग लिखा है राजेश जी ने, इसका भैया क्रेडिट जाता है हमारी जूही को। और गुलफशाह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और लिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अलग बात है कि आपको नजर नहीं आ रही है, सिर्फ नजर हमें ही आ रही है। तो आइए ट्यून कर लेते हैं हमारी अगली फरमाइश को। अगली फरमाइश आई है आराध्या जी की, और ऑफकोर्स वो सुनना चाह रही है थम के बरस, जरा थम के बरस। तो आइए बरसाते हैं थोड़ा सा पानी, लेकिन थोड़ा थम के, थोड़ा सा जम के।

हाँ जी, और ये फरमाइश थी हमारी आराध्या जी की, थम के बरस और जरा जम के बरस। और हमारे चैट बॉक्स में बारिश को लेकर बड़ी सारी रिक्वेस्ट आ गई। कोई कह रहा है जरा थम के बरस, कोई कह रहा थोड़ा जम के बरस, कोई कह रहा थोड़ा जोर से बरस। एंड वहीं पर हमारी नाजिया जी कहती हचक के बरस। वाह, मतलब यहाँ तो मुझे ऐसा था मेरे वगैरह अच्छी हो रही होती है। इम्तियाज जी लिख रहे हैं बादल भाई अभी रुक जाओ, अभी ना बरसो क्योंकि कपड़े भीग जाएंगे। वहीं पर हमारी नाजिया जी कह रही है भीग जाने दो कपड़े और अच्छे से बरस जाओ इस बार। मतलब आप चाहती हैं कि हमारे इम्तियाज जी भीग जाएं। धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं तुम दूर हो तो कोई गम नहीं, मुझे भुला दे ऐसे हम नहीं, मुलाकात होती है मुलाकात नहीं होती है तो क्या हुआ, तेरी याद ही मुलाकात से कम नहीं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारा लिखा है। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। जुगल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम एमपीएल, लिखा है सुपर गाना, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ जो कि हमारी निब्बर जी की फरमाइश आ चुकी है। लेकिन उससे पहले निब्बर जी की फरमाइश को ट्यून करने से पहले हम चलेंगे भाई रईस साहब की फरमाइश को ट्यून करने के लिए। नो एंट्री फिल्म से वो सुनना चाहते हैं जस्ट लव मी, तो आइए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। सलूमिया का गाना है तो आप दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि दिल की धड़कने तो बढ़ाने वाला सॉन्ग है ये। स्टे ट्यून्ड।

रई साहब की फरमाइश थी, सोनू निगम साहब की आवाज, अनु मलिक का म्यूजिक और समीर ने लिखे थे इसके बोल। और जस्ट इमेजिन समीर साहब ने बोल लिखते टाइम क्या सोचा होगा, अरे मुझे लग रहा है उनकी मोहतरमा ने भी कई बार कही अरे कहा होगा और इसीलिए वो थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो गए, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ठीक है, फिलहाल आइए बढ़ते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग नंबर जी की है, नींदों की रानी मैं और मैं सपनों का राजा। ओ माई गुडनेस, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। नींद आती है तो सपने आते हैं, सपने आते हैं तो नींद आती है, तो मतलब ये रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता है ना। एंड नाजिया लिख रही होती मैम हमें लगता है इनको हिंदी नहीं आती। अजी बेशक आती है, बहुत अच्छी आती है, बस इसीलिए उन्होंने अरे रा लिखा था। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए क्वालिटी उन गुंडा। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय कर रहे थे निब्बा जी की फरमाइश, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की ओर। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है रीना शर्मा जी की फ्रॉम उत्तराखंड। तेरे ख्यालों में तेरी यादों में डूबा रहता हूँ। तो आइए थोड़ा सा निकालते हैं आपको यादियों से, थोड़ा सा ख्यालों से, थोड़ा सा ख्वाबों से बाहर करते हैं, एंजॉय करते हैं मिल करके कॉलर ट्यून गोंडा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन। बेदोराज उन्नति भूलिएगा नहीं।

और भैया आप बढ़ते हैं, अब अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, अगली फरमाइश को ट्यून कर लेते हैं। अगली फरमाइश आई है, अब बात करेंगे थोड़ा सा कबूतर और कबूतरी की, क्योंकि हमारी रेनू तिवारी जी सुनना चाह रही हैं। बोली कबूतरी कबूतर से, क्या बोल रही है? गुटरगू फिलहाल के लिए सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, क्योंकि इसके अलावा मैंने आज तक कबूतरी को कुछ बोलते ही नहीं देखा। अगर आपको समझ में आई हो उसकी भाषा तो मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, अदरवाइज हम बॉलीवुड अंदाज में बॉलीवुड से ही जान लेते हैं।

और भैया ये थी फरमाइश हमारी रेणु तिवारी जी की। वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए ट्यून कर लेते हैं हमारी अगली फरमाइश, जो कि सुरेंद्र यादव जी की है। लगी आज सावन की फेर वो चढ़ी है, चांदनी फिल्म से आप एंजॉय कर रहे हैं सावन का स्पेशल वाला गीत। और ऑफकोर्स सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। एंड सवाल है कि कांशा मैम कहाँ गई है, तो कांशा मैम अपने बेहतर फ्यूचर के लिए कहीं और गई हुई हैं, और उनके लोग उनके भैया ऑल द बेस्ट विश कीजिए। एंड इसी के साथ एंजॉय करते रहिए कॉल ऑफ यून गोंडा। नाजिया जी ने हमें कबूतर बोल के मुर्गे भेज दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।

सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश आप एंजॉय कर रहे थे, लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दे भैया, आवाज ही सुरेश वाडकर और अनुपमा जी की, और अब चलेंगे अगले गाने को ट्यून करने के लिए। सुरेश जी की फरमाइश आई है हमारे पास, कुमार सानू की आवाज में आप सुनने जा रहे हैं ये वाला गाना। जी हाँ, 90s का बहुत ही प्यारा गाना, और हमारे लिसनर्स उनका 90s के लिए मोहब्बत भैया कभी कम हो ही नहीं सकता, और उनकी मोहब्बत को देख के हमको भी 90 के दशक के गाने को ज्यादा ही पसंद आने लग गए हैं। फिलहाल एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गुंडा, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक की लिस्ट ट्यून्ड।

इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो कि हमारी राजू जी की है। आते जाते हुए मैं सबकी खबर रखता हूँ। क्या बात है भैया, सच में राजू जी सबकी खबर रखते हैं आप, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एंड जुगल जी, आप भेज सकते हैं आप मुझे अपना गाना, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए अगर माफी चाहूंगी अगर मैं आज आपकी गाने को प्ले नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कल प्ले कर दूंगी। बाकी कल आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा, यानी कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में, 3:30 तक आप किसी भी टाइम अपनी फरमाइश तक भेज सकते हैं। तो सुनते रहिए।

0: मेरा क्या। हाँ,
1: ये थी फरमाइश हमारे राजू जी की, और वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं अगली गाने की तरफ। राजेश जी की फरमाइश को ट्यून कर लेते हैं। जी हाँ, एंड आप सुनने जा रहे हैं तुमसे नजरें मिली। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है, मिलते हैं अगले गाने पर, जो कि हमारे अगला सॉन्ग डेडिकेटेड है हमारी समता मैम को अरविंद जी की तरफ से। तो उसको ट्यून करते हैं, लेकिन इस गाने के उस पर, यानी कि अगली फरमाइश पर।

बहुत ही प्यारा नगमा था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश, जो कि हमारी अरविंद जी की है, डेडिकेटेड टू समता मैम। हमसे कहा भूल हुई क्या भैया, आइए एंजॉय करते हैं। एंड ये माफीनामा हम उन तक पहुंचा देते हैं जिन तक आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, जो कि हमारी इम्तियाज जी की है, मिश्रा ऑप्टिकल जी की, राकेश जी की है, एंड साथ ही मुमताज जी की भी है। स्टे ट्यून्ड।

माय गॉड भाई, इस तरह से अगर कोई सॉरी बोले तो कोई क्यों ना मान जाए। हमारी समता मैम भी मान जाती हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा इंतजार कीजिएगा। एंड आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है इम्तियाज जी का, तो आइए इंजॉय करते हैं शाम तबाई। और आप सुन रहे हैं सनी लियोनी वाला गाना। फिलहाल मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारी मिश्रा ऑप्टिकल जी की है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये थी फरमाइश हमारे इम्तियाज जी की। आइए ट्यून करते हैं अगली फरमाइश को। और हमारी नाजिया जी आवाज दे रही है अरविंद जी को ये कहकर कि आ जाओ वरना हमू तो का बहा देवे रो रो कर। ओके, यानी कि रो रो के आए इससे पहले कि वो बहा दें आपको, ले जाएं कहीं अपने आंसुओं की धार में। जरा आकर बता दीजिए आप कहाँ पर हैं। फिलहाल एंजॉय करते रहिए मिश्रा जी की फरमाइश जो की है हमारी हसीनों को आते हैं न जाने क्या क्या बहाने। क्या बात है भैया, हसीनों को बहुत सारे बहाने आते हैं। भैया हसीनों से ही पूछ लेते हैं बॉलीवुड अंदाज में। एंड हम मिलते हैं अगले गाने को लेकर के जो कि हमारे राकेश जी और मुमताज जी का है, दामिनी ओ मेरी दामिनी।

भाई ये गाना और इसमें हमारी करिश्मा कपूर के एक्सप्रेशंस, ओह माय गॉड, टू मच। फिलहाल के लिए ट्यून करते हैं अगली फरमाइश को, जो कि हमारे राकेश जी और मुमताज जी की है, दामिनी और मेरी दामिनी। एंड इसी के बाद हम चलेंगे अपनी आखिरी फरमाइश और आप सभी के लिए डेडिकेटेड गाना, जो कि होने वाला है हमारे धर्मेंद्र जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

एंड इस गाने को यहीं पर रोकने के लिए चाहेंगे आपसे माफी, क्योंकि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। लेकिन उससे पहले जाते जाते ये गाना जो कि हमारे धर्मेंद्र मोहन जी का है, एंजॉय करते हैं एंड साथ ही डेडिकेट करते हैं आप सभी को। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। आप रखिए अपना ख्याल एंड हमारे साथ लगातार बनी हुई थी नाजिया जी, अरविंद जी, जुगल जी, राजेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हमें सुन रहे थे फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 89.6 FM। नाजिया जी लिख रही है उन्नति और मेरी उन्नति मैम, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, और इतनी मोहब्बत बनाए रखिए, एंजॉय करते रहिए, फिर मुलाकात होगी। आज के शो के स्टार्टिंग भी सैड सॉन्ग से हुई थी, खत्म भी सैड सॉन्ग पे ही हो रहा है।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में। स्टे ट्यून्ड। आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गोधुली, शाम 5 बज चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और हम आज एक बार फिर से एक ऐसी खास शख्सियत को लेकर के आए हैं जिनसे हमें बातचीत करनी है, उनके बारे में जानना है, एंड उनकी फील्ड जो है वो काफी ज्यादा काम की है। यानी हम जो बताने वाले आप उनके कार्यक्षेत्र से खुद को रिलेट कर पाएंगे और कहेंगे वाह भाई आज तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। जी हाँ, सो आज हमारे साथ में मौजूद है यंग और डायनेमिक पर्सनालिटी डॉक्टर श्रुति गुप्ता, जो कि एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा में। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं अपने इस शो में जिसका नाम है गोधुली।
2: थैंक यू सो मच
1: टू यू। एंड जैसा कि अभी हमने बताया, गोंडावासी आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर आपके कार्यक्षेत्र के बारे में कि ये जो त्वचा विशेषज्ञ होते हैं इनका काम क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि प्लीज आप बताएं आपकी पैदाइश कहाँ की है, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं, कितने सिबलिंग्स हैं, और आपकी अर्ली एजुकेशन के बारे में।
2: मेरा नाम डॉक्टर श्रुति गुप्ता है, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे अर्ली एजुकेशन 12th तक वहीं पे पढ़ी हूँ। उसके बाद प्रिपेयर करके MBBS में एडमिशन हुआ, वो मेरठ में एडमिशन हुआ। 7 साल मेरठ में ही MBBS की पढ़ाई करी पूरी। फिर आगरा से MD में फाइनली एडमिशन मिला। 3 साल MD करके अब यहाँ गोंडा में प्रैक्टिस कर रही हूँ।
1: ऑलराइट, तो ये तो आपने चूंकि डॉक्टर बनने का सफर दावा बताया, अब चलते हैं आपके एक बार वापस से फैमिली की तरफ, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं।
2: मेरे फादर डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर अजीत गुप्ता, मुरादाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं। मदर होम मेकर हैं, और मेरे भाई हैं सिबलिंग, वो डॉक्टर भी हैं, 1 साल बड़े हैं, और डॉक्टर प्रणव गुप्ता नाम है।
1: अच्छा, तो ये ऐसी कौन सी चक्की का आटा खाया था जी, पूरा की पूरी फैमिली डॉक्टर ही बनी, इसके बारे में बताया।
2: चक्की का तो नहीं था।
1: अच्छा, चक्की का नहीं था, मार्केट का था।
2: मार्केट का आटा था।
1: अच्छा, वैसे ही होता है कि जिस प्रोफेशन में फादर होते हैं, वालिद होते हैं आपके, कहीं ना कहीं उसका असर होता है बच्चों पे। और कहीं ना कहीं आपने बताया कि आपके भाई भी डॉक्टर हैं और आप खुद भी चूंकि डॉक्टर हैं यहाँ गोंडा में। ये तो आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। बच्चे जो होते हैं वो शरारती होते हैं, शैतान होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। आपका बचपना कैसा रहा, मतलब थोड़ा शरारती थी आप या बहुत चुप चुप रहने वाले बच्चों में से थी, क्या थी, कैसी थी आप?
2: बचपन में मैं अपने इस टाइम के एटीट्यूड से बहुत डिफरेंट थी। तब मैं एकदम शांत हुआ करती थी। उस टाइम पे कुछ दोस्तों ने, अब बड़े होते हुए दोस्तों ने ऐसा बना दिया है कि अब बातें कर सकते हैं, पर उस टाइम बहुत शांत स्वभाव के थे।
1: ओके, यानी बड़ी शाय पर्सनालिटी की थी, लेकिन उसके बाद होता ना कि दोस्तों की संगत जो होती है बहुत कुछ सिखा देती है। तो ऐसा बनने के बाद अच्छा लगता है या लगता है कि नहीं गलत किया दोस्तों ने?
2: नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा किया दोस्तों ने, सिखा दिया बातें करनी है। बिल्कुल।
1: ऑलराइट, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये एक अच्छी बात आपकी बात से निकल के आई कि आपके फ्रेंड्स बड़े अच्छे हैं, और मैं तो चाहूंगा कि भाई ऐसे फ्रेंड्स सभी को मिले जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करें। अभी तो बात हो गई ये कि फ्रेंड्स कैसे थे, आप पढ़ने में कैसी थी? आप
2: पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी, कभी मतलब हाँ कम नहीं था, पर बहुत ऐसे नहीं पढ़ना होता था, पेरेंट्स कभी फोर्स नहीं करते थे कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, कम क्यों आ रहे हैं नंबर, हमेशा मस्ती करते हुए ही पढ़ाई करी है।
1: अरे वाह क्या बात है। अच्छा बच्चों को जो है वो कुछ चीजों से डर लगता है, आपको किस चीज से डर लगता था बचपन में?
2: पॉलिटिकल साइंस बहुत टफ लगती थी।
1: अच्छा
2: बस उसी से डर लगता था और कुछ अलग से कुछ नहीं।
1: अच्छा वैसे मैं एक चीज याद दिला दूं कि बच्चों को सुई से बड़ा डर लगता है, इंजेक्शन से, और फादर भी आपके डॉक्टर रहे हैं, तो कभी फादर ने ऐसा डराने के लिए नहीं कहा कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो इंजेक्शन लगा देंगे?
2: कभी नहीं, मेरे पेरेंट्स का एक ही नियम है, कभी डराना नहीं है बच्चों को।
1: ओके वाओ,
2: आज भी वही नियम है, कभी डराना नहीं है कि सुई लगा देंगे या पुलिस आ जाएगी।
1: मतलब कह सकते हैं कि फादर से आपकी जो बॉन्डिंग है वो एक फ्रेंड वाली है, उन्होंने मतलब इस तरह से आप लोग को फ्री कर रखा है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और शायद अपनी लाइफ में जो भी चीजें चल रही उसको भी आप शेयर करते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग है। वेरी
2: नाइस, बहुत अच्छी बॉन्डिंग।
1: मदर से कैसा आपका रिलेशन है आज?
2: मदर तो एकदम फ्रेंड जैसे ही रहती हैं।
1: ओके।
2: उनसे कोई बात नहीं बताई, कोई प्रॉब्लम नहीं बताई तो दिन रात नहीं बताई कोई प्रॉब्लम नहीं बताई तो दिन पूरा नहीं होता है।
1: अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, ये तो बड़ी एक अच्छा एग्जांपल सामने आया आपका कि दिन की जो भी बातें होती है कहीं ना कहीं आप शेयर करते होंगे। एंड जाहिर सी बात है आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं, वहाँ हर तरह से पेशेंट्स आते हैं, कभी दिन बहुत अच्छा भी जाता होगा, कभी बड़ा हैक्टिक जाता होगा, तो कहीं ना कहीं आप शेयरिंग करते होंगे अपने मदर से, अपने फादर से करते होंगे
2: हर इंसिडेंट उनको पता होता है।
1: अच्छा उनको ये भी पता होता है क्या कि सुबह आज नाश्ते में क्या खाया?
2: बिल्कुल।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस।
2: उनसे पूछ के ही मनाना होता है कभी कभी।
1: अच्छा उनसे पूछ के। मुझे अपना वो दिन याद आ गया, वो दिन बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले की है, पहली बार लाइफ में खिचड़ी बनाया था।

0: बड़ी सिस्टर को वीडियो कॉल पे लेकर के बाकायदा कि हम क्वांटिटी दिखा सके कि देखो ये हम इतना डाल रहे हैं। एंड यकीन मानिए कि बड़ी लाजवाब बनी थी। एंड दूसरी बार जब बनाया कि हम लोग शायद जान गए हैं, कॉन्फिडेंट थे, वो खाने लायक नहीं थी। तो ये खैर होता है, ये सब चीजें चलती रहती है, लाइफ का पार्ट है। मैं ये जानना चाहूंगा कि हर किसी का अपना एक एम्बिशन होता है। सो बचपन में एम्बिशन की अगर हम बात करें, आप और अगर हम अपनी बात करें, जो 90s के बच्चे हैं, उनका ज्यादा बहुत ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट या पायलट एक नाम था, तो ये तीन चार चीजों में चूज करते थे। आपका ऐसा तो नहीं कि कोई और सपना था और उसके बाद आज आप कहीं और हैं?
1: नहीं, सपना हमेशा फादर को देखा, क्योंकि पता ही नहीं था कि कुछ और भी कर सकते हैं। मन में सिर्फ यही था कि डॉक्टर बनना है। कभी पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं, जबकि बड़े होके तो बल्कि पेरेंट्स मना करते थे कि कुछ और कर लो।
0: अच्छा,
1: डॉक्टर में बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत साल, बट क्योंकि बनना था, बचपन से सोच रखा था, तो डॉक्टर ही बनना था।
0: तो कह सकते हैं कि पापा की जो प्रोफेशन की छवि थी वो आप पे पड़ चुकी थी, और कहीं ना कहीं आपका कोई डाउट नहीं था, मुझे बनना है तो डॉक्टर ही बनना है।
1: बिल्कुल।
0: सो आप ये त्वचा रोग विशेषज्ञ जो, इसमें कैसे आपका आना हुआ?
1: त्वचा रोग विशेषज्ञ एक्चुअली रैंक इस टाइम पे बहुत अफेक्ट करती है आपकी ब्रांच। जब रैंक आपकी चॉइस की आ जाती है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो पढ़ाई करके रैंक तो आ गई, तो ऑप्शंस खुल गए। मेडिसिन ले सकते थे उस टाइम पे, बट क्योंकि थोड़ा आजकल ऑप्शंस में वो त्वचा रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो बहुत ऊपर होते हैं।
0: अच्छा, ऊपर
1: होते हैं। हाँ, बहुत कम लोगों को मिलते हैं सीट्स, डॉक्टर्स बहुत कम है त्वचा रोग के,
0: लिमिटेड सीट्स
1: हैं, बहुत कम लोग।
0: ओके।
1: और आजकल लोग कॉन्शियस भी हो गए हैं बहुत ज्यादा, समझने लगे हैं इस चीज को कि कुछ दिक्कत है हमें इससे रिलेटेड भी, तो वो डॉक्टर का ओपिनियन सीक भी करते हैं स्किन के लिए। पहले इतना नहीं हुआ करता था, तो अब थोड़ा सा इस तरफ इंक्लिनेशन हो गया।
0: ऑलराइट, तो मतलब आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो एक ब्रांच है इग्नोर होती है। मतलब पहले तो लोग ऐसे चल जाता था कि जैसा भी है अपने आप, आपने होम रेमेडी को इस्तेमाल किया, घर की कोई चीज सही कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं, एक बीमारी है। और देखा गया है कि लोग अपनी त्वचा के प्रति, मतलब खुद के लुक्स के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और सिर्फ महिलाएं नहीं, अभी तक तो समाज में था कि सिर्फ महिलाओं के दो दाने निकल जाते तो परेशान। मैंने अपने कई फ्रेंड्स को देखा है, वो दो दाने निकलते हैं तो सुबह से शाम तक उनको सिर्फ दो दानों की इर्द-गिर्द ही बात करनी होती है। तो इसके लिए आप जैसे लोग होते हैं विशेषज्ञ जो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी चूंकि आपने काम करना स्टार्ट किया है, आपकी पहली पोस्टिंग ये गोंडा में ही हुई या कहीं और हुई थी?
1: नहीं, पहली पोस्टिंग गोंडा में हुई है। एमडी के बाद में हमें 2 साल सरकारी सेवा देने होती है, जो 2 साल बॉन्डेड होते हैं हम। तो उसमें हम लोग को जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं ये सब, वहाँ पे पोस्टिंग दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहली पोस्टिंग मेरी गोंडा में मिली है मुझे।
0: ऑलराइट, तो भाई गोंडा पे भी आएंगे, लेकिन गोंडा से पहले भी एक और सफर जो आपने तय किया है एमबीबीएस का, उस पे आते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब अपने शहर से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ का माहौल बहुत अलग होता है। वो घर वाला कम्फर्ट नहीं मिल पाता है, ना सोना उठना होता है, ना खाने पीने में होता है, ना लोग आपके पास मम्मी और पापा वाले होते हैं कि आपके नखरों को उठा लेंगे, या जैसा आप कहीं बीमार हो गए हैं तो फौरन उस चीज को लेकर के ट्रीटमेंट, तो काफी अलग होता है। एज फीमेल तो थोड़ा सा मुश्किलें भी आती हैं। आपका कितना चैलेंजिंग रहा उस दौरान, जब आप एमबीबीएस में आपने एडमिशन ले लिया और वहां पे आप पढ़ाई कर रही थी, कैसा कुछ रहा?
1: एमबीबीएस मेरे घर के पास था बहुत, एक्चुअली मेरठ मुरादाबाद से बहुत 100 किलोमीटर की रेंज में था।
0: ओके।
1: तो कभी ऐसे घर की कमी महसूस नहीं हुई।
0: ऑलराइट।
1: कभी कुछ दिक्कत हुई तो तुरंत घर चले जाते थे।
0: ओके।
1: और 7 साल बहुत बहुत लंबा टाइम होता है एक्चुअली
0: एमबीबीएस
1: वाला। हाँ, तो प्रिपरेशन एमबीबीएस से पहले भी प्रिपरेशन किया, तब थोड़ा सा प्रिपेयर हो गए कि अब इतने साल बाहर रहना है। फिर एमबीबीएस में तो दोस्त बन जाते हैं जब, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है।
0: ओके, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा कि जब दोस्त बन जाते हैं तो लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। एक और बात, चूंकि आप जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में आप अच्छे होंगे, आपने क्रैक किया, आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिला, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से चेंजेस थे जब आपके एडमिशन के बाद, ड्यूरिंग एमबीबीएस जब आप कर रहे थे, उस दौरान आपके अंदर आए?
1: एमबीबीएस के टाइम एक्चुअली हम लोग 12th तक इतना एक्सपोजर नहीं होता। हमारे को सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, तो उस टाइम तक हम लोग बहुत शांत अपने काम से, मतलब सिर्फ पढ़ाई करनी है, खेलना कूदना है, घूमना है, ठीक है, दोस्तों तक मतलब रहता है। आप किसी स्ट्रेंजर से बात करना नहीं सीख पाते हो। जब आप MBBS कर रही थी मैं, तो क्योंकि हम लोग को पेशेंट से भी डील करना होता था, क्लिनिक्स होते थे, उसमें हम लोग को समझ में आया एक्चुअली में कितना, मतलब लोग कितना परेशान है, इनसे बात कैसे करनी है, जो एक्चुअली पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स से बात करना हम लोग MBBS में सीखते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझना, उनसे किस तरीके से बात करनी, कितनी बात करनी है,
0: यानी पब्लिक डीलिंग।
1: जी, पब्लिक डीलिंग।
0: Okay.
1: वो हम लोगों ने MBBS में सीखी है।
0: और मुझे लगता है ये सबसे जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि पढ़ाई जब आप कर रहे होते हैं तो आपका सिर्फ जो सामना होता है, या तो अपने कलीग्स जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, या फिर प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स आपके होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपका रियल एक्सपीरियंस होता है वो जब डीलिंग आप करते हैं पब्लिक को, पेशेंट्स को जब आप डील करते हैं, वहां पे होता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी के लिए जब आप कर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं आपको लेकर के, और कुछ ऐसे होते हैं कि भड़क भी जाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को या आपके चैलेंजेस को नहीं समझ पाते, वो शायद सिर्फ अपनी बात आगे रखते हैं। सो ऑफ कोर्स ये पब्लिक डीलिंग समझना इस प्रोफेशन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने किया होगा, वहां पे देखे होंगे केसेस, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। देखिए, जिस भी आप ब्रांच में जाइए, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सीडेंटल केसेस आते हैं जिसमें आपको ट्रीट करना ही करना होता है। उस दौरान क्या वो डर लगा था, क्या लगा कि नहीं यार गलत आ गए, डॉक्टर गलत बन गए, कुछ और बन सकते थे, या कैसा क्या था इसके बारे में?
1: डॉक्टर बन के हमेशा सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग थी कि पेशेंट्स की आप हेल्प कर सकते हो। कोई और प्रोफेशन कभी इस तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं गेन कर सकता कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, उनको ठीक कर रहे हो। आजकल समाज में तो ये डिफरेंस आ गया है वैसे कि पेशेंट्स भी अब इतना नहीं समझते। पहले डॉक्टर्स को इतना भगवान कंसिडर किया जाता था कि ये तो भगवान मिल गए। अभी बोलते हैं बहुत लोग कि हमें तो भगवान मिल गए, बट ठीक है, इंसान ही समझे, बट अच्छा लगता है।
0: बट आपकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझे। ऑफ कोर्स डॉक्टर भी एक इंसान होते हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन इतना आसान नहीं होता। और जो आपने एक बात कही सेटिस्फेक्शन की, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो शायद ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका कोई टाइमिंग नहीं होता है। बाकी जगह वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं कि आपको इतने घंटे काम करना है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए बिल्कुल नहीं पता होता है कि कब केसेस आ जाएंगे, कब आपको उठ के भागना पड़ेगा, या आपको कितना टाइम लग जाएगा, कितने बुरे केसेस आपको देखने होंगे। अच्छा, इस तरह से केसेस देखते हैं, इतना ज्यादा पब्लिक को डील करते हैं, इतने ज्यादा लोगों से आप मिलते हैं, एट द एंड आप भी एग्जॉस्ट हो जाते होंगे। खुद को कूल करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए क्या चीजें आप करते हैं?
1: खुद को रिलैक्स करने के लिए दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त हैं, घर वाले हैं, बात करो, कूल डाउन हो जाता है खुद। वैसे मेरी जो ब्रांच है एक्चुअली स्किन में, इतना कभी हाइपर होते ही नहीं हम, सब रिलैक्स रहता है सब कुछ।
0: अच्छा, बहुत रिलैक्स रहता है। लेकिन अभी आपने फ्रेंड्स की बात की, आपके फ्रेंड्स तो बाहर होंगे ना, आप तो गोंडा में है अभी, कैसे मतलब?
1: आजकल सोशल मीडिया है, फोन है, सबसे इजी।
0: अच्छा, जेंजी वाली आपने जो वेपन है वो आपने भी अपना लिया, जैसा हम सभी लोगों ने अपना लिया। बेशक बेशक। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में जुड़े रहना, फ्रेंड्स के साथ में जुड़े रहना, यही आपको थोड़ा रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि आप अलग अलग जगह जाते हैं और बहुत सारी चीजें आपके साथ दिन भर में होती रहती हैं, जो अगर आप शायद खुद अकेले ही सिर्फ सोचा करेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। तो उसको शेयर करना या उन चीजों पर डिस्कस करना,
1: ओपिनियंस लेना, कहां हमने कुछ गलती कर दी, वो लोग भी बताते हैं कि थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, नहीं ऐसा दूसरे का भी कुछ ओपिनियन हो सकता है।
0: एग्जैक्टली। वैसे क्या हम जाना चाहेंगे, डॉक्टर साहिबा को गुस्सा बहुत आता है क्या? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है स्माइल देख के। ऑलराइट। सो खैर, ये पेशा ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की आपको खुद भी जरूरत होती है, क्योंकि हर तरह के लोग आपको डील करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता से, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही है, त्वचा विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हैं, और साथ ही साथ अभी हमारे एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पार वापस आने वाले, और त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो हम अपनी जनरल लाइफ में फेस करते हैं, उसको लेकर के बातचीत करने वाले हैं। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए अपना इवनिंग वाला शो गोधली अपने फेवरेट आरजे अदनान के साथ, only on Radio Gyanasthali 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286-9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान आपके अपने प्रोग्राम गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया था कि आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। जाने से पहले हमने जानने की ये कोशिश की थी कि भाई ये त्वचा रोग विशेषज्ञ का काम क्या होता है। त्वचा से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आती होंगी, सो प्लीज बताएं कि आपके अंडर में किन किन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किन प्रॉब्लम्स को आप क्योर करते हैं।
1: तो हमारे अंडर सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन की, वो है दाद।
0: दाद
1: जो हर किसी को, हर एज ग्रुप में, फीमेल्स मेल्स सब में मिल जाता है
0: जी।
1: और स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा लेयरिंग होती है, बहुत ज्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं, कवर करना पड़ता है, तो उनमें ज्यादा मिल जाता है। और क्या बीमारी होती है, आजकल गर्मियां बहुत हैं, गर्मियों में पसीने की वजह से दाद भी बढ़ता है। घमोरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं आजकल, घमोरी की वजह से दाने आना शरीर पे, प्लस धूप इतनी ज्यादा है, तो धूप की वजह से हमारे शरीर में हम एक रिएक्शंस बोलते हैं, जो लाइट रिएक्शंस हो जाते हैं, वो बहुत कॉमन हो गए हैं। और चीजें होती हैं जो हमारे अंडर हम लोग देखते हैं, वो होता है खाज, कि एक दूसरे से फैलने वाली खुजली हो जाना।
0: खाज, बिल्कुल।
1: और हाँ, शरीर पे मोटे मोटे चट्टे हो जाना, जिसमें खाल मोटी मोटी पपड़ी के फॉर्म में निकलने लगती है। कील मुहासे यूथ में स्पेशली बहुत ज्यादा कॉमन है, कि एक्ने होने लग गया है
0: टीनेजर्स में, बहुत देखा जाता है, राइट।
1: तो ये सब कॉमन डिजीज।
0: हेयर फॉल भी आता है।
1: हेयर फॉल भी आता है,
0: अरे वाह। फिर तो मतलब जो मेल्स होते होंगे वो परेशान कर देते होंगे, मैडम ये हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है।
1: बहुत ज्यादा, स्पेशली जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशियाज हैं, जो जेनेटिक फॉर्म में आते हैं, पैटर्नड एलोपेशिया होते हैं, वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो वाले पेशेंट्स। दूसरा, एनवायरमेंटल कॉजेज बहुत हो गए हैं आजकल हेयर फॉल के, पानी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, या फिर जो जितना भी हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं हमारे खाने में, जो हमारी बॉडी में जा रहा है, उस सब की वजह से हमारे को बहुत जल्दी यूथ में 15-16 साल के बच्चों में ग्रे हेयर हो जाना, हेयर फॉल होना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। वो सब पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हमारे खाने में है, उन सब की वजह से ज्यादा हो गया है अब।
0: हाँ, एक चीज मैंने अभी बहुत गौर की है कि अभी यंगस्टर्स हैं, इवन मेरी एज से काफी छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, उनके भी हेयर वाइट हो रहे हैं। तो इसके पीछे भी क्या जो आप ये बता रहे कॉजेज, यही वजह है?
1: बिल्कुल, जितने भी हम केमिकल्स पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल खाने में जो सब्जियां वगैरह हम खाते हैं, उन सब में भी इतने केमिकल्स हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि जंक फूड मत खाओ सिर्फ, क्योंकि हमारे जो कॉमनली ईटन वेजिटेबल्स हैं, मतलब सबसे कॉमन
0: हेल्दी बोलते हैं,
1: हाँ हेल्दी बोलते हैं, लौकी तोरई टाइप की सब्जियां,
0: राइट,
1: उन सब में भी इतने केमिकल्स हैं। तो वो सब एक्सपोजर जब इतना ज्यादा होगा, तो बच्चों तक में इतने ग्रे हेयर हो रहे हैं,
0: तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स नजर आती है। अच्छा, अभी आपने सबसे पहले जो नाम लिया था वो लिया था दाद का। ये दाद किस वजह से होते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है?
1: दाद हमारे एक्चुअली एक फंगल इन्फेक्शन है।
0: ओके।
1: तो फंगल इन्फेक्शंस, फंगस हमेशा वहां ग्रो करती है जहां पे डैम्प होता है, जहां पे गीला रहता है शरीर।
0: ओके।
1: तो वो सबसे ज्यादा कहां होगा? जहां पे हमारे को पसीना ज्यादा आएगा, ग्रोइन में होगा या फिर आर्मपिट्स में होगा। बाकी फंगस एक्चुअली सब जगह ग्रो कर सकती है। एक बार अगर स्टार्ट हो गया वो सब जगह फैल सकता है, सर से लेके पैर के उंगली तक।
0: ओके। मतलब इतना डेंजरस भी होता है?
1: बहुत ज्यादा।
0: ओके, तो आपने कहा कि फंगल इन्फेक्शन होता है और स्पेशली वहां ज्यादा ग्रो करते हैं जहां नमी होती है, जहां गीलापन होता है। ऑलराइट। इसके अलावा जैसे आपने बताया था कि ये एक्ने होता है, कील मुहासे आते हैं, सो टीनेजर्स में तो होता ही होता है। मान लीजिए कोई और है जो 30 प्लस है, 40 प्लस है, उसको अगर हो रहा है तो ये क्या ये भी कॉमन है या कोई बीमारी है?
1: नहीं, ये भी कॉमन है। आजकल स्पेशली फीमेल्स जो गोरा दिखने के लिए बहुत सारे जो OTC मतलब क्रीम्स अवेलेबल होती हैं।
0: ओके।
1: हाँ, वो सब बहुत ज्यादा लगाते हैं क्योंकि गोरा होना है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में कील मुहासे होना बहुत कॉमन हो गया है। कमर्शियली अवेलेबल, क्योंकि हमारे समाज में इतना गोरा होने की इतनी ज्यादा होड़ है। कोई हल्का सा भी नॉर्मल डस्की कॉम्प्लेक्शन भी होता है उसको बहुत परेशान किया जाता है, तो वो परेशानी के चक्कर में क्रीम लगा लगा के गोरा होना चाहते हैं, जिनमें स्टेरॉइड होता है।
0: Okay.
1: उस स्टेरॉइड की वजह से बहुत दाने आते हैं। हॉर्मोन्स जब किसी के ऊपर नीचे हो रहे हो फीमेल्स में, उन लोगों में बहुत सारे दाने आते हैं, स्पेशली लोअर फेस पे। तो एडल्ट्स पॉपुलेशन में भी अबव 30 एक्ने हो सकता है।
0: ओके। उनमें भी ये एक्ने हो सकता है। ऑलराइट। एंड हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस होड़ में कि शायद रंग साफ हो, केमिकल्स हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो नेचुरल तरीका नहीं होता है गोरा करने का, जबकि ये जो प्रोसेस है ये पिगमेंटेशन का है। बट अगर हम फोर्सली बाहर से करते हैं तो उसका हमें ये इस तरह से परिणाम जो है वो भुगतना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी को त्वचा संबंधी कोई बीमारी हो रही है, कोई रोग हो रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? कोई लक्षण होते हैं कि हम उसको जान पाए कि हमें कोई स्किन रोग हो रहा है?
1: सबसे कॉमन लक्षण तो यही है कि हमारे को खुजली होने लगती है, स्किन जरा सा भी ड्राई होगी या कोई भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला सिम्टम खुजली होती है, उसकी वजह से हम जान सकते हैं। नहीं तो कुछ स्किन पे ड्राइनेस की वजह से कुछ वाइट चट्टे हो जाना, कुछ निशान पड़ जाना, उसकी वजह से हम सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो।
0: ओके। तो ये तो देखिए ऐसी कई बीमारी हैं जो कॉमनली हम लोग भी जानते हैं कि दाद, खाज, खुजली, ये सब है जिसका ट्रीटमेंट किया जाए तो हो जाता है। लेकिन हम जानना ये भी चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी भी बीमारी होती है जो बड़ी बीमारी कहलाती है त्वचा के लिए? तो अगर है तो वो कौन सी बीमारी और क्या होता है उसमें?
1: बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं, इनमें हम लोग सोराइसिस होता है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जो एक्चुअली में स्किन के साथ में अंदरूनी ऑर्गन्स जितनी भी होती हैं उन सब को भी इन्वॉल्व करता है। तो उसमें मेडिसिन, रूमेटोलॉजी और स्किन एक साथ, तीनों डिसिप्लिनरी अप्रोच का हमें तीनों डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है, मतलब सबका ओपिनियन लेना पड़ता है। और भी बीमारियां हैं जिसमें आजकल स्किन कैंसर्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं।
0: राइट।
1: सन एक्सपोजर की वजह से, हम जब क्यूमुलेटिव सन एक्सपोजर जिनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब बहुत टाइम तक धूप में रहते हैं, आजकल बेसल सेल कार्सिनोमा हम बोलते हैं, BCC होता है, जो धूप की वजह से ओल्ड एज में बहुत ज्यादा होने लगा है। लोगों को पता ही नहीं है कि मुंह पे इतने बड़े बड़े छाले और निशान हो रहे हैं, वो कैंसर है।
0: ओके, मतलब उनको ये अंदाजा भी नहीं होता है कि उनको कैंसर हो रहा है।
1: जी।
0: अच्छा, तो किस तरह के निशान होते हैं? कोई स्पेसिफिक शेप में होते हैं? क्या क्या होता है उसमें?
1: शेप नहीं होता उसे, हम बोलते भी रोडेंट अल्सर है, जो ऐसा लगता है कि चूहे ने पूरा चेहरा को खा लिया।
0: Okay.
1: पूरा छाला हो जाना, गड्ढा पड़ जाना चेहरे पर, उस पर आँख के और नाक के पास में यहाँ पे बड़े बड़े निशान हो जाना, गड्ढे हो जाना, बीडेड सी बॉर्डर होती है उसकी, जो उठी उठी सी लगती है, ऐसा लगता है उसके अंदर पूरा किसी चूहे ने खा लिया हो, उस तरीके के निशान हो जाना, वो कैंसर होता है। और वो उन्हीं एरियाज में क्योंकि ज्यादा होता है जहाँ पे सन एक्सपोजर ज्यादा, धूप ज्यादा पड़ रही है।
0: अच्छा, एक कॉज तो आपने बताया कि धूप यानी सूरज की रोशनी जहाँ ज्यादा पड़ती है, और भी कोई कॉजेज होता है स्किन कैंसर होने के पीछे?
1: वो सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और भी कुछ केमिकल्स की वजह से भी होता है, जो हम लोग बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं, ब्लीचेस वगैरह लगाते हैं, जो बहुत लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से अंदर हमारे डीएनए को डैमेज कर सकता है, उस सब की वजह से भी कैंसर हो जाता है। वायरल इन्फेक्शंस, स्पेशली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसकी वजह से कैंसर हो सकते हैं, जो बहुत टाइम तक हमारे वॉर्ट्स किसी के बॉडी में रह रहा है उन सब की वजह से कैंसर हो सकते हैं, वो कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है।
0: जी, एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम हमने जो सुना है मेलानोमा, ये कौन सी बीमारी होती है, इसमें क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या संभव है या नहीं है?
1: मेलानोमा इंडिया में अभी इतना नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे बहुत फेयर लोग होते हैं, जो जैसे कॉकेशियंस हैं, जैसे यूके यूएस के लोग हैं, उन लोगों में ज़्यादा होता है, उसमें भी सन एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा होता है, और मोस्टली हमारे नेल बेड्स में इन्फेक्ट मतलब कैंसर डेवलप होता है, वो नेल बेड्स का कैंसर होता है, कभी कभी पूरी बॉडी में फैल सकता है। एक सिंगर हुआ करते थे बॉब मार्ले, उनकी डेथ मेलानोमा से हुई थी, जो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया था।
0: ओके।
1: पर इंडिया में अभी ये इतना ज्यादा सोर्स ऑफ वरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में मेलानोमास इतने नहीं होते हैं।
0: ओके, तो आपने बताया कि मेलानोमा के जो केसेस हैं वो इंडिया में इतने नहीं है। कहने का सेंस ये, कहीं ना कहीं फिर हम ये मान सकते हैं कि एरिया स्पेसिफिक बड़ी प्रॉब्लम डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप रहते कहाँ हैं, किस रीजन में हैं, किस जगह है, सनलाइट वहाँ पे कैसे आती है, कैसे है,
1: आपकी स्किन का कलर क्या है,
0: स्किन का कलर क्या है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि गोरे लोगों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, एक तो हाईलाइट भी हो जाती है, दूसरी बात है प्रॉब्लम्स भी होती है, ऐसा क्या होता है, इसके पीछे क्या?
1: हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग डार्क हैं,
0: डार्क है,
1: हाँ, डस्की हैं। जो लोग बहुत गोरे होते हैं, बहुत फेयर होते हैं, उन लोगों में मेलानिन नहीं होता है। मेलानिन हमारा स्किन का सबसे सेव करने वाली चीज है, मतलब स्किन में मेलानोसाइट्स जो होती हैं वो हमारे सेवियर की तरह समझिए आप।
0: ओके।
1: वो मेलानिन क्रिएट करेंगी जो हमारे को सन एक्सपोजर से बचाएगी। टैनिंग भी हम उसी को कहते हैं, जहाँ पे धूप ज्यादा पड़ रही है वहाँ मेलानिन इंक्रीज हो रहा है, वहाँ बॉडी हमारे को बचा रही है कि हम जल ना जाएं।
0: ओके।
1: कॉकेशियंस में मेलानिन नहीं बन पाता, वहाँ पे स्किन इतनी लाइट होती है, मेलानोसाइट्स इतना कम होते हैं कि वो धूप से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए उन लोगों में धूप की दिक्कतें ज्यादा होती हैं, सनबर्न होना, मेलानोमास, कैंसर्स, ये सब उन लोगों में ज्यादा होते हैं।
0: ओके, तो मतलब जो परेशान होते हैं कि लोग हमें टैनिंग हो गई है, तो ऑफ कोर्स हम ऐसे रीजन से हैं, ऐसे प्लेस से हैं जहां पे हमारे लिए मेलानिन बहुत वर्क करता है।
1: जी।
0: ओके, ये तो बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, मेरे ख्याल से अभी तक कई लोग इससे अनजान रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये कि जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ये इनके पीछे क्या रीजन होता है, ये फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है?
1: फंगल इन्फेक्शंस मैंने जैसे बताया बहुत डैम्प कंडीशंस में होता है, कि नमी हो शरीर में, हम लोग गर्मियों में हम लोग ध्यान नहीं देते, गीला हो गया कपड़ा उसी को पहने हैं कि सूख जाएगा, उसका वेट करने में गीला शरीर पे रहेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, ऊपर से एक दूसरे से फैलते भी हैं, दाद है कि आपने हाथ मिलाया एक दूसरे से फैलेगा।
0: ओके।
1: इसीलिए जब हम देखते हैं, हमारे पास जब पेशेंट आता है, एक परिवार में 5 लोगों को एक साथ दाद हो गया।
0: बिल्कुल।
1: क्यों हुआ? क्योंकि उन सबके कपड़े एक साथ धुल रहे हैं। फंगस एक दूसरे से कपड़ों में जा रही है, एक दूसरे से फैलेगी, इस वजह से भी फैलता है।
0: अच्छा, ये कह सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये बरसात के सीजन में ज्यादा होता है क्या?
1: क्योंकि पसीने के साथ में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जब होगी,
0: राइट,
1: तो कपड़ा सूख नहीं पाएगा, हम गीला कपड़ा पहने रहेंगे। हम लोग इसीलिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप जब कपड़े पहन भी रहे हैं, वो आप हर कपड़े को प्रेस करके पहनिए।
0: ओके।
1: इवन आपके जितने अंडर गार्मेंट्स वगैरह हैं, वो भी आप प्रेस करके पहनिए, तो जितना फंगस होगा वो खत्म हो जाएगा। गर्माई से, सूखने से, गर्माई
0: से वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या कॉमन मैन को भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने बताया पेशेंट्स के लिए, बट हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, स्पेशली बरसात का सीजन आने वाला है, तो उसमें किस तरह की चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए?
1: अब बरसात आ रही है, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कपड़े अच्छे से सूख के पहने, जितना सूखे हुए कपड़े होंगे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। पैरों में शूज जो होते हैं फुल कवर करे हुए पहनते हैं हम लोग, जिसकी वजह से पैर गीला रहता है, उंगलियों के बीच के स्पेस में बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बारिश में।
0: बेशक।
1: हाँ, तो जितना हो सके हमें खुले टाइप के स्लीपर्स पहनने होते हैं। खुले स्लीपर्स पहनेंगे तो पैरों को ड्राई होने का चांस ज्यादा लगेगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा।
0: ओके, मतलब कोशिश ये करनी कि खुले में ज्यादातर रहे और कपड़े ऐसे पहने जिससे हवा जाती है और नमी ना बनने दें।
1: बिल्कुल,
0: एक बार में अगर कहा जाए। बेशक, ये तो बात बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने कहा था कि भाई खाने पीने से भी बड़ा असर पड़ता है, सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ना खाया जाए अगर कोई भी आपकी स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, या जनरली अवॉइड किया जाए ऐसी चीजों को जिससे कि इस तरह की चीजें होती हैं, इसको लेके बताएं।
1: सबसे बड़ी चीज शुगर। शुगर अगर हम अपनी डाइट से कट करें तो आधे से ज्यादा इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में वैसे ही कम हो जाता है।
0: ओके।
1: एक्ने भी, जैसे यूथ में हम बोलते हैं, वो लोग इतना जंक खाते हैं, इतना शुगर खाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने और डबल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो हमें शुगर कट करना है। जंक, मैदा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सब से भी हमारी बॉडी का शुगर बढ़ता है, वो भी कम कर सकते हैं। और तीसरी चीज होती है डेयरी प्रोडक्ट्स, तभी दूध, मलाई,
0: मक्खन है, मलाई है,
1: जितना कम कर सकें। घी क्लैरिफाइड बटर होता है,
0: ओके,
1: है ना, वो मतलब उसको अच्छे से बहुत ज्यादा पकाया हुआ होता है। घी से इतना डिफरेंस नहीं आता जितना एक्चुअल डेयरी से आता है, जो फुल फैट टाइप का दूध होगा या मलाई होगा, वो सब
0: उसको अगर मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस इस्तेमाल किया जाएगा तो खतरा बढ़ जाता है, मतलब उसको बस नॉर्मली इस्तेमाल करें। ऑल राइट, तो भाई ये तो बहुत हमने जाना कि आखिर डाइट में किस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विटामिन भी बड़ा अहम रोल अदा करता है, उस बात पे भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि गर्मी के सीजन में अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रखा जाए, सर्दियां जब आती हैं तब क्या किया जाए, बारिश का जो सीजन होता है मॉनसून का सीजन, उस दौरान अपनी त्वचा की देखभाल कैसे की जाए, ये सारी बातें जानेंगे लेकिन ब्रेक के उस पार। सो बातें होने वाली है बहुत जरूरी, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
8: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
7: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
8: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
7: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त RJ अदनान, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ में आज मौजूद है डॉक्टर श्रुति गुप्ता, जो कि एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट है डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि अभी हमने जाने से पहले कहा था कि आने के बाद हम बातचीत करने वाले हैं आपसे कि ये विटामिन कितना ज्यादा रोल अदा करता है त्वचा के लिए, क्या किसी विटामिन की कमी से भी होता है ये त्वचा रोग संबंधी जो भी बीमारियां हैं।
1: विटामिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दिखाई नहीं देते इसलिए हम इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्पेशली विटामिन ए डी ई, ये तीनों हमारी स्किन का बैरियर, स्किन में कैसे स्किन हमारी रिप्लेनिश होगी उस सब को बहुत अफेक्ट करता है। विटामिन ए हमारी स्किन को रिजुविनेशन कराने में बहुत हेल्प करता है। डी और ई, ये दोनों भी हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं क्योंकि वो हमारे लिवर में स्टोर होते हैं, बट ये हमारी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत काम आते हैं। ये हो गई फैट सोल्यूबल विटामिन की बात। दूसरी चीज होते हैं जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जिनमें होते हैं विटामिन बी और सी। बी बहुत सारी बीमारियां जिसमें विटामिन बी की कमी हो जाए, उन सब बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पिलाग्रा होता है जिसकी वजह से हमारे स्किन में बहुत सारे रैशेज हो जाना, स्पेशली सन एक्सपोज स्किन पे, वो हो सकता है। और विटामिन सी तो हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे स्किन को पिगमेंटेशन से बचाता है। तो विटामिन सी लेने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सबकी स्किन ज्यादा ग्लो करती है। आजकल हम देख रहे हैं विटामिन सी के सीरम्स भी आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो पिगमेंटेशन रिड्यूस कराने में हेल्प करता है। तो जो हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं उसको भूल के लोग ज्यादा आर्टिफिशियल यूज करते हैं, बट जितना भी हम नींबू पानी पी सकते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स जितने भी ऑरेंजेस खा सकते हैं,
0: खट्टे फल यानी कह सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड जैसा कि हमने कोरोना में भी सुना था कि भाई विटामिन सी का इस्तेमाल, क्योंकि इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं बूस्ट करने का काम विटामिन सी करता है, तो आपने कहा कि विटामिन्स जो है वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो यानी हमको ऐसे फूड आइटम्स लेने चाहिए जिसमें प्रॉपर वे में हमको मिल जाए विटामिन्स। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है। अब एक बहुत बड़ी समस्या जिसको हमने बहुत पहले आपसे कहा था उस पे वापस से आते हैं, हेयर फॉल, ये बालों की झड़ने की समस्या। हालांकि मर्दों में ज्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो स्टाइल हम दिखाते हैं वो सिर्फ बालों से पहले दिखाते हैं। अक्सर देखो टीनएजर्स जो होते हैं वो बच्चे अपने बालों को झड़ा करते हैं, हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, मर्दों में बहुत कुछ तो होता नहीं दिखाने के लिए, तो वो हेयर स्टाइल बहुत जरूरी होता है। सो ये जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं, और इसको इसके लिए उपचार कौन कौन से हैं?
1: ठीक है, स्पेशली मेल्स में जब हम देखते हैं तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। दूसरी चीज होती है टेलोजन एफ्लूवियम, जो सेकेंड मोस्ट कॉमन है, वो फीमेल्स में ज्यादा मिलता है क्योंकि फीमेल्स नर्चर करती हैं, बेबी को फीड कराती हैं। बच्चा पैदा करने में हमारे शरीर में जितना ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है वो सब टेलोजन एफ्लूवियम की तरह, मतलब हमारे पूरे सिर में से एक साथ बाल झड़ जाना, स्पेशली बच्चा पैदा होने के बाद में,
0: ओके,
1: वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। आयरन डेफिशिएंसी, जो मेरे को लगता है 50% से ज्यादा फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, उस सब की वजह से टेलोजन एफ्लूवियम होता है, जो बाल झड़ने में, आजकल तभी यूथ है उन सब में हीमोग्लोबिन की इतनी कमी है, आयरन की कमी है, वो सब में हेयर फॉल हो रहा है। और तीसरा हेयर फॉल होता है जब हम कोई ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाती है, जिसे हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। आजकल जितने भी ये डायबिटीज है, थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, उन सब के साथ में एसोसिएटेड हमें मिलता है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें कहीं कहीं से लोकलाइज्ड बाल गिर जाना कि सिक्के बन रहे हैं सिर में, खाली हो गया एक जगह से, उसे हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। इन सब का ट्रीटमेंट आपकी डॉक्टर जैसे आपको इवेलुएट करेगी कि किस वजह से बाल गिर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: ओके, और अगर हम कॉमन जैसे प्रॉब्लम्स देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने एक शहर से दूसरे शहर में रहने के लिए हम गए, तो पानी का लोग अक्सर एग्जांपल देते हैं कि भाई पानी चेंज हो गया होगा। पानी ही से चेंज होता है या खाने से भी वहां चेंज से कोई फर्क पड़ता है? कुछ वेदर या क्लाइमेट का भी क्या कोई असर होता है? क्या क्या होते हैं इसमें कॉसेस?
1: सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा न्यूट्रिशन। जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो हमारे शरीर में इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता कि हम घर का खाना नहीं खा पा रहे हैं। दूसरी चीज होती है कि हार्ड वाटर, पानी अगर ठीक है, सॉफ्ट वाटर आ रहा है उस जगह पे, तो ठीक है
0: जी।
1: पर हार्ड वाटर थोड़ा कॉज कराता है हेयर फॉल को। तीसरी चीज है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे आप कह रहे हो ये जहाँ पे बहुत ज्यादा डैम्प रह रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है, सीजनल इसलिए ज्यादा हेयर फॉल होता है बारिश के सीजन में। जब हमारे हेयर फॉलिकल्स गीले बालों में, आपने भी नोटिस किया होगा जब बाल गीले होते हैं उस टाइम ज्यादा गिरते हैं
0: राइट।
1: हाँ, क्योंकि हमारे फॉलिकल्स जो होते हैं उस टाइम पे बहुत वीक हो जाते हैं। जब गीले बाल रहेंगे, फॉलिकल्स वीक होंगे, तुरंत बाल निकल जाएगा बाहर। तो जितना हो सके हमें स्कैल्प को ड्राई रखना होता है। तो जब पसीना आता है, स्कैल्प ड्राई हो रही है, सिर में बहुत पसीना आता है कुछ लोगों
0: जी,
1: को
0: जी।
1: उसकी वजह से बाल ज्यादा गिरते हैं गर्मी और बारिश के सीजन में।
0: ओके, तो ये आपने बताया कि कहीं ना कहीं कोशिश ये करना, जो हमारा स्कैल्प होता है उसको ड्राई रखने की कोशिश करना है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। एंड इसके अलावा, अब चूंकि हमने ये जान लिया कि न्यूट्रिशन जो होता है वो सबसे ज्यादा इस पे असर डालता है, दूसरी बात है क्लाइमेट की बात है, एंड कोशिश आपको ये करना है कि मैंने अक्सर देखा लोग गलती करते हैं नहाने के बाद भीगे भीगे बाल ऐसे और चले जाते हैं बाहर, तो शायद ये एक अच्छी हैबिट नहीं हो सकती है। इसीलिए शायद टॉयल का इस्तेमाल कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप ड्राई कर लेते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं बाहर, तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। एंड इसके अलावा अब हम एक क्वेश्चन ये करने वाले हैं, आपने स्किन की बात की है। स्किन देखिए, या तो यूथ में जो अभी हमने एक बात की, या यूथ है या अधेड़ उम्र के हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चे की बात करें, न्यूबॉर्न बेबी है, या बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, तो इनकी स्किन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। लेकिन अगर स्पेशली हम बात करें बच्चों की, हो सकता है इस वक्त हमें और आपको कई ऐसे लोग सुन रहे हैं जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनकी केयर किस तरह किया जाए, क्योंकि स्किन संबंधी उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है।
1: जी, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा प्रोन होती है, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है आपके वेट के कंपैरिजन, तो हमारी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो सकती है, मतलब बच्चे जो होते हैं उनकी स्किन। तो उनको हमने देखा होगा, हमारी माताएं जितनी भी होती हैं वो लोग बहुत मालिश करती हैं
0: जी,
1: क्योंकि उनको ये चीज एजेस से पता था कि बच्चे की स्किन बहुत ड्राई है, मालिश करने की जरूरत है, ऊपर से ऑयल देना पड़ेगा। और बच्चे का स्किन इतनी जल्दी उस टाइम पे डेवलप भी नहीं हुआ होता है कि वो सब चीजें
0: बर्दाश्त कर सके।
1: सही बात है। तो इसलिए हमको सबसे ज्यादा तो हमको उसको मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है, स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए बच्चों में।
0: ओके,
1: दूसरी चीज, जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से स्किन में ड्राई रिएक्शंस हो जाते हैं, कि मतलब शरीर में रैशेज होने लगे हैं, बच्चे के चेहरे पे रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाना, और मच्छर काटने की वजह से बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाना, जो छोटे बच्चों में हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि स्किन ज्यादा प्रोन है। जब हमारा स्किन प्रोन होती है तो हमारा स्किन मॉइस्चर जो होता है वो स्किन से निकल जाता है, उसकी वजह से जितना भी बैक्टीरिया, फंगस या कुछ भी इंसेक्ट या कुछ भी होगा वो ज्यादा इजिली अट्रैक्ट होगा और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है कि स्किन का बैरियर मेंटेन करना होता है। तो बच्चों में हम कैसे कर सकते हैं, ऊपर से मॉइस्चराइज करके कर सकते हैं, और जितना भी हो सके कि बच्चों को पेट्स से दूर रखना होता है। आजकल लोगों को थोड़ा ज्यादा पेट्स का शौक भी हो गया है, इसकी वजह से ये जितना भी एनिमल फर डैंडर जो उतना भी होता है उसकी वजह से बच्चे ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, उनको एलर्जी ज्यादा होती हैं, छींके ज्यादा आती हैं, स्किन एलर्जीज भी उसकी वजह से बढ़ गई हैं। तो उनसे दूर रखना होता है, घर में धूल मिट्टी इन सब से सफाई रखना है, बच्चों को उससे दूर ही रखना होता है।
0: ओके, मतलब ये आपने कहा कि कहीं ना कहीं बच्चे की जो स्किन होती है बहुत ड्राई होती है, सो मालिश करना तेल की बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, साफ सफाई का आपने कहा बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, जिस घर में स्पेशली छोटे बच्चे हैं और जहां पेट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके बाल होते हैं उड़ते हैं उससे भी बहुत सारे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है बच्चे को। बेशक ये बिल्कुल सही बात है, और कई सारे ऐसे घर होते हैं जहां बहुत सारे पेट्स पाले जाते हैं, और बच्चों का ख्याल, मेरे ख्याल से जितना ज्यादा साफ सफाई रखा जाएगा, इवन जो बच्चे को लेने वाली मदर है गोद में, कोई भी ले रहा है, उससे पहले खुद के हाथों को साफ कर लेना, सैनिटाइज कर लेना, ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। अच्छा, इसके अलावा चूंकि अभी बात हो रही थी स्किन की, तो कुछ सीजन ऐसे भी होते हैं, जैसे गर्मी में अगर हम बात करें तो गर्मी में पसीना ज्यादा आता है एंड ठंडक में पसीना कम आता है। अक्सर देखा जाता है कि गर्मी आते ही लोग एसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पसीना ना आए, इम्प्रेशन ना गलत पड़े। बहुत सारे ऐसे आजकल लिक्विड्स आ रहे हैं, स्प्रे आ रहे हैं, जैसे कि पसीना रोकने

0: लोग डिओड्रेंट्स यूज कर रहे हैं
1: जी,
0: डिओड्रेंट्स में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है जो हमारे पोर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एक्चुअली में पसीना बाहर नहीं निकल पाता,
1: नहीं निकलता।
0: हाँ, तो पसीना नहीं निकलने की वजह से बहुत सारी एक्चुअली में वहाँ पे बीमारियां हो जाएंगी। दाने पसीना वहाँ पे क्योंकि बना तो है बट निकल नहीं पा रहा,
1: निकल नहीं पा रहा
0: वहाँ पे, वो दाने की फॉर्म में प्रेजेंट करेगा जिससे इचिंग होगी, दाने बनेंगे और उसके बाद में पसीने की वजह से बुखार आ सकता है। जब ज्यादा पसीना आएगा वो सब वहाँ पे हीट क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रही है तो बुखार आएगा, बॉडी टेम्परेचर राइज होगा,
1: बढ़ जाएगा
0: और वो दाने जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है जब उनमें, तो आजकल बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिनमें गर्मी में क्योंकि खेलते हैं और फिर पसीना, कई बार लोगों की स्किन ब्लॉक हो जाती है कि स्किन में पोर्स जो है ब्लॉक हो गए तो पसीने के जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वहाँ पे दानों की तरह प्रेजेंट करते हैं माथे पे, स्पेशली बच्चों के सिर में और माथे पे। तो उन सबको हमें गर्मी पसीने से बचाना है कि पसीना निकल जाए।
1: ओके, बिल्कुल वैसे ही कह सकते हैं जैसे कि अगर ड्रेनेज सिस्टम किसी शहर का अच्छा नहीं है तो पानी भराव की समस्या फिर बड़ी मतलब दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसी बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है बाहर करने के लिए, आपने कहा हीट करता है या जो भी शायद वेस्ट चीजें होती होंगी उसको निकालने का काम करता है, पसीने का काम ही यही होता है और इसका निकल जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सारी आपने बातें कर ली, क्योंकि इन जनरल हमने हर चीज पे बातें की कि रैशेज हो तो क्या हो, खुजली क्यों होती है, त्वचा संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं, बहुत बड़ी बीमारियां कौन सी है, बच्चों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग कैसे अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि इन जनरल आप सारी बातों को कंक्लूड करते हुए कुछ ऐसी डेली लाइफ में चीजें बताएं जिसको हम और आप सभी लोग करें और कहीं ना कहीं जो स्किन संबंधी प्रॉब्लम है उससे बच जाएं।
0: सबसे इम्पोर्टेंट हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को, पसीने को जब भी आ रहा है तो हम उसको वॉश करके, आजकल गर्मी में हम नहाए ठंडे पानी से, दिन में 2 बार नहा सकते हैं और अच्छे से ड्राई करके ही कपड़ा पहनना है हमेशा
1: जी,
0: ताकि कपड़ा हम कभी भी डैम्प ना हो शरीर पे। फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करें जिसकी वजह से, नहीं तो डैंड्रफ जब हो जाता है उसकी वजह से शरीर पे बहुत दाने आते हैं। ऑयलिंग जो हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि हम सिर में ऑयलिंग कर लेंगे उसकी वजह से सब ठीक हो जाएगा, पर ऑयल करने की वजह से बहुत ज्यादा डैंड्रफ, चेहरे पे दाने आना, आजकल जितनी भी यूथ है ये जिम करते हैं
1: जी,
0: वो प्रोटीन पाउडर बाहर से वे पाउडर लेना
1: right.
0: उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्ने डेवलप होता है, तो वो अवॉइड करें। और जब भी हम जिम जा रहे हैं तो हमारा इक्विपमेंट हमेशा क्लीन हो और उसके बाद में शावर जरूर लें।
1: और पानी की शायद मात्रा बढ़ाना चाहिए जितना पानी पिएंगे उतना डिटॉक्स करता है।
0: पानी तो पीना चाहिए, उसके लिए वाटर अलार्म्स लगा लें।
1: अच्छा वाटर अलार्म्स जरूरी है, यानी अपने को जगाने के लिए कि आप सो गए और आपको पानी पीना है। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरती से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। क्योंकि बहुत जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन संबंधी, उस पर हमने चर्चा किया और आपने सभी हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब चूंकि अंतिम 2 प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो पहला जो प्रश्न है वो मेरा ये है कि अब इन सारी चीजों से हट के मैं वापस से आप पे आता हूँ जहां से शुरुआत की थी कि आपको जाना जाए, तो डॉक्टर श्रुति गुप्ता की वैल्यूज क्या है, यानी लाइफ में कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिनको वो फॉलो करती हैं और वो नॉन निगोशिएबल है, उसको निगोशिएट बिल्कुल भी नहीं करेंगी।
0: वैल्यूज यही हैं जो हमेशा पेरेंट्स से देखा, कि जितना किसी भी पेशेंट के साथ में एम्पैथी रखनी है,
1: एम्पैथी रखनी है पेशेंट्स के साथ में।
0: वो लोग बहुत परेशान कंडीशन में आते हैं हॉस्पिटल, कभी कोई खुश कंडीशन में नहीं आता है,
1: बेशक
0: बहुत बड़ी बात है। उनके साथ एम्पैथी रखनी होती है, आप किसी भी कंडीशन में, आप खुद कितना ही परेशान हो, पर उन लोगों को हमेशा कंसिडर ही करना पड़ता है कि आप उन लोगों को हर्ट नहीं करो, क्योंकि वो परेशान ही है, कोई खुश नहीं आ रहा है हॉस्पिटल,
1: हॉस्पिटल कोई बड़े केक नहीं काटने आ रहा है।
0: दूसरी चीज ये है कि किसी के साथ चीट नहीं करना है कि दवाई जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको भी लिख दिया।
1: राइट, ओके, ये तो पेशेंट्स की बात हो गई। अब मैं इन जनरल भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ की वो वैल्यूज बताइए जिसको आप फॉलो करते ही करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। बहुत से लोग ऑनेस्टी मानते हैं, रेस्पेक्ट करना लोगों की, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, या

0: की एक बात होती है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा आप फॉलो करते हैं, कोई अगर एक आप बताना चाहे तो। ओके, तो अब हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। आप बैठी हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि गोंडा का पहला एफएम और इस पूरे देवी पाटन डिवीजन मंडल का पहला एफएम है। जिस तरह से प्रोग्राम्स जाते हैं, आप भी एक प्रोग्राम में शामिल होने आई हैं। आपको क्या लगता है, इसको सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, गोंडा के हैं, गोंडा के बाहर के हैं, जो इसको सुनते हैं, आने वाले दिनों में ये क्या चेंज गोंडा के लिए ला रहा होगा और जो इसको सुनते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा होगा?
1: आजकल के यूथ को बहुत ज्यादा एनर्जी है और नॉलेज कम है, तो आप लोग आई थिंक बहुत ज्यादा इस चीज में एक रोल प्ले कर रहे हो, जो लोगों को जरूर हेल्प कर रहा होगा कि क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जॉब्स में, अपने बिजनेस करने में। क्योंकि हम हर चीज सोच सकते हैं कि हमें ये करना है, बट कैसे करना है वो बहुत जरूरी होता है, कहीं से गाइडेंस मिल जाए तो वो बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो इस सोसाइटी के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच।
0: थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स हमको आप सभी लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती जाती है और हमारे लिए हमारी अर्निंग आपकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जितना आप अपना ब्लेसिंग्स हमको देते हैं, दुआएं देते हैं, जितना नवाजते हैं उस चीज से, और हमारे हौसले और भी बुलंद होते जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने उसी विजन उसी मिशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सो थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और इतने अहम मुद्दे पे बात की। इवन गोंडावासी जो आपको नहीं जानते थे, आज उन्होंने जरूर आपको सुना होगा, उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स का आपने सॉल्यूशन इसी टॉक शो में दे दिया है। और मुझे ऐसा लगता है जिनको और प्रॉब्लम है या स्किन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, आपके डिपार्टमेंट में आके संपर्क करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें, यानी आपसे मिल सकते हैं या कहीं पे भी जो उनके नियर बाय जो भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू यू।
1: थैंक यू।
0: सो श्रोताओं, आपने आज का टॉक शो सुना और ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे प्रश्नों का आज उत्तर मिल गया होगा। फिर से हम हाजिर होंगे इसी शो में अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए आप सुनते रहिए अपना गोंडा वाला एफएम रेडियो 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
6: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
6: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गोंडा सुनेगा अपना FM।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286 9761 9860 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: अरे सुना
6: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
7: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके आरजेस आपके पास नहीं रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कमी तो फील होगी। सो सबको ये बारिश वाली शाम की सबसे पहले बहुत सारी मतलब कह सकते हैं खुशी वाली जो कहते हैं ना शुभकामना। तो गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है, आप सभी लाइव हो चुके हैं आरजे पीना के साथ आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे पीना वाला में। एंड यस, आएगी हर पल मुझे तेरी याद, ये गाना काफ़ी ज़्यादा हम लोग के साथ रिलेट करता है, क्योंकि देखिए चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो, आपके फेवरेट आरजेस के शो जैसे ही बजते होंगे तो आपका मन हमेशा कहता होगा आएगी हर पल तुझे मेरी याद। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल गाना है हम लोगों से, तो दिल से कनेक्टेड गाने जो होते हैं वो हमें हमारी फीलिंग्स से रिलेट करा देते हैं। वैसे आप लोग को बता दूं, आज शहर का मौसम काफ़ी सा मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश कभी आके हमें मतलब ठंडक वाली फीलिंग दिला देती है, और कभी धूप आके हमें ये बताती है कि बॉस ये बस कुछ देर ही की बात है और इसके बाद मैं ही आपका वो मतलब एनर्जी सोर्स। तो अगर एनर्जी से मुझे याद है, या एनर्जी की बात करें तो वैसे तो हम लोग बड़ी सारी एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, एनर्जी बाइट्स खा रहे हैं, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, बट एक्चुअली में आपको पता है कि एनर्जी का सोर्स क्या है? जी हाँ, एनर्जी का सोर्स यही यही यही सूरज कुमार है जो आसमान में रोज चमकता है और हमें बताता है कि भाई मैं तो तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। यस, आपको पता है पौधे इससे एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं। अब कोई कहेगा कि अरे मैं तो अंडा खाता हूँ, मुझे कहाँ से मिली सूरज की एनर्जी? भाई उस अंडे को बनाने वाले उसकी जो मदर है उसने जरूर प्लांट प्रोडक्ट खाया होगा, तो उसी एनर्जी से वो एनर्जी बनी। वेल, ये सब एनर्जी वाली बात छोड़िए, मेरी तो एनर्जी आप लोगों से बात करके ही बढ़ती है। और कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना, किसी को देखा तो दिल को करार आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया, और छाया नहीं साया, मैं तो मतलब क्या ही बताऊं। पहले वैसे छाया की बात करूं, क्योंकि आसपास बादलों की छाया इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली है, लग रहा है कि पूरा मौसम मतलब इधर उधर कर देगा। फिलहाल के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि आज है मंडे, एंड मंडे इज आर डे, बिकॉज आज के दिन ना सिर्फ आरजे पीना बोलती है बल्कि आप सबकी आवाज हम सभी को मतलब ये फील कराती है कि आप लोग कितने टैलेंटेड हो। कोई कुछ अच्छा सा लिख के ला रहा है, कोई कंपोज कर रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, तो कोई कविता सुना रहा है। सबके टैलेंट को मतलब मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऑलवेज, तो सबके लिए कुछ कहना भी चाहती हूँ, जिसे कहते हैं ना कि स्पेशल वाली लाइंस फॉर स्पेशल वाले पर्सन। तो मेरे स्पेशल वाले लोगों के लिए स्पेशल वाली लाइंस मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, और खास लाइंस हैं जिसको आप दिल से कनेक्ट करेंगे। ये दस्तूरे दुनिया भी अजीब होती है, आंखों से दूर है फिर भी दिल के करीब होती है, टुकड़ा कहीं से मांग के लाए थे खुशी का, एहसान उसका जो मुझसे गरीब है। कितने सवाल रोज आ जाते हैं खुद ब खुद, कह दे जवाब कौन सजा ले सलीब है। कुछ भस्म लिए जिंदगी में वक्त की बात है, हिस्से में किसके क्या है, ये क्या नसीब है। तो इतनी अच्छी लाइंस सुनने के बाद आपका भी दिल कह रहा होगा ना कि क्या मतलब आरजे पीना सुना दी है। और एक और लाइन, मतलब एक और लाइन नहीं, एक पूरी कविता मुझे याद आ रही है। कहते हैं कि बात तितली ने ये बताई है, ध्यान से सुनिएगा, कि बात तितली ने ये बताई है, गुल तो कांटों का घर जमाई है। आपको पता था? जी नहीं, फिर से जानिए कि बात तितली ने ये बताई है कि गुल तो कांटों का घर जमाई है, ये तो जहूरियत सा मंजर है। जरा गौर फरमाइएगा, ये तो जहूरियत सा मंजर है, आसमानों पे गर्द छाई है। आप खुश हैं कि कोई खेल हुआ, हमने सीने पे चोट खाई है। वो तो शादी करा के लौटे हैं, साथ किश्तों में खता आई है। आप आबादियां बसाते रहे, साथ बर्बादी चली आई है। कुछ तो बेटियों को रोते हैं, हमने बेटों से चोट खाई है। खैर, बकरे की मां मनाएगी, गौ के सामने कसाई है। सर्द मौसम में भी दिल झूम उठा, धूप क्या खूब गुनगुनाई है। फिलहाल मैं आपको बताऊं, आज ही मुझे पता चला कि दिल्ली शहर में एक बड़ी 3 मंजिला जो बिल्डिंग थी
वो जमींदोज हो गई, मतलब भरभरा के नीचे गिर गई और देख सुनने में मतलब देखने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है। और हानि होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा डरने की बात यह है कि अलग अलग घरों के बच्चे वहाँ पे एज अ पेइंग गेस्ट रह रहे थे और 3 से 4 मौतें सामने आ चुकी हैं, लगभग 16 लोग घायल हो चुके हैं। तो ये जो आंकड़े हैं हमारे लिए नंबर मात्र हैं, पर जिसके फैमिली पे ये जो दर्द भरा, जो कहते हैं ना कि बिजली गिरी है, उसे सहने की शक्ति देने के लिए हम सभी प्रे करेंगे और ऐसी जो आपदाएं हैं ना आए, भगवान से दुआ करेंगे। तो चलिए एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं और लोगों के लिए प्रे करते हैं और मदद के लिए। अगर हम आसपास ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे हमें ऐसी कोई चीज़ सुनाई देती है तो प्लीज़ हेल्प के लिए तुरंत वहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ना चाहते हुए भी अपनी जो राह है वो नेकी की अपनानी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना जो हमेशा से मुझे ये याद दिलाता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी ट्रैफिक, नेकी की राह।

बिल्कुल ऐसी जगह चलेंगे जहाँ बिना किसी को जाने भी हम किसी के अपने हो जाएं। एंड सिचुएशंस ऐसी ही हैं, हमें मदद का हाथ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि शायद एक दिन हमें भी मदद की ज़रूरत पड़े। ऐसा कभी ना हो पर फिर भी दुनिया में कहाँ कौन सी समस्या किसके सामने आ जाए क्या ही पता। गुड इवनिंग अरविंद, गुड इवनिंग एवरीवन जो जो जहाँ जहाँ से सुन रहा है। वैसे आप सभी को बता दूँ 6393316429 ये आप ही का फेवरेट वाला नंबर है और इसको आप डायल करेंगे तो आपको अपने आरजेस से बात करने का मौका मिलेगा। एंड ना सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि आप अपनी आवाज़ में कुछ सुरीला सा सुना पाएंगे। तो जैसा कि आप सुरीला सुनाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही समय है नंबर डायल करने का। और चलिए एक बढ़िया सा जो मैशअप है उसको सुन के आप बताइए कैसा लग रहा है। एंड ना सिर्फ एंजॉय करिए बल्कि मुझे ये बताइए कि इस मैशअप सॉन्ग ने आपकी जो हार्ट बीट्स है उनको बढ़ाया कि नहीं। फिलहाल कुछ गानों की जो मतलब मिक्सिंग है वो ऐसी होती जैसे लगता है कि दोनों एकदम सगे वाले भाई बहन हैं और इन भाई बहनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो चलिए हम अरिजीत सिंह के कुछ बेस्ट मैशअप सुनते हैं जिसको सुन के लगेगा कि अरिजीत सिंह ने सारे गानों को लगता है एक साथ मिला के गा दिया है।

0: ये मैशअप वाला गाना हम थोड़ी देर बाद सुनेंगे क्योंकि कॉल आ चुका है और मैं चाहती हूँ कि हर कॉल को आप तक पहुँचाया जाए और आपकी आवाज आपको सुनाई जाए। चलिए देखते हैं ये आवाज किसकी है। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम बताइए। जी
1: पिंकी रिंग की बात कर रही हूँ जगदीशपुर से।
0: ओ जगदीशपुर से हमारी बात हो रही है पिंकी एंड रिंकी से। ओहो क्या बात है।
1: कैसी है मैम आप?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आपकी आवाज सुन के थोड़ा ज्यादा सही हो गई हूँ मैं। नाम इतना अच्छा है पिंकी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी आवाज आपकी तबीयत ठीक कर दी।
0: तो ये बताइए पिंकी रिंकी, आप बात मतलब बात तो इतनी अच्छी कर रही हैं, आप सुनाना क्या चाहती हैं? 89.67
1: सॉन्ग सुनाना चाहेंगे।
0: ओ
1: और मैम आज हम दो तीन सॉन्ग आपको सुनाना चाहेंगे।
0: अब देखिए आपको टाइम तो मैं दूंगी सिर्फ 5 मिनट का, और उस 5 मिनट में आप दो तीन नहीं जितने गाने गाना चाहे गा सकती हैं, लेकिन ये भी बताइएगा कि गाना किसको डेडिकेट कर रही है, मतलब किसी को, मतलब
1: मैम आपको स्पेशली डेडिकेट करेंगे क्योंकि आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं।
0: अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। चलिए ठीक है मैं मान लेती हूँ मैं स्पेशली हूँ। अब स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। चलिए
1: बदली गई है ये दुनिया,

0: दुनिया, जब से हम तेरे आशिक बने, आशिकी का मजा आ गया, प्यार को बंदगी जब से माना, प्यार को बंदगी जब से माना, बंदगी का मजा आ गया, जब हम तेरे आशिक बने, आशिकी का मजा आ गया।
1: क्या बात है, क्या बात।

निभाना साथ निभाना दिलदार, सतो जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। रूप मांगू ना सिंगार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा।

0: तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा।
1: क्या नजरे मिली फिलहाल,
0: धड़का मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा, जादू कोई छाने लगा, अब तो मजा आने लगा। जी मैम इतना ही गा पाएंगे, हम इससे ज्यादा नहीं गा पाएंगे।
1: मुझे लगा कि आप पूरा मतलब अपना 5 मिनट यूटिलाइज करेंगी, लेकिन आपने 5 मिनट को यूटिलाइज नहीं किया। आपने हमें ये बताया कि कोई अगर दिल से गाना चाहे तो कितने अच्छे अच्छे गाने इतने कम टाइम में सेलेक्ट, मतलब मैं बताऊं अगर आपकी जगह मैं होती और मुझे किसी को गाने डेडिकेट करने होते तो मैं इतना चुन के तो गा ही ना पाती, कोई भी गाना शायद मैं गा देती शायद बीच में तो।
0: एक्चुअली मैम मुझे बहुत सारे गाने आते, लेकिन जब मैम मतलब गाना होता है ना तो वो सारे गाने भूल जाते हैं, तो मैम मैंने कोशिश की कि बेहतर से बेहतरीन गाने गा सकूं आपके लिए।
1: मुझे ऐसा लगा कि शायद मतलब मैं अगर गाती तो मैं बीच में शायद ये भी गाने लगती, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। थैंक यू सो मच रिंकी, मतलब रिंकी विंकी
0: मैम,
1: मतलब
0: उम्मीद है कि हमारे गाए हुए गाने आपको अच्छे लगे होंगे।
1: डेफिनेटली डेफिनेटली, और आप दिल के करीब हो गए आज से, क्या कहने क्या कहने। थैंक यू सो मच
0: मैम, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात। और मैम मुझे गाने सुनने का शौक भी है और गाने का भी शौक है मैम।
1: तो हर मंडे और वेंसडे तैयार रहा करिए अपनी आवाज में गोंडा शहर को सुरीला बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए बात हो गई पिंकी रिंकी से, और इन लोगों ने अपने मतलब लोगों ने नहीं, एक इंसान ने वैसे तो गाना सुनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक पूरी कम्युनिटी से गाना सुन रही हूँ, ना सिर्फ एक इंसान से बल्कि पूरी कम्युनिटी मुझे एक साथ गाना सुना रही है, क्या कह रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ गाना कम समय में ज़्यादा सुनाने की, तो मेरे ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो एक मिनट में 30-30 गाने गा लेते हैं। तो बहुत अच्छी आप लोग की हैबिट है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग एक साथ आते हैं और एक साथ आने के बाद बैंग करते हैं इवनिंग में। सो चलिए इस एनर्जेटिक इवनिंग को एंजॉय करते रहेंगे, और एक बहुत वायरल वाला गाना भी आपके साथ सुनते हैं, पार्वती पार्वती हंसते रही मुस्कुराते रही बजाते रही अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून, आप कुछ बेहतरीन सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आरजेबी ना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला आरजेबी ना वाला सुन रहे हैं, और डायल करते रहिए नंबर 6393-3164-29 आरजेबी ना के साथ लाइव बात करने के लिए।

0: मिलता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? ये भक्ति करनी है ना तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।
1: ना घबरा न

0: फिलहाल देखिए पार्वती और शिव दोनों को पुकार लिया हमने, और वैसे कहते हैं शिव जो है वो पृथ्वी पर घूमते हैं, और अगर पृथ्वी पर घूमते हैं तो आपको मतलब भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि ईश्वर तो हर रूप में सामने हमारे बैठा हुआ है, कभी कभी तो इंसान के रूप में भी हमारी मदद कर देता है, बस श्रद्धा की भावना होती है। और मैंने भी जल्दी एक वीडियो देखा यार, बड़ा मस्त सा था। मतलब वीडियो कहने का मतलब ये है कि उसमें एक मंदिर होता है जो काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि अनुमान 5-6 किलोमीटर रहा होगा, और बिल्डिंग काफ़ी ऊंची होती है। तो उस मंदिर में जब आरती होती है तो एक आदमी अपनी बालकनी पे खड़ा होकर अपनी बालकनी से आरती कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी जगह, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि किसी भी क्राउड वाली जगह जाने से बचिए। तो और हाँ भाई, एक वायरस के बारे में बताना था कि आपका इन्फ्लुएंजा वायरस इधर काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, स्वाइन मतलब ये जो स्वाइन फ्लू वाला जो स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी को लेकर कंसर्न है, क्योंकि बारिश का मौसम है और इस समय जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस हैं काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं, तो कीप दिस इन योर माइंड। तो चलिए आगे बातें करते हैं और देखते हैं किसका कॉल आता है। मैंने तो एक लिसनर से बात करके मतलब मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया सा गाना भी उन्होंने सुनाया, और गाना सुनने के बाद मज़ा आ गया, आह दिल एकदम कहते ना कि गार्डन गार्डन हो गया, और मेरे मन में भी आ रहा है कि एक गाना सुना ही दूं। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। देखिए चांद जमी पर आए या ना आए, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई एक इंसान चांद जैसा होता है। चांद मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, मैं किसी की खूबसूरती की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ चांद वो है जिसको आप मतलब अपना साथी मानते हो कि हमारे साथ चल रहा है और अच्छी फीलिंग दिला रहा है। अब सूरज तो चलता है साथ में, लेकिन सूरज के साथ चलने के बाद आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन चांद के साथ चलने के बाद अनकंफर्टेबल कोई तो नहीं फील करता है। तो उसको अच्छा दोस्त आप मान सकते हो अपना। तो चांद को बुला के साथ में बैठ के उससे बातें करना शायद चांद की तारीफ ही है और हमारे दोस्त की तारीफ है। फिलहाल मेरे किसी अच्छे से प्यारे से चांद वाले दोस्त का कॉल आ चुका है, देखते कौन है। हेलो,
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप सुन रही हैं शो गुंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला अपनी आरजे बीना के साथ। आप अपना नाम बताएं मोहतरमा। वैसे मैं आपकी आवाज पहचान गई थी तो सोचा कि लिसनर्स को भी दे मौका पहचानने का, मैं तो बता ही देती हूँ। चलिए हमारे साथ लाइव है आशु जी। आशु जी ये बताइए, पहले तो सवाल कर लेती हूँ, भी मैंने एक बात कही कि चांद जैसे दोस्त होने चाहिए हमारी लाइफ में, क्योंकि चांद के साथ हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। सूरज और चांद अगर हो साथ में तो आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली सूरज के साथ ठंडी, सूरज के साथ ठंडी में थोड़ा इंसान सोच सकता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं सोचेगा। लड़कियां तो यही सोचेंगी काले हो जाएंगे। मैं तो यही सोच के ज्यादा देर नहीं बैठूंगी। तो लेकिन चांद जो है, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हर मौसम में एक अच्छी वाइब देता है। तो चांद जैसे दोस्त होते हैं तो मतलब वहाँ हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। तो आपकी जिंदगी में कौन ऐसा चांद जैसा दोस्त है? महबूबा नहीं, चांद जैसा दोस्त।
1: बिल्कुल मैम, आप एक आप है मैम, एक हमारे भाई बहन है जो अपनी मन की बातें कर सकते हैं।
0: ओह मुझे भी चांद का वो क्या हाल है, अभी मैं उड़ के आसमान में ना पहुंच जाऊं थोड़ी देर में। फिलहाल कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा मतलब सीट वीट पकड़ रखी है। चलिए आज आप क्या सुनाएंगी
1: मैम? जो आई है मूवी हनुमान धनी का सॉन्ग सुनाऊंगी।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी मूवी है
1: मैम।
0: क्या बात है,
1: देख के आई।
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दियो, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दियो, काहे की ये नाव बनाई काहे की पतवार, रामा काहे की लगा दी सागर में नैया डाल दियो, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दियो, राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार, वो रामा ज्ञान की लगा दी जंजीर सागर में नैया डाल दियो, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया कौन सखी पाने बैठ नहारे कौन केवल रामा कौन लगा दे बेड़ा पार सागर में नैया डार दियो मैंने तेरे ये भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दियो।
0: क्या बात है, और सच में ये बात तो सही है, अगर हम ईश्वर के भरोसे अपनी नाव छोड़ दें तो डेफिनेटली पार तो लगी जाएगी। और ये फिल्म नहीं है, ये एक तरह से हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है कि अगर हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता है तो एक ऐसा रास्ता है जो ईश्वर की ओर जाता है। ये मैटर नहीं करता कि हमारा ईश्वर कौन है, अगर ईश्वर को में हम विश्वास रखते हैं तो वो रास्ता डेफिनेटली हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ये एक मूवी नहीं, ये होप है। थैंक यू सो मच आशु जी, मजा आ गया, भक्तिमय कर दिया आपने, मजा आ गया। तो आशु जी ने मुझे चांद बताकर बहुत सुंदर सा एक गाना भी सुना दिया और मज़ा आ गया यार, मतलब क्या बताऊं। और सच्ची बताऊं, आजकल ज़माना ऐसा है ना कि मतलब हमें अपना जो रुख है वो बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डिमोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर कोई एक चीज़ ऐसी दिख रही है जो मोटिवेट कर रही है तो भाई उसको थैंक्स बोलो। तो चलिए, ऐसे ही नहीं, इस मूवी ने 2 करोड़ की लागत से 100 करोड़ कमा ली है, अभी कमा रही है और कमाती रहेगी मुझे लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा और गाना, और इस गाने को सुन के कई बार मेरे लिसनर्स ने कहा है बहुत अच्छा है मैम, कभी और फिर से सुना दीजिएगा। तो आज फिर सुना रही हूँ अंदाज़े करम, चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग आरजे बीना के साथ।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
0: अरे सुना?
6: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
7: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

और यार दी गड्डी दे नाल की अगर चुन्नी रंग दी जाए तो फिर यार हमें लगेगा कि हम पेंटर मालूम पड़ेंगे। मिश्रा जी लिखते हैं, मैम मेरी आईडी बंद हो गई है, खुल नहीं रही थी, मैंने नई बना दी। क्या बात है, टैलेंटेड ऐसे ही थोड़े ना मैं कहती हूँ आप लोग। धर्मेंद्र जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? वैसे अभी तो कॉल आए, दो तीन कॉल तो आ गए, अभी बाकी लोग मुझे लग रहा है सो रहे, इंतजार कर रहे हैं मुहूर्त का। वैसे मुहूर्त की बात से मुझे याद आया यार, मतलब आजकल थोड़े बड़े बढ़िया बढ़िया से मुहूर्त चल रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं। जन्माष्टमी था अभी, दही हांडी वाला वो जो था बड़ा अच्छा सा था और मुझे बड़ा मज़ा आता है वो सब देख के। और इधर गणेश चतुर्थी भी आ रही है, बैक टू बैक कई सारे त्यौहार त्यौहार त्यौहार त्यौहार, लेकिन उन त्यौहारों के बीच सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया, यानी कि आरजे बीना के साथ ऑन एयर आके आपने कुछ नहीं सुनाया, तो मतलब आपने क्या ही किया। मतलब कहते ना कि जिंदगी में आए हो तो कुछ तूफ़ानी करके जाओ, और तूफ़ानी करने के लिए तो मैं आपको बुला लेती हूँ हर हर हर दिन। मतलब हर दिन नहीं, मतलब मैं अगर बात करूं हर दिन तो बुलाती हूं तूफ़ानी करने के लिए। आप चैट रूम में तूफ़ानी करते हैं और कुछ लोग ऑन एयर भी करते हैं और कुछ लोग मतलब अपनी कहानियां लिखते गढ़ते हैं और अपने तक ही रखते हैं, ये अपनी अपनी बात हो गई। जुगल जी हमारे साथ हैं, मोहन जी हमारे साथ हैं, गीता जी हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है हमारे साथ। कोई मध्य प्रदेश से है, कोई लखनऊ से है, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से है, कोई त्रिपुरा से है, सब जगह के जितने भी राज्य हैं सबसे लोग सुन रहे हैं, तो सबका दिल से स्वागत है भाई आरजे बीना के साथ। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज आपसे बात करते हुए मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि अगर आप किसी अपने से बात करो तो आपको लगेगा कि हाँ आप लाइफ में कुछ नया कर रहे हो, बिकॉज इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग भागते भागते भागते भागते इतनी इतनी दूर आ चुके हैं कि पीछे मुड़ने का भी टाइम नहीं है यार, पीछे मुड़ के देखने का भी टाइम नहीं है। तो फिलहाल आज मैं कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ के जो कहते हैं ना कि बात कर लेती हूँ, जो कि मतलब आपके लिए स्पेशल हैं, मेरे लिए भी स्पेशल हैं, और उनकी बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि आज उनका हाँ बर्थडे है, बर्थडे। जी हाँ, सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ की भी बात करूँगी जिनके बारे में बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ़िलहाल आज बात करूँगी मैं राधिका आप्टे की। राधिका आप्टे का आज बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे राधिका जी। और आपने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं, बोल्ड मूवीज़ भी दी हैं जिसमें आपने काफ़ी बोल्ड लुक दिया, और चाहे वो हिमेश के साथ रहा हो, चाहे वो एक नॉर्मल अक्षय के साथ रहा हो, आपने मतलब हर तरह के रोल को एकदम अपने अंदर बसा के काम किया है। और साथ ही अभी दो दिन पहले बर्थडे था आपके और मेरे फेवरेट पंकज त्रिपाठी का, और इसी के साथ बैक टू बैक हम सेलिब्रेट करेंगे अपने फेवरेट फेवरेट एक्टर्स का बर्थडे। बट आज तो सिर्फ राधिका की बात करूँगी। राधिका की मूवीज़ की बात करूँ तो राधिका ने अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो राधिका आप्टे के बारे में थोड़ा सा और मैं बताती हूँ कि इनकी जो कहते हैं ना कि लाइफ है वो कैसी रही, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक गई। तो सबसे पहले आप जानिए कि इनका बर्थ जो प्लेस है वो है वेलोर तमिलनाडु में। 1985 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगू बहुत सारी लैंग्वेजेस में फ़िल्में की हैं। इसी के साथ इनकी जो बढ़िया बढ़िया फिल्में रहीं, अंधाधुन काफ़ी फेमस हुई, पैडमैन जिसमें अक्षय के साथ इन्होंने बहुत बढ़िया मतलब अपनी अदाकारी दिखाई, और सेक्रेड गेम्स, लस्ट स्टोरीज़, घोल, मैंने कहा ना कि हर तरह के रूप में इनको आपने देखा होगा। और इन्होंने मतलब किसी भी रोल को ऐसा नहीं ट्रीट किया कि यार ये तो मेरे लिए नहीं बना, इन्होंने हर रोल में अपनी बेबाकी दिखाई, ठीक है। और आज उनका 40वां जन्मदिन है, 40 साल के हो चुकी हैं, और काफ़ी स्ट्रगल भी उन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि उनका करियर एकदम से उनको आसमान की बुलंदियों तक ले गया। स्टार्टिंग उन्होंने की मराठी मूवीज़ से, और उसके बाद सबसे पहले तो फैमिली की बात करूँ तो इनके पापा एक न्यूरो सर्जर है, और पुणे में एक सहाद्री हॉस्पिटल है वहाँ के अध्यक्ष भी रहे। राधिका पुणे में फर्गुसन एक कॉलेज है वहाँ से उन्होंने मैथ्स और इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, और कहते हैं कि 2013 में एक ब्रिटिश म्यूजिशियन बेनेडिक्ट टेलर से उन्होंने शादी की। दोनों की मुलाकात 2011 में लंदन में हुई थी। फिर राधिका ने
कॉन्टेम्प्रेरी डांस सीखा वहीं पे, और उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो वहीं से शुरू हो गई। इसके बाद वो काफ़ी फेमस भी हुई और 2024 में राधिका ने, मतलब कहते हैं ना कि एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। मतलब राधिका अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, कंट्रोवर्सी से अभी बची हुई हैं। स्टार्टिंग में उनकी मूवीज़ को लेके थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी बोल्ड लुक्स को लेके, बट उन्होंने अच्छा काम किया। और करियर की शुरुआत 2005 में फिल्म आई थी वाह लाइफ हो तो ऐसी, इस फिल्म में उन्होंने छोटा सा रोल किया था। फिर इसके बाद में तमिल, हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, मलयालम कई फिल्मों में काम किया, और सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है पैडमैन से और अंधाधुन से, मांझी से भी। अरे यार, मांझी तो वन ऑफ द फेवरेट मूवी, मतलब मांझी द माउंटेन मैन में यही जो है दशरथ मांझी की पत्नी बनी हुई थी। और सच्ची बताऊँ, राधिका आप्टे उसमें बहुत अच्छी लग रही थी, क्या मतलब देहात वाला एकदम रोल इन्होंने एकदम जैसे लगता जिया हो उसको। इसके अलावा अगर बात करें फोबिया में इन्होंने अच्छा काम किया, फिर वेब सीरीज़ आई सेक्रेट गेम्स, लव स्टोरीज़, मोनिका, ओ माय डार्लिंग, इन सब में इन्होंने अपना मतलब 100% दिया। और थिएटर की शुरुआत में इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया, आर्थिक जो प्रॉब्लम थी इनकी, मतलब जैसे कोई भी बच्चा, अब आर्थिक आप सोच रहे होंगे डॉक्टर थी तो इनके पेरेंट्स डॉक्टर थे तो क्या ही दिक्कत आई होगी, नहीं मतलब जैसे एक इंसान अपने इंडिविजुअल जो आर्थिक इंडिपेंडेंस है या कह सकते इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं 24 का हूँ, 25 का हूँ या 21 का हूँ तो मतलब मेरी खुद की कुछ फेस वैल्यू इनकम होनी चाहिए, तो वो नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा सा उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया और उस सपोर्ट के बदले भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो राधिका के टैलेंट को एंजॉय करते हैं और फिल्म पैडमैन से एक गाना सुनते हैं स्पेशली फॉर राधिका आप्टे। और ये गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था, और कोई ऐसी शादियां नहीं है, कोई ऐसी मतलब वो नहीं है जिसने ये गाना बजे ना, आज से तेरी सारी खुशियां मेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया, लाइक

0: खिला तो मैं।
1: फिलहाल ये गाना थोड़ी देर में सुनते हैं, लेकिन अभी जो कॉल है उसको कनेक्ट करते, देखते आवाज़ किसकी है। हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
2: और कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कृपया कर अपना नाम श्रोताओं को बताएं।
2: सुरेश कुमार।
1: सुरेश जी हमारे बहुत प्यारे लिसनर हैं और सबसे ज़्यादा प्यारी है उनकी आवाज़, जिसका इंतज़ार रहता है हर बार। और सुरेश जी पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ हैं या फिर अभी लखनऊ विराज रहे हैं?
2: नहीं, आ गए, आ गए।
1: क्या बात है, तो आज क्या सुनाने वाले हैं आप अपनी मतलब डायरी से, कौन सा गाना सुनाने वाले हैं?
2: एक लाइन है रफी उल्लाह की आवाज में।
1: क्या बात है, क्या बात है, स्वागत।
2: अगर मैं पूछूं जवाब दोगे ये दिल तुम्हेरा मचल रहा है, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे ये दिल तुम्हेरा मचल रहा है, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे

0: मैं अपने हाथों ये बिखरी जुल्फें संवार दूं मैं, ओ हसीन पलकों की छाँव में ये सारा जीवन गुजार दूं मैं। ये दिल की बातें कोई न सुन ले, सनम जमाना बड़ा बुरा है। अगर मैं पूछूं जवाब तो भी, ये दिल क्यों मेरा मचल रहा है। थैंक यू।
1: क्या बात है, और सच में आपने मतलब हर बार ठान रखा है कि वही गाना सुनाएंगे जो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सुना नहीं होगा, और वो गाना शायद हम लोग बार बार अब आगे सुनने वाले होंगे। क्या बात है सुरेश जी, मतलब इस बात का दिल से शुक्रिया कि आप एक गाने को दोबारा नहीं सुनाते, हर बार कुछ नया लेके आते हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया, थैंक यू
1: सो मच। तो भाई आपके दिल में भी कुछ है सुनाने के लिए, कुछ है जो मेरे नाम करना चाहते हैं खुशियां गम आवाज अपनी, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप सुन रहे थे ये गाना राधिका आप्टे के नाम, क्योंकि आज है उनका बर्थडे। तो डायल करना मत भूलिए 6393 34 29, क्योंकि आज है मंडे एंड यस टुडे इज योर डे।

0: वैसे ये गाना भी बहुत अच्छा है राधिका आप्टे का, मनिए साहिब जी ना समझे इशारे, और नैना नवाबी जी, बड़ा अच्छा सा गाना है। फिलहाल अगले कॉल की बारी है, काफ़ी देर से कॉल आ रही है, गाने का ब्रेक था तो ये कॉल ऑन एयर नहीं हुई। चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ, आवाज़ सुनते हैं। हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम। सृष्टि
0: गुड इवनिंग, आपका नाम? ओ सृष्टि, क्या बात है, काफी दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही। कहाँ इनविजिबल हो गई थी आप?
1: मैम, नानी के घर पे चले गए थे। यस
0: कितने दिनों के लिए? कुछ महीनों के लिए?
1: मैम, रक्षा
0: क्यों, ऐसा क्या था नानी के घर?
1: बंधन जन्माष्टमी करके आए हैं, अभी परसों जो आएंगे।
0: बहुत सारे फेस्टिवल एक साथ नानी के घर मना लिए आपने।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो आज आप क्या सुनाना चाहती हैं सृष्टि?
1: मैम, एक शायरी है।
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: आज के इंसान मोबाइल की बैटरी की टेंशन ज्यादा लेते हैं, लेकिन माँ बाप की सेहत की टेंशन कम लेते हैं। लोग रात भर ऑनलाइन रहने का रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन माँ बाप को तो 2 मिनट बात करने का वक्त निकाल नहीं पाते हैं। जब तक माँ बाप जिंदा हैं, उनका मान रखो, वरना पूरी दुनिया की भीड़ में रहकर तुम अकेले रह जाओगे। माँ बाप ही असली भगवान है।
0: क्या बात कही आपने, और सिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई। दुनिया में कोई इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन सेल्फलेस लव अगर हमसे कोई करता है, जो हमसे निस्वार्थ प्यार करता है, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स हैं। क्या बात कही आपने, थैंक यू सो मच सिस्ट्री। और भी कुछ सुनाना चाहती हैं, कहना चाहती हैं?
1: नो मैम।
0: अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसे ही कोशिश करती रही, आपकी जो लिखने की जो आदत है बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लिखने लगी हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा ही लिख रही हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और ये बात मुझे लगता है कि हमें याद करनी पड़ रही है, सुननी पड़ रही है, सुन के याद करनी पड़ी। ये हमारे लिए सोचने की बात है कि हम अपने पेरेंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज कितने ऐसे वृद्धा आश्रम हैं जो ऐसे पेरेंट्स से भरे हुए हैं जिनके बच्चे संपन्न हैं, बस समय के अभाव में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं उनकी सुनने वाली। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए आज अर्जबीना, आपके साथ बात करके बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच,
1: ओके बाय।
0: बाय। तो चलिए आगे हम बात करेंगे आप लोगों से, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सा गाने सुनते रहेंगे। और एक गाना जो कि बड़ा अच्छा सा है, सुनाती हूँ मैं आपको, सुन के बताइएगा कैसा है। वैसे मुझे ये गाना बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा क्योंकि ये है ही इतना अच्छा।

0: हमारे आज चैट रूम में पप्पू दिखाई दे रहे हैं। पप्पू के साथ साथ राहुल, मनी, रिजू, कई सारे लोग एक साथ दिख रहे हैं, पर एक साथ दिखने के वालों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है आज? सभी मुझे लग रहा है कि आज अनशन पे बैठे हैं। अनशन मतलब आवाज का अनशन, जिसमें ये लोग सिर्फ अन्न खाएंगे लेकिन शन यानी कि आवाज नहीं करेंगे। वैसे मैंने आवाज कर करके इतनी ज्यादा आवाज कर दी है कि आप लोग भी इस बात से एकदम ताल्लुक रखने लगे होंगे कि कुछ सुनाने के लिए जरूरी नहीं कि हम कुछ लिख के ही सुनाए, हम कुछ अच्छा सा अपने मन से भी सुना सकते हैं। वैसे आप लोग बताइए कि राधिका आपटे का आज बर्थडे है, आपने कौन सी राधिका आपटे की मूवी देखी? मैंने तो जिनमें से जितनी बताई वो वेब सीरीज को छोड़ के बाकी सारी जितनी मूवीज हैं वो सारी तो मैंने देखी। और अपनी जो बात करूँ तो मुझे अपनी तरफ से मुझे ऐसे एक्टर्स अच्छे लगते हैं जो स्ट्रगल करके अपनी पहचान बनाते हैं और स्पेशली वो हर रोल में अपना 100% देते हैं। राधे राधे नवीन, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका भी। तो चलिए उस गाने को सुन लेते हैं जो इतनी देर से आप लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, इश्क बुलावा। वैसे इश्क बुलावा आए या ना आए, लेकिन हाँ 89.6 FM का रोज सुबह से उलावा रात तक रहता है। ये आओ और हमारे साथ मस्ती करो।
1: यहाँ क्या देख रहे हो? हाँ देखो ना,

कल भाई हम सुनेंगे एक प्यारी सी लव स्टोरी, रियल लव स्टोरी, और करेंगे बहुत सारी बातें आप लोगों से। लेकिन लेकिन लेकिन अगर आप लाइव होंगे तो इस बार की लव स्टोरी आपको बहुत सारी, मतलब कह सकते हैं, होप देने वाली है, ना सिर्फ जीने की बल्कि आपको ये बताने वाली है कि एक इंसान अगर किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो उसके ना होने पर भी उसे इस दुनिया में महसूस कर सकता है। तो इंतज़ार करिएगा कल की लव स्टोरी का, क्योंकि ये लव स्टोरी रियल लव स्टोरी होने वाली है और आपको ये याद दिलाएगी कि आपका लाइफ पार्टनर, आप जिससे प्यार करते हो, आप जिससे बेहद मोहब्बत करते हो, उससे मोहब्बत करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ हो, उसके गैर मौजूदगी में भी आपकी मोहब्बत बरकरार रह सकती है।

तो इसी के साथ आरजे बीना की आवाज भी लगाती है अपने विराम और मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। कल फिर मिलूंगी इसी अंदाज में, करूंगी बहुत सारी बातें होंगी आपसे, और साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि आप भी अपने साथ एक लव स्टोरी लेके आइए। जो लव स्टोरी आपकी हो या किसी और की हो, या आप चाहें तो अपनी लव स्टोरी को अपना नाम टाइटल चेंज करके भी चैट रूम में लिख सकते हैं, और कोई ऐसा भी है जो ऑन एयर सुनाना चाहता है लव स्टोरी, तो प्लीज अच्छे से स्क्रिप्टिंग करके आप ऑन एयर सुना सकते हैं। हाँ, मतलब स्टोरी अच्छे से स्क्रिप्टिंग होगी तभी किसी को समझ में आएगी। हो सकता है कई बार हम लोग स्टोरी को अच्छे से डिक्टेट नहीं कर पाते तो सब लोग समझ नहीं पाते, तो अगर आपके पास है तो कल आप भी सुना सकते हैं। मैं रियल स्टोरी ही सुनाती हूँ हर मंगलवार रिजू, तो इंतजार करिएगा कल की लव स्टोरी का, और सुनते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM या गोंडा शहर की धड़कन स्टेट।

सत्यकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हो ऑब्वियसली रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप सब? हाँ, क्या हाल चाल पब्लिक? सबको चैट बॉक्स में लिख के मुझे आप लोग जरूर जरूर जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हमेशा की तरह हजारों लाखों करोड़ों चांद। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। क्या हाल चाल है लिखो चैट बॉक्स में। लेकिन उसके पहले इस्तकबाल है नवीन राजपूत जेएमपी से, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, नागेश्वर धाकड़ इंडिया से, और इसी के साथ में सोनिया तिवारी, महेंद्र दीपेन राजस्थान से, शमा लखनऊ से, सनी पांडे, जुगल किशोर वर्मा जेएमपी से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, कार्तिक कश्यप गोंडा से, राजू सीतापुर से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग से, उषा कश्यप गोंडा से, निधि सीतापुर से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। धर्मेश त्रिपाठी जी गोंडा से, स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। ओ माय गॉड, तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आज चांद निकला। स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो, रीजू बहुत दिनों बाद आपका स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। स्टे ट्यून, इंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश दोस्तों। तो क्या आप सभी तैयार हैं हमारी आज की पहली फरमाइश को इंजॉय करने के लिए? पहली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना दो रास्ते पिक्चर का। गेस करिए कौन सा, गेस करिए ना, फटाक से, टिक टिक वन, टिक टिक टू, ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ दोस्तों। हम लोग बेशक सुनने जा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा दो रास्ते का गाना, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, और तुमने काजल लगाया दिन में रात हो गई, कुछ ऐसी ही लिरिक्स हैं। सो एंजॉय करते हैं ओल्ड इज गोल्ड नगमा सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तरह मुलाकात हो गई, हम एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बेहतरीन सा, ओ माय गॉड वाला नगमा। लेकिन अगली फरमाइश हमारे पास में है फिर से दिल दहला देने वाले गाने की। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवीय नगर गोंडा से, और उनको सुनना है ओ एन जी वाला गाना। जी हाँ दोस्तों, आएगा मजा अब बरसात का और तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानोल का याग्निक की आवाज में ये हाउ रोमांटिक नगमा, सिर्फ और सिर्फ मोहित की फरमाइश पर, जो कि है मालवीय नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओहो, आई लव दिस सॉन्ग। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। रितेश साहू आपका स्वागत है।

लौट गया। ओह माय गॉड, हमने एंजॉय किया बहुत ही बेहतरीन सा बारिश वाला मॉनसून वाला हाउ रोमांटिक नगमा सिर्फ और सिर्फ मोहित की फरमाइश पर, जो कि है मालवे नगर गोंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए? मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अरविंद फ्रॉम मनकापुर आपका स्वागत है, कुमार राहुल आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। और इसी के साथ में अब इंजॉय करेंगे रीजू की फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, रीजू को सुनना है गाना जुबी डूबी परम्पा नाचे क्यों पागल स्टूपिड मन। और ये पागल स्टूपिड मन क्यों नाचता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पागल स्टूपिड मन को ना हमेशा हमेशा के लिए ऐसी हरकतें करनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू रीजू।

हम एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश बिना बिना बिना बयान बिना किसी देरी के। और हमारे पास में अगली फरमाइश है सोनिया तिवारी की। सोनिया तिवारी को सुनना है गाना हटा सावन की घटा। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नाजिया अंसारी, आपका स्वागत है वो भी दिल से। स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं सोनिया तिवारी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

0: हटा सावन
1: बहुत ही बेहतरीन सा नगमा सलमान खान रानी मुखर्जी का सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सोनिया तिवारी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से और उन्होंने कुछ और भी कहा है। उनका कहना है कि थैंक यू सो मच हटा सावन की घटा आज दिल में खुशियों की बहार है। आज सिंपल की आवाज में ही तो संगीत का प्यार है। आपकी प्यारी प्रस्तुति ने दिल को छू लिया है। दिल से शुक्रिया आरज सिंपल, आपने शाम को खूबसूरत बना दिया। आप ही लोग तो आते हैं, आप लोग आते हैं, आप लोग के साथ में हम शाम को खूबसूरत बनाते हैं। जितने लोग आते जाओगे उतनी ही महफिल और भी खूबसूरत बनती जाएगी, क्योंकि उतने ही जज्बात मिलते जाएंगे, उतने ही लोग मिलते जाएंगे, उतने ही कनेक्शंस होते जाएंगे, यू नो ना। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है सनी पांडे की। सनी पांडे को सुनना है गाना उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियां से पूछो, इन हवाओं से पूछो, उनसे क्यों पूछना है। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना साधना सरगम की आवाज में संग्राम पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ सनी पांडे की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। लेकिन उनसे क्यों पूछना है, आप अगर हमसे प्यार करते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाना चाहिए ना कि सामने वाला हमसे कितना प्यार करता है। बादल थोड़ी बताने जाएंगे, घटा थोड़ी बताने जाएंगे, हवाएं थोड़ी बताने जाएंगी। फिलहाल अपना अपना ओपिनियन, यू नो, स्टे ट्यून्ड।

इंजॉय किया है सनी पांडे की फरमाइश पर। ये बहुत ही खूबसूरत सा लव वाला डब वाला गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास ले है आशु मिश्रा जी के लखनऊ से। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है। गाना है हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। सो एंजॉय करते हैं मनहार उदास आनंद कुमार और कंचन की आवाज में कुर्बानी का ये गाना। ओल्ड इज गोल्ड नगमा हमारी आशु जी के पास।

चाहते हैं ऐसे। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मन्हार उदास आनंद कुमार और कंचन की आवाज में कुर्बानी पिक्चर का। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और दोस्तों जानते हैं अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश हमारे पास में है नवीन राजपूत जी की एमपी से। और नवीन राजपूत जी को एमपी से सुनना है गाना प्रेम रतन धन पायो का टाइटल सॉन्ग। ओह माय गॉड, एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा। हर एक शादी फंक्शन मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले भी अधूरा था और आज भी अधूरा रहता है बिना इस गाने के। से एंजॉय करते हैं नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आवाज है पलक मचल की। स्टे ट्यून्ड।

बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नवीन राजपूत की फरमाइश पर जो की है एमपी से, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले कुछ कहना चाहूंगी। आज पूरी महफिल में चुप थी, लेकिन अब चुप रहने का मन नहीं कर रहा है दोस्तों। बहुत फरमाइशी गीते बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक हमने एंजॉय कर ली ना, अब कुछ मेरी बकबक को तो सुनना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलता है ना दोस्तों। हाँ। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद तो करो ना। अर्ज किया है, मिजाज मेरे थोड़े सख्त दिखाई देंगे, मिजाज मेरे थोड़े सख्त दिखाई देंगे, सामने झुके कई तख्त दिखाई देंगे, जब सब किनारा कर ले तो बताना, जब सब किनारा कर ले तो बताना, हम सिर्फ बुरे वक्त में दिखाई देंगे, मेरी शाखें काट कर फेंक दो यहाँ वहाँ, मेरी शाखें काट कर फेंक दो यहाँ वहाँ, हर तरफ मेरे ही दरख्त दिखाई देंगे, मैंने सच बोलकर दुश्मन कमाए हैं, मैंने सच बोलकर दुश्मन कमाए हैं, अगर झूठ बोलूं तो कई भक्त दिखाई देंगे। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से, और उनको सुनना है पंजाबी बीट्स वाला गाना। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट पंजाबी सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर डुपर डुपर हिट गाना जिसके हर एक स्टेंजे में प्यार है और हर एक स्टेंजा ट्रेंडिंग है सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। और उनका कहना भी कुछ है, उनका कहना है, एक सेकेंड, धर्मेश त्रिपाठी का कहना है, दिल की एक छोटी सी चाहत को आपने अपना बना लिया, मेरी फरमाइश को अपनी आवाज से और भी खास बना दिया, कुछ पल के लिए जैसे हर खुशी करीब आ गई, आज सिंपल जी आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दिल जीत लिया। सो थैंक यू सो मच। और आपकी इस फरमाइशी गीत को सुन के मुझे भी कुछ याद आ रहा है, मैं जरूर बोलूंगी लेकिन इस फरमाइशी गीत के बाद में। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है रौनक तिवारी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना बोलो इतने दिन क्या किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। रामलखन पिक्चर का ये गाना एंजॉय करते हैं मनहार उदास और अनुराधा जी की आवाज में सिर्फ और सिर्फ रौनक तिवारी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

लिया, तुझे याद किया, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना। बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। ये तो फरमाइश हमारे पास में आई बीती दोस्तों रौनक तिवारी की तरफ से, जो की है गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी खट्टी मीठी आरजी सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों शिवम सिंह की गोंडा से, उनको सुनना है यो यो हनी सिंह का गाना गबरू। सो एंजॉय करेंगे ये पंजाबी सॉन्ग, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि दिल तोड़कर दिल का हाल पूछता है, ये आवारा पाते क्या कमाल पूछता है, कुछ दर्दे पीड़ा में डालकर मलाल पूछता है, ये धोखेबाज इंसान देखो मेरी चाल पूछता है, मुझे गुनाहगार साबित करके खुश हो रहा है, नया आशिक किसको बनाया ऐसे सवाल पूछता है, दगाबाज इंसान आंसू देकर देखो आंखें क्यों हैं लाल पूछता है, दिल तोड़कर दिल का हाल पूछता है, ये आवारा बातें क्या कमाल पूछता है। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है, पेट पूजा करके आना दोस्तों, क्योंकि पेट भरा रहता है तो दिल अपने आप खुश रहता है।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम

0: राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई है, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
2: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही।
6: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
1: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने के 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्यनिकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपना

0: हुए पूरी दिल्ली में पांचवीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
5: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
6: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
5: देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ बजट।
0: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों की परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

again. Welcome back in your super mahishi with your just simple who is not so simple or aap sun rahe hain radio gyanasthali 89.6 fm gonda shehar ki dhadkan stay tuned everyone. तो कहना है कि खामोशी से जब तुम भर जाओगे थोड़ा सा चीख लेना वरना मर जाओगे। खामोशी से जब तुम भर जाओगे थोड़ा सा चीख लेना वरना मर जाओगे। हर वक्त मुस्कुराने का दिखावा करोगे तो आईने से खुद को कैसे बचाओगे। उम्मीद अगर बस कल पर टिकी होगी तुम्हारी, आप सभी की उम्मीद अगर बस कल पर टिकी होगी तुम्हारी, तो आज को जीना भी भूल जाओगे। लोग कहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर किस दिन ये गिनते गिनते थक जाओगे। बहुत ही प्यारी सी लाइंस थी, बहुत ही उम्दा लाइंस थी। इसको हर एक इंसान अपने आप से रिलेट कर सकता है, क्योंकि हर एक इंसान आजकल किसी ना किसी बात को लेके परेशान जरूर है। और अगर कोई परेशान है सो उसकी परेशानी को सुनने वाले बहुत होंगे, लेकिन सुनते होंगे एक कान से निकाल देते होंगे दूसरे कान से। क्यों, सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है रोशनी रावत की उन्नाव से। उनको सुनना है गाना दिल परदेसी हो गया। पहले दिल परदेसी हो जाता है, फिर अपना दिल ढूंढते रह जाओ भैया, नहीं मिलता है। इसलिए दिल को परदेसी होने के पहले रोक लो, थोड़ा सा समझा लो, फिर उसको परदेसी होने देना। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में रोशनी रात की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, आई मीन नमस्ते, राजेश कुमार सिंह जी मालवीय नगर गोंडा से आपका स्वागत है। सविता दुबे जी गोंडा से आपका स्वागत है। नमस्ते, स्टे ट्यून्ड।

अग्नि की आवाज में सिर्फ और सिर्फ रोशनी रावत की फरमाइश पे बढ़ते हैं हमारे आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। नाउ लेट्स गो टू मिस्टर ऑप्टिकल गोंडस अजय मिश्रा की डिमांड की तरफ और उनकी फरमाइश है, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में 90s का रोमांटिक सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ अजय मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

भाई खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, हम इंजॉय किया है ये हाउ रोमांटिक नगमा, वो भी 90s का सदा बहार नगमा, सिर्फ और सिर्फ मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से। अजय मिश्रा की फरमाइश पर बढ़ते हैं हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। फरमाइशें बहुत हैं और वक्त बहुत कम है मेरे मित्रों। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों अरविंद की मनकापुर से, और अरविंद को मनकापुर से सुनना है गाना ताकि ताकि। हाँ, सो एंजॉय करेंगे डीजे स्नेक का ये गाना, और इसी के साथ में नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि मत देख नफरत की निगाहों से हमें, मत देख नफरत की निगाहों से हमें, ये वही चेहरा है जिसे तूने कभी टूट कर चाहा था। अच्छा, सो एंजॉय करते हैं ये गाना, और मुझे नागेश्वर धाकड़ से बस यही कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई क्यों। सो एंजॉय करते हैं अरविंद की फरमाइश पे ये गाना, और अरविंद है मन का पुरस्कार। स्टे ट्यून्ड। आई लव दिस सॉन्ग।

कुमार की मनकापुर से। बढ़ते हमारे आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की। एंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश। और इसी के साथ में ये फरमाइश आई भी है अंकित कुमार की तरफ से, जो कि है गोंडा।

हमने एंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सनंगमा वेलकम पिक्चर का अंकित कुमार और नागेश्वर ठाकुर की फरमाइश पर बढ़ते हमारे आज के लिए फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की, राजस्थान से। उनको सुनना है गाना दिल को जरा सा आराम देंगे। सो एंजॉय करेंगे ये गाना हम महेंद्र की फरमाइश पे। इसी के साथ में महेंद्र का कहना है कि रिश्ते वही खूबसूरत हैं जो दिल से निभाए जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपनों की यादों में मुस्कुराते हैं। फासले मिट जाते हैं जब नीयत सच्ची हो, वरना पास रहकर भी लोग अजनबी बन जाते हैं, और मैंने बहुतों को अजनबी होते देखा है। स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं महेंद्र की फरमाइश।

पक्ष थी महेंद्र की, बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है हमारे बहुत ही प्यारे से मुमताज अंसारी जी की तरफ से, जो की है गोंडा से। मुमताज अंसारी जी को सुनना है गाना तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। इंजॉय करते हैं ये गाना, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। So, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल को नहीं मिस करना है, बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल फिर से आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

रात कहते हैं कि जितनी गहरी होती है दिल उतना ही साफ सुनाई देता है। और देखिए ना, रात गहरा चुकी है और दिल की आहट जो है वो साफ सुनाई देने लगी है। इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके फ्राइडे स्पेशल शो बहारे गजल में आपके अपने आरजे अदनान। दिन भर की भागदौड़ में हम जिंदगी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर उसे बुलाने की सोचा है आपने? अच्छा, कैसे बुलाया जाए? ये तो एक बड़ा सवाल है कि भागती दौड़ती जिंदगी में किस तरह से इस जिंदगी को थमकर बुलाया जाए। तो शायद इसके लिए एक गजल बेहतर है। जी हाँ, एक ऐसी गजल जिसमें जिंदगी को बुलाया जा रहा है, वो भी थम कर रुक कर। तो जाहिर है ये भागते दौड़ते दिन भी थम जाते हैं जब हम कुछ ऐसा सुनते हैं। अब जो हम नगमा सुनने जा रहे हैं वो दरअसल एक दावत है। किसकी दावत? खुले दिल की दावत। जी हाँ, दरअसल फिल्म दूरियां का ये जो गीत है जिसके अल्फाज लिखे हैं लफ्जों के जादूगर गुलजार साहब ने और जिसे अपनी मखमली आवाज से सजाया है भूपिंदर सिंह और अनुराधा पौडवाल जी ने। जी हाँ, दरअसल इस खूबसूरत सी गजल की अगर बात करें, इसके अशार की बात करें, तो कुछ यूं है कि मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है। मतलब इस तसव्वुर की जरा बात तो सोचिए, न दरवाजा न दस्तक न दीवारें न छत, यानी ये घर कोई मकान नहीं है, ये घर दिल है जहां मोहब्बत मिलती है। और कहते हैं कि बड़ी धूप है दोस्त, खड़ी धूप है दोस्त, बस तेरे आंचल का थोड़ा सा साया मिल जाए तो जीना आसान हो जाए। दरअसल ये गजल कहीं ना कहीं एक ऐसा नजरिया पेश करती है जो हम एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि एक एटीट्यूड होता है, एक हमारा बिलीफ होता है, वो हमको मिलता है इस खूबसूरत सी गजल में। तो आइए खूबसूरत सी गजल भूपिंदर साहब की आवाज में आपको, आप तक इससे मिला देते हैं।

नवाबों के शहर लखनऊ में एक परिवार में 24 फरवरी 1924 को जन्मे और कहीं ना कहीं मौसिकी को लेकर के उनका झुकाव और उनके रूढ़ीवादी परिवार ने स्वीकार नहीं किया गाना बजाना। फिर भी उन्होंने अपनी जुनून को पूरी लगन से आगे बढ़ाया और मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक यानी भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में पंडित एस सी आर भट्ट से कहीं ना कहीं मौसिकी यानी गायन की ट्रेनिंग ली। इसके बाद महज 16 साल की छोटी सी ही एज में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू किया। हम बात कर रहे हैं दरअसल तलत साहब की। जी हाँ, तलत साहब बहुत लकी थे कि उन्हें महान संगीत निर्देशक अनिल बिस्वास साहब का संरक्षण मिला था, जिन्होंने आरजू जो कि 1949 में आई थी उसमें ब्रेक दिया और तलत की ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो ने सुनने वालों को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया। तलत साहब अपनी अनूठी शैली यानी अपनी अपने अंदाज से अपनी आवाज से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही जगह बनाई थी। उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की और उनकी खूबसूरत सी मीठी सी आवाज जिसमें एक खास तरह की झंझनाहट थी इसने धीरे धीरे बहुत लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। तलत महमूद साहब ने लिखे हर शब्द में अपने दिल को खोल कर रख दिया और उनका इस गजल को हीरो की तरह चमकती थी। वो दिलीप कुमार की आवाज थे जिन्होंने ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल इस गजल में एक कहीं ना कहीं त्रासदी को साकार किया और बाद में मेहंदी हसन और जगजीत सिंह साहब जैसे दिग्गज गजल गायक ने गायक बनने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो तलत महमूद के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: इतनी खूबसूरत सी आइकॉनिक गजलों को सुना तो ख्याल तो बहुत सारे आए। एक ख्याल आया, एक खूबसूरत सी गजल जो आप अगली गजल सुनने वाले हैं, जिसकी लाइन कुछ इस तरह है, मुद्दत हुई। जी हाँ, दरअसल मुद्दत हुई मोहम्मद रफ़ी साहब के ज़रिए गाई गई एक बेहद खूबसूरत सी गज़ल है, जिसे शाम गज़ल जैसी एल्बम्स में सराहा गया। ये एक रूहानी और क्लासिकल गज़ल है जो रफ़ी साहब के खूबसूरत से अंदाज के लिए जानी जाती है और इसको एक मास्टरपीस माना जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब के ज़रिए गाया गया और खय्याम साहब के ज़रिए इसमें म्यूज़िक दिया गया। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, और एक ऐसा नाम जिसको पूरी दुनिया जानती है, यानी मिर्ज़ा ग़ालिब साहब, उनका लिखा है। अगर इसके अंदाज की बात करें तो यादों के जो मेले होते हैं और जुनून को उसके खोए हुए दौर की जो तड़प है, वो इसमें शामिल है। इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआती पंक्ति में मुद्दत हुई है यार को महिमा किए हुए, इसका अगर हम मायने जानने की कोशिश करें तो अपने खास को मेहमान की शक्ल में नवाजे हुए एक अरसा बीत गया। यानी ये उस इंस्पिरेशन और उस मोहब्बत के सूखे की ओर तरफ इशारा करता है, जिसका सामना आज में हमारी रूह कर रही है। करता हूं जमा फिर जिगरे लख्त लख्त को, यानी मैं अपने टुकड़े टुकड़े हुए दिल को फिर से समेट रहा हूं और खुद को फिर से जोड़ने को। कहीं ना कहीं ये लाइन दिखाती है, ये बताती है कि बहुत गहरे दुख में भी मिजगां की दावत, यानी कि प्रिय की पलकों का निमंत्रण, सामना करते हुए खुद को फिर से तैयार करने का एक सचेत प्रयास है, एक कोशिश है। अतीत बनाम आज, ये गजल एक शानदार अतीत और एक उजाड़ आज यानी वर्तमान के बीच एक खट्टे मीठे फर्क को टटोलती है। यह सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं, बल्कि उस अस्तित्व की, उस अवस्था के बारे में है जब इंसान जुनून और जज्बात से जिंदा था। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल, मुद्दत हुई।

यूं तो गजल अपने आप में ही बड़ी ही खास होती है, और जब बात उन आइकॉनिक गजलों की हो जिसको हमेशा आप सुन करके जिंदगी के एक बहुत अहम पहलू से रूबरू हो जाएं, तो फिर क्या ही कहने। कहीं गजल में जिंदगी है तो कहीं जिंदगी का बड़ा गहरा सा जख्म भी उजागर हो जाता है इन गजलों में। ये गजलें हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती हैं, और कई बार इस हद तक आ जाती हैं हमें कि शायद हम सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल आज की ये आइकॉनिक गजलें आपको कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ गजलों को सुनते रहिएगा, क्योंकि गजल आपकी अपनी जुबानी भी बन जाती है कई बार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सब के साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जस बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी उस मोड़ से। वंदना पीजी से निकलकर बाहर रोड पर आ गई। मोबाइल में टाइम देखा, 8 बज रहे थे। मेट्रो स्टेशन पहुंची तो देव को देखकर चौंक गई। तुम इतनी जल्दी आ गए? जवाब में देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम भी तो समय से पहले आ गई हो। वंदना के मुंह से निकला, कल संडे था, कहां रही? देव ने पूछा। कहीं नहीं, वंदना बोली। आज कहीं जाना है शाम को? देव ने पूछा। नहीं, वंदना बोली। तो चलें कहीं? देव ने फिर सवाल किया। नहीं, वंदना ने मना कर दिया। क्यों? देव, बताना जरूरी तो नहीं है? वंदना उसके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती थी। उसे अचानक पता नहीं क्या हो गया था। कल तक तो बहुत खुश थी। देव के बारे में सच जानकर कहीं उदासी फैल गई थी। देव भी हैरान था कि आखिर अचानक क्या हो गया, चेहरा मुरझाया सा क्यों लग रहा है। तभी ट्रेन आ गई, भीड़ अंदर समा गई। एक मिनट में ट्रेन चल भी दी। अंदर घुसने पर गर्मी से राहत मिली। वंदना की चोर नजरें देव को तलाश रही थीं। बैठा होगा किसी कोने में। वैसे भी कल की देवकी से हुई मुलाकात का उस पर मिश्रित असर हुआ था। सिर झटक कर सामने नवविवाहिता को देखने लगी। लड़की गहरे लाल रंग के पंजाबी सूट में थी। उसने खूब गहरा मेकअप लगा कर रखा था। मांग सिंदूर से लाल थी। उम्र 23-24 के पास थी। वैसे इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। जब वो इस उम्र में थी तब उसके जीवन में अमित आया था। तब वो मुंबई में थी। अतीत खिसक कर आगे आ गया था। अमित का छरहरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, उस पर दूधिया रंग, लगता था कुदरत ने फुर्सत में बनाया है। अमित की उम्र उस वक्त कोई 26-27 साल रही होगी। वो एमकॉम कर रहा था। उसका सुदर्शन चेहरा आज तक यादों में बसा था। यूं ही मेट्रो में मुलाकात हो गई थी। उसका हेलो कहना मन के अंदर ऐसा उतरा कि मेट्रो में लोग पहचान गए कि वो दोनों कहां खड़े होकर बतियाते हैं। वो और अमित रोज मिलते, खूबसूरत बातें करते। खुशी के बीच एक ही अफसोस होता कि ये संडे क्यों आता है। वो खिलखिलाते चेहरे, लोगों का उन्हें प्यार से एक दूसरे के साथ बात करना, देखते हुए मुस्कुराना, कितना मादक था सब कुछ। दोनों को लगता आसमान के परिंदे भी ढली शाम में उन्हें प्यार करते देख खुश होकर आवाज कर रहे हैं। दोनों को लगता वो भी परिंदों के साथ अनंत आकाश की अंतहीन यात्रा में शामिल हैं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है उस मोड़ से। अब तक आपने सुना, उस दिन वंदना बहुत बेचैन थी, शायद देवकी के मिलने के बाद से। वो देव से सीधे मुंह बातें भी नहीं कर रही थी। ट्रेन में बैठी तो उसे अपना अतीत याद आने लगा, जिस अतीत में अमित था। अब आगे वंदना को अच्छी तरह याद है, काम से छूटते ही भागती थी लोकल पकड़ने को। प्लेटफॉर्म के बाहर अमित उसका इंतजार कर रहा होता था। लगता बरसों से वो ऐसे ही यहां खड़ा है सिर्फ उसके लिए। मुस्कुराते हुए कहता कि चलो बटाटा वड़ा खाते हैं, एनर्जी चाहिए हम दोनों को। वो मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ती और फिर ऑर्डर दे देती कि भैया दो बटाटा बड़ा तीखी मिर्ची के साथ। तब वंदना एक शोरूम में सेल्स गर्ल थी। एक दिन वो नहीं आया। आंखें बार बार प्लेटफॉर्म पर ढूंढती, क्या करे किससे पूछे, फोन किया कोई जवाब नहीं, स्विच ऑफ। दिल थक थक करने लगा, जैसे रेल का इंजन चल रहा हो। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन और कितने ही दिन। बेमन से काउंटर पर खड़ी ड्रेसेस खोलती लपेटती रहती, बार बार मिस्ड कॉल देखने को मोबाइल चेक करती। सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा था हर जगह। 3 महीने निकल गए यूं ही अकेली सड़क पर चलती जाती, जैसे रेगिस्तान में नदी ढूंढने चली जा रही हो अंतहीन यात्रा पर। कभी सोचती कि पता तो जरूर लेना चाहिए था, कैसी बेवकूफ है वो, जैसे इस कदर चाहती थी उसका पता ठिकाना तो पूछना चाहिए था। वंदना की दशा देखकर एक दिन शिल्पा ने कहा, ये मुंबईया प्यार है और वो भी इस उम्र का, ये तो ऐसा ही होता है। थोड़ा होश आने पर लगा कि शिल्पा ठीक कहती है, उसकी खुशियों की चाबी गुम हो गई थी, कब कहां मिलेगी कौन जाने। घर में बीमार पिता थे, माँ थी, 2 छोटी बहनें और 1 भाई। वंदना घर में सबसे बड़ी थी, घर का खर्च वही चलाती थी। आर्थिक मजबूरी के कारण इंटर के बाद नौकरी करनी पड़ी थी। बहनों ने भी पढ़ाई अधूरी छोड़कर नौकरी कर ली थी। वंदना 24 पार कर चुकी थी, सोचती थी माँ पिता उसकी शादी की बात चलाएंगे, लेकिन घर में इस बात को लेकर कभी कोई हलचल नहीं हुई, किसी का कोई पैगाम नहीं, रिश्ते के नाम पर सन्नाटा छाया रहा। सोचती कभी किसी रिश्तेदार ने फोन भी तो नहीं किया। वंदना अब भी अमित के इंतजार में कई बार उस रूट पर चली जाती, 3 साल पहले की तरह। ट्रेन में बैठती तो आंखें अमित को ही ढूंढती, वो पहला प्यार था उसका। फिर एक दिन उसकी मुलाकात अनिकेत से हुई, पास के चौल में ही रहता था। वो ज्यादा सुंदर नहीं था, ठीक ठाक था। दोनों का एक ही रास्ता था, प्यार का भी एक ही रास्ता होता है। नजदीकियां बढ़ने लगी, दोनों अक्सर बाजार में साथ साथ होते। एक रोज छोटी बहन मीना ने देख लिया और फिर अम्मा को बता दिया। अम्मा झोली पसार के वंदना के आगे खड़ी हो गई, रहम कर बेटा, पहले इन छोटी बहनों का बेड़ा पार कर दे, तू चली गई तो कौन हमारा खर्चा उठाएगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है उस मोड़ से। अब तक आपने सुना वंदना देवकी से मिलने के बाद से देव से कटी कटी हो गई थी और उस दिन उसे अपने पहले प्यार अमित की बहुत याद आ रही थी, जो एक दिन अचानक नहीं आया और फिर कभी नहीं आया। अब आगे प्यार के सभी बिंब भरभरा कर ढह गए। समझ गई रेगिस्तान में फूलों की बगिया लगाना मना है, या फिर वो खुद ही सूखा ठूठ है जिस पर प्यार के पंछी के बैठने की मनाही है। उसे लगता प्यार के मेले उसके लिए नहीं लगे। वंदना की दशा उस बच्चे जैसी हो गई थी जो मेला खत्म होने के बाद खाली डिब्बों में कुछ ढूंढता है और फिर कुछ ना मिलने पर डिब्बे पर गुस्सा निकालता है। लेकिन वंदना नहीं जानती कि वो रूठे भी तो किससे, गुस्सा निकाले तो किस पर, इन रिश्तों पर गुस्सा करे जिन्हें आंख बंद करके ढोई जा रही है और रिश्तों के भविष्य की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। नहीं, अपने बारे में उसे खुद ही सोचना होगा। बहुत सोचने के बाद उसे ये समझ में आया कि उसे ये जगह ही छोड़ देनी चाहिए, यानी दूसरी जगह नौकरी ढूंढनी चाहिए। पर थोड़ा इंतजार करना पड़ा। 2 साल में उसका नंबर आया और वो भी दिल्ली में। खुश थी वो, बहुत खुश थी कि इस घुटन से छुटकारा मिलेगा, अब उसका अपना आसमान

सी गंभीरता थी। वो कम बोलता था। सबसे बड़ी बात, वो स्त्री पुरुष के बीच खींची गई लक्ष्मण रेखा को बखूबी पहचानता था। दोनों अक्सर मिलते, हर दिन मिलते, और फिर दोस्ती लंबी होती गई। पहले खोए प्यार की कहानी भी देव से शेयर की थी वंदना ने। इतने लंबे समय ने वंदना को खूब मांझा था और पीड़ा ने व्यसक बना दिया था। अब वो पहले वाली वंदना नहीं थी। आगे कुछ भी कदम उठाने से पहले खूब ठोक बजा कर देखती थी। देव के घर का पता उसकी सहेली शिल्पा ने लाकर दे दिया। शिल्पा ने ही बताया कि देव तलाकशुदा है। मुझे पता है शिल्पा, मुझे ये भी पता है कि देव का परिवार मध्यम वर्गीय है, पर हमारा परिवार भी कौन सा अमीरों का परिवार है। बस देव की पत्नी से एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं उसी के मुंह से सारी कहानी साफ साफ और सच क्या है सुनना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। सब मुश्किल है, पर शिल्पा ये जरूरी भी है। शिल्पा को वंदना की बात ठीक लगी। देव की पूर्व पत्नी से मिलकर ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। खाली देव का ये कह देना कि मैं तलाकशुदा हूँ काफी नहीं है। जल्दी देव की पूर्व पत्नी का नाम, पता, कहाँ काम करती है और फोन नंबर वगैरह सब कुछ शिल्पा ने पता कर लिया। साथ ही देव के बारे में भी सारी डिटेल पता कर ली।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है उस मोड़ से। अब तक आपने सुना वंदना को घर की जिम्मेदारियों के चलते शादी करने के लिए उसकी माँ ने रोक दिया और उसे लगा कि उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेने होंगे। फिर उसकी जिंदगी में आया देव, पर देवकी से मिलने के बाद से वंदना उससे भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। अब आगे उसे लगा कि शादी के लिए हाँ करने से पहले एक बार देव के घर वालों से भी जरूर मिल लेना चाहिए। एक रोज वंदना ने उसका नंबर मिला दिया। आप देवकी बोल रही हैं? हाँ, उधर से जवाब आया। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? जरूर, पर आपका नाम? मैं वंदना हूँ। कोई खास काम है क्या? देवकी ने पूछा। वो तो मिलकर ही बताऊंगी, वंदना ने धीरे से कहा। ठीक है, मिलते हैं। कहाँ? मेरा ऑफिस नेहरू प्लेस में है, वहीं पास के रेस्टोरेंट में। ठीक है, आज ही शाम 6 बजे आती हूँ। ठीक है। बिना किसी लाग लपेट के वंदना असली मुद्दे पर आ गई थी। मैं आपसे देव के बारे में जानना चाहती हूँ। कौन देव? आपके पूर्व पति देव? हाँ, देवकी शायद इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी कुछ सोचने लगी कि ऐसे प्रश्नों का सामना तो उसे करना ही था एक ना एक दिन। जब तलाक लिया है तो उससे जुड़े प्रश्नों से कैसा डरना। फिर बोली, बोलिए क्या जानना चाहती हैं आप? आप गुस्सा तो नहीं होंगी? वंदना ने बड़ी हिम्मत करके कहा। वो उसके मूड को समझना चाहती थी। नहीं, कतई नहीं, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। वैसे देव से शादी करना चाहती हैं तो उसके तलाक वगैरह के बारे में जानना तो जरूरी है। वंदना अवाक सी उसके चेहरे को ताक रही थी। उसने कुछ रुक कर सामने रखे ग्लास से पानी पिया, फिर बोली, हमारा रिश्ता टूटने के कई कारण थे। देवकी बिना किसी भूमिका के असली बात कहने लगी। हमारे बीच हुए झगड़े में कौन गलत था कौन सही, आज भी ये मेरी समझ से परे है। वो फिर बोली, सुना है देव आजकल ज्यादा पीने लगा है, यहां तक कि अपना आपा तक खो देता है। तुम तो सब जानती होगी। यानी देवकी देव के बारे में सब जानती थी और अब भी देव के संपर्क में थी। इस तरह की प्रश्न की आशा वंदना ने नहीं की थी। देवकी बोल रही थी, सच कहूं तो देव पहले ऐसा नहीं था। मैं आज भी उसका प्यार और दोस्ती नहीं भूलती हूँ। हम दोनों के ही परिवार एकदम साधारण थे। देव की तनख्वाह भी कुछ खास नहीं थी। उस वक्त देव के परिवार में जिम्मेदारियां थी और उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो अभी शादी करे, पर मेरी जिद के आगे उसने घुटने टेक दिए और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। देव के मम्मी पापा को बहुत बुरा लगा। मुझे लगा था मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन मेरी सोच और प्रयास सूखे पत्तों की तरह उड़ गए। मैं परिवार से कटती गई और परिवारजन मुझसे दूर होते गए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है उस मोड़ से। अब तक आपने सुना, वंदना देव से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पहले वो उसकी पूर्व पत्नी से मिलकर सारी सच्चाई साफ साफ जान लेना चाहती थी। अब आगे, शायद मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं सिर्फ देव को अपने साथ देखना चाहती थी, जबकि देव अपने साथ पूरे परिवार को लेकर चलना चाहता था। अब तो छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे बीच झगड़े होने लगे और मेरी स्वार्थी सोच ने हमें कानून की ड्योढ़ी पर लाकर पहुंचा दिया। तुम देव से शादी करना चाहती हो? उसने पूछा। वंदना ने हाँ में सिर हिला दिया। देवकी बोली, मेरी माँ कहती थी ससुराल के सभी रिश्ते बाहर से बने रिश्ते होते हैं। इन्हें उड़ने के बाद इन्हें अपनाने के लिए न जाने कितने समझौते करने पड़ते हैं। यहाँ हर सदस्य को जोड़ने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को गांठ बांध लो। तुम एक समझदार और साहसी स्त्री हो। देव के साथ जीवन शुरू करने का सूत्र तुम्हें दे दिया है। निर्णय तुम्हें ही लेना है। वैसे देव बहुत संजीदा व्यक्ति है। वंदना उससे मिलकर आ गई, लेकिन इस मुलाकात के बाद वो अपने को अस्थिर महसूस करने लगी। देवकी वहीं बैठी थी, तभी उसने देखा कि वंदना अपना मोबाइल वहां पर भूल गई है। जानती थी थोड़ी देर में फोन जरूर आएगा, इसलिए बैठी रही। वो सोच रही थी कि जो बातें उसने वंदना को बताई वो खुद उसे समझ में क्यों नहीं आई। क्यों नहीं समझ आया कि रिश्तों को मजबूती से पकड़े रहने के लिए झुकना पड़ता है, निभाना पड़ता है। आज वंदना को समझा रही है तो खुद भी तो झुक सकती थी। भारी मन से घर आ गई, पर सोचने पीछा ना छोड़ा। दो दिन बाद फोन लेने के लिए वंदना का फोन आया। वो दोनों दोबारा मिली। इन दो दिनों में देवकी ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। वो वंदना से बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। वंदना ने कहा, हाँ बोलो। मैं देव के पास वापस जाने का निश्चय कर चुकी हूं। वंदना जैसे सोते से जागी। देवकी की आंखें उसके चेहरे पर गड़ी थीं। कभी कभी शब्द भी कितने लाचार और निरीह लगते हैं, देवकी सोच रही थी। मगर कहना तो था ही, यूं भी किसी को अंधेरे में रखना उसके लिए नामुमकिन था। सच स्वीकार कर किसी के आगे कह देना दीर्घकाल में सुखदाई होता है। मन की बात कहने के बाद वंदना का चेहरा देखा, अथक पीड़ा थी वहां, जैसे रुके हुए आंसू अब गिरे कि अब। देवकी वंदना को देख नहीं पा रही थी, मुंह घुमा लिया। वंदना वो सन्न थी, लगा जैसे किसी ने उसके हाथों से अमृत कलश छीन लिया। एक बार, दो बार और ये तीसरी बार भी, अब कितनी बार। इस बार तो उसने पूरी सावधानी बरती थी, फिर भी वो वहां से बाहर आ गई। आंखें आसमान की तरफ उठी थी, वहां तो ढेरों बादल थे, शायद आंधी आने वाली थी। वंदना वहां से उठी और वापस आ गई। एक हफ्ते बाद देवकी को एक ईमेल मिला। देवकी, वापसी मुबारक, तुमने सही निर्णय लिया। तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत संवेदनशील और भावुक हो गई थी, लेकिन जल्द ही मुझे विश्वास हो गया कि देव और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, जबकि मेरा प्यार उसके आसपास भी नहीं।
सच कहूं शायद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं हमदर्दी थी। सच में वो तुम्हें छोड़कर कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। मैं खुश हूं कि तुम दोनों ने अपना प्यार वापस पा लिया। तुम दोनों आज भी उसी मोड़ पर खड़े थे जहां तुम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा था। पढ़कर देवकी मुस्कुरा दी और फिर उसी वक्त उत्तर दिया, वंदना घर वापसी का क्रेडिट मैं तुम्हें देती हूँ। इस वक्त मैं देव के घर पर हूँ और देव मेरे हाथ की बनी चाय पी रहा है। तुम्हारे दोस्त देवकी और देव।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी उस मोड़ से। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: कहीं दोस्ती की वफा है तो कहीं सत्यम शिवम का शोर, इनके बिना हर महफिल अधूरी, हर साज लगता है बेनूर।
2: मेलोडीन की वो प्यारी तान और वायलिन का वो मीठा शोर खींच ले जाता है हमें फिर से बीते सुनहरे दौर की ओर। एक लक्ष्मी की धुन तो दूजे प्यारे का सांझ निराला था, इन्होंने तो हर टूटते दिल को अपने संगीत से सवारा था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: तो चलते हैं रात के सफर में आज बहुत ही दो प्यारे से हमारे अनमोल सितारों को लेकर के, जिनके सफर में आज हम बताने वाले हैं उनके कुछ बीते लम्हों को और कुछ गानों के पीछे की कहानियों को। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सफर भूले बिसरे गीत जो रात के सफर में है।

जी हाँ दोस्तों, दोस्ती की मिसाल तो आपने सुनी ही होगी कि दोस्ती अगर किसी से हो जाती है तो वो इस जन्म की मुझे लगता है कि नहीं होती है, वो दोस्ती होती है हमारे काफी पुराने जन्मों की। कुछ ऐसी ही मिसाल इन दोनों की दोस्ती ने करी, कुछ ऐसी मिसाल जो कि हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। हम सब बताएंगे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी कैसे बनी। बिल्कुल, इन दोनों की मुलाकात किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि एक मैच के फील्ड में हुई थी। प्यारेलाल जी अपने दोस्तों के साथ मैच देखने गए थे। लक्ष्मीकांत जी ने आकर उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। बस फिर क्या था, वहीं उनकी दोनों की शुरुआत हुई और मुलाकात। कह सकते हैं कि दोस्ती की मुलाकात या शुरुआत उसी समय, लक्ष्मीकांत जी करीब 15 साल के थे और प्यारेलाल जी मात्र 12 साल के। ये दोस्ती महज एक इत्तेफाक नहीं था, ये दोस्ती की मिसाल बनने के लिए ही इन दोनों को ईश्वर ने मिलवाया था। और शायद आज उनकी जोड़ी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कि कोई न भूलने वाला कुछ ऐसा फूल हो। जैसे हम कई बार कभी बगीचे में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर कहाँ पड़ती है, गुलाब के फूल पे, है ना। तो ठीक वैसे ही इन दोनों जोड़ियों के लिए हम गुलाब की दोस्ती को कायम कर सकते हैं। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा

0: अभी आपने सुना आरजे ख्वाहिश की पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा गाना। क्यों आरजे ख्वाहिश?
1: बिल्कुल आरजे गुमसुम। और ये गाना आज बड़ा ही बेहद सुरीला सा लगा। वैसे कभी कभी हम लोग कभी जाते हैं ना तो सफर के दौरान सुनते हैं, लेकिन आज जब हम लोगों ने सुना तो बड़ा ही मजा आ गया।
0: यही तो बातें होती है पुराने गानों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं लिसनर्स, कि हम सभी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है कि हमारे स्ट्रगल में कोई ना कोई हमारा साथ दे, हमें आगे बढ़ाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जीवन में इस रोल को अदा किया हमारी हम सभी की प्यारी लता मंगेशकर जी ने। लता जी ने इन्हें आगे बढ़ाया, बहुत साथ दिया इनका। लता जी ने ही कोलाबा के रेडियो क्लब में लक्ष्मीकांत जी को मेडोलिन बजाना सिखाया। उनके हुनर से वो बहुत ही प्रभावित थी। लता जी को उनका मेडोलिन बजाना बहुत ही अच्छा लगता था। उन्होंने ही इन दोनों को संगीत अकादमी सुरील कला केंद्र में दाखिला भी दिलाया। इतना ही नहीं, लता जी उस वक्त बड़े संगीतकारों से इनकी सिफारिश भी करती थी ताकि इन्हें काम मिल सके और इनके हुनर को पहचान मिल सके।
1: बिल्कुल, तो आपने सुना ना कि किसी न किसी एक मेंटोर को होना जरूरी होता है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जो कि दोनों ने फिल्माया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और जिनका साथ दिया था हम सबकी स्वर कोकिला लता जी ने।

कहते हैं कि हर किसी के नाम के आगे कोई न कोई ऐसी पहचान जुड़ी हुई होती है, और ये भी कहा जाता है कि हर किसी के नाम का एक अर्थ होता है। नाम का अर्थ अगर हम जान लें तो उसके बारे में पूरी ही पूरी उनके जीवन की विस्तृत जानकारी हमें मिल सकती है। और बिल्कुल हर किसी के नाम का कोई ना कोई अर्थ भी होता है। लक्ष्मीकांत जी के नाम का भी एक बहुत बड़ा अर्थ है, आइए हम आपको बताते हैं। लक्ष्मीकांत जी का जन्म दिवाली के दिन हुआ था, जब लक्ष्मी पूजन हो रहा था, इसलिए उनका नाम लक्ष्मीकांत रखा गया। साथ ही साथ प्यारे लाल जी के नाम के पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि हमें जब सबसे प्यारी कोई चीज लगती है तब हम उनके घर में निकनेम रख देते हैं, यानी कि उनके घर का नाम। आजकल सभी के घर का नाम कुछ न कुछ है। निकनेम मतलब छोटा किसी का नाम का स्वरूप। ऐसे ही प्यारे लाल जी का जब नाम पड़ा तो वो घर में सबसे छोटे और सबसे प्यारे थे, इसीलिए आज तक उनके नाम के आगे प्यारे लाल फेमस हो गया। एक बार प्यारे लाल जी विदेश जाकर म्यूजिक सिखाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने उन्हें बड़े भाई की तरह समझाया कि हम एक साथ कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे, और प्यारे लाल जी रुक गए। और फिर क्या था वो तो आप सभी को पता ही है। इनकी जोड़ी के तौर पर पहली रिलीज फिल्म पारसमणि, जो कि 1963 में आई थी। इनके गाने हंसता हुआ नूरानी चेहरा आज भी वो सबके दिलों में छाया हुआ है। और एक गीत और भी था जो वो जब याद आए, ये जबरदस्त हिट हुए थे दोनों सॉन्ग। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

इस जोड़ी ने 1963 से 1998 के बीच करीब 635 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, हम सबका फेवरेट 1 2 3 तेजाब मूवी का ये गाना, जिसमें की धुन जो दी थी वो दी थी लक्ष्मीकांत जी ने। और ये गाना उन्होंने कहाँ सुना आपको पता है? ये गाना उन्होंने गणेश पंडाल में बजते हुए सुना था और फिर उन्होंने इसे डमी लिरिक्स में लिखा और जावेद अख्तर जी को सुनाया। जावेद अख्तर जी को ये बहुत ही पसंद आया और उसके बाद उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड भी किया। 1964 की फिल्म दोस्ती ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए इन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो आइए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा संगीत।

0: सर।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एलपी, ये नाम भी उनकी जोड़ी की बहुत बड़ी उपलब्धि के बाद ही उन्हें मिले। ये जोड़ी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और लंबे समय तक चलने वाली संगीतकार जोड़ियों में से एक है। इनके बनने और सफलता इन दोनों की कहानियों में किसी एक पटकथा से कम नहीं है। मोहम्मद रफी के साथ इनका रिश्ता सबसे ज्यादा और सबसे अहम जोड़ी के नाम पर माना जाता है। 1998 में लक्ष्मीकांत जी के निधन के बाद ये ऐतिहासिक सफर खत्म हुआ, लेकिन प्यारे लाल जी ने आज भी उनकी यादों को संजो कर रखा हुआ है। दोनों ही बेहद करीब परिवारों में से एक और संगीत के जरिए अपनी किस्मत को संवारने वाले थे। कहा जाता है कि जब लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे तो प्यारे लाल जी की धुन अपने आप बन जाया करती थी। बस तब क्या था, आप उनकी जोड़ी के संगीत और उनके गानों को आज भी दिल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके प्यारे से एक और गीत को।

लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी की जुगलबंदी का तो क्या ही कहना। जहाँ लक्ष्मीकांत जी गानों की धुन बनाते थे और गायकों के साथ काम करते थे, वहीं पर प्यारे लाल जी को इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का और उन्हें अरेंज करने का बहुत शौक था और वो इसमें बहुत माहिर भी थे। वे लगभग अपने सभी गानों में वायलिन जरूर बजाते थे और इसी के लिए बहुत मशहूर भी थे। आइए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा सा गीत।

स्वतंत्र संगीतकार बनने से पहले उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के साथ सहायक यानी असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने आरडी बर्मन और एसडी बर्मन के लिए म्यूजिक अरेंजमेंट भी करना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं ना कि जब बड़ी सफलता सामने हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। उनकी और एक बड़ी सफलता 1964 की फिल्म दोस्ती ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, लेकिन जय किशन जी के जाने के बाद राज कपूर ने एलपी को चुना और उन्होंने बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसा कालजयी संगीत भी दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत जी का पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुंडालकर और प्यारे लाल जी का पूरा नाम प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा है। तो आइए उन्हीं के संगीत से ये जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं।

लता मंगेशकर जी ने जब लक्ष्मीकांत जी को मैंडोलिन बजाते हुए देखा तो वो बहुत ही खुश हुईं और उन्हें उनका मैंडोलिन बजाना बहुत पसंद भी आया, जिसके बाद उन्होंने सुरील कला केंद्र में उन दोनों का दाखिला भी करवा दिया। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस दौर में लता मंगेशकर जी ने उनकी बहुत मदद की। शंकर जयकिशन और नौशाद जैसे बड़े बड़े सिंगर्स से उनकी सिफारिश भी की ताकि उन्हें काम मिल सके और वो आगे बढ़ सके। कहते हैं ना कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल पूरक बन जाते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जहां लक्ष्मीकांत जी बहुत मिलनसार प्रोड्यूसर थे और सिंगर्स के साथ बहुत ही प्यार से डील करते थे। वहीं प्यारेलाल जी थोड़े शांत स्वभाव के थे और जल्दी किसी से बात करना या घुलना मिलना उन्हें पसंद नहीं था। वो हमेशा सबको गाइड तो करते थे पर खुलकर कभी किसी से बात नहीं किया करते थे। आज भी जब आप पुराने गानों में मैडोलिन की प्यारी सी आवाज़ सुनते हैं तो समझ जाइए कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ही कोई गाना है। जहां बड़ा सा वायलिन सुनाई दे वहां प्यारेलाल जी का जादू, तो लक्ष्मीकांत जी की धुन होना तो लाजमी ही है। तो आइए चलिए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा सा गीत।

0: महफिल आज की यही थमती है, पर यादें यही रहेंगी। उनकी हर एक सरगम कानों में मधुर बन कर बहेगी। एलपी के सुरों के साथ विदा लेते हैं आज हम।
1: वक्त के पन्नों से यादों का वो दौर नहीं मिटता, संगीत का ये बहता हुआ दरिया कभी नहीं रुकता। लक्ष्मीकांत की धुन और प्यारे लाल का वो जादू आज भी कर देता है हर धड़कन को बेकाबू। फिर मिलेंगे भूले बिसरे के बहुत सारे सुरीले गीतों के साथ मिटाने हर गम को। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश और आपसे लेती हूँ विदा। रात के सफर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-74-40-06। कपड़ा

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ